प्रभात श्रोताओं, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026। विविध भारती पर हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं, तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध का ये कथन है कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे आज ही तुम्हारी नई शुरुआत हुई है। अतीत को क्षमा करो, भविष्य पर विश्वास रखो और वर्तमान में मुस्कुराओ। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा के ठीक बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला शास्त्रीय संगीत फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा 6:45 पर। सुबह 7 का समय भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का है। 7:30 पर हम हैं राही प्यार के और 8:15 पर कार्यक्रम होगा त्रिवेणी। सुबह 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर आपको सुनवाया जाएगा कार्यक्रम आज के फनकार जो केंद्रित होगा अभिनेता जगदीप पर। सुबह 10 का समय है पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम का। इसमें सुनिए अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रिकर की बातचीत। सुबह 11 रंग तरंग 12:05 पर यादों की महफिल और दिन में 1 कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। दिन में 2 आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे और 3 का समय सखी सहेली इस कार्यक्रम का है। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान वरिष्ठ साहित्यकार समीक्षा लेखक हरिशंकर राड़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाया जाएगा। शाम 5 कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। शाम 7 कार्यक्रम जयमाला और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। रात 8 आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल। इसके अंतर्गत नाटिका नैहर छूटो जाए। इसके लेखक हैं अरविंद नीमा और निर्देशक हैं जटाशंकर शर्मा। रात 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम होगा और रात 9 का समय है कार्यक्रम आपके लिए का। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री नीतू सिंह पर। रात 10 छाया गीत कार्यक्रम 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 का समय है रंग तरंग कार्यक्रम का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 243।

अत्रि ऋषि ने आश्रम में ले जाकर अतिथियों को कंदमूल फल खिलाए। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु का विधिवत पूजन करते हुए अत्रि ऋषि ने स्तुतिगान द्वारा अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। जो मनुष्य ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में नेह लगाते हैं, उन्हें मर्त्यलोक में बार बार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। हे श्री राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरण कमलों में सतत भक्ति की याचना करता हूँ।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 243। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार, संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार, फिल्म संगीत, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, और अब हम 8वीं कड़ी पर पहुंच गए हैं। पंडित जी, हमें बताइए कि आपका एक बहुत मशहूर गाना है पंचमदा का 1942 लव स्टोरी, और आपने विशाल भारद्वाज के साथ माचिस फिल्म में है बांसुरी की तान, और जुदाई में है, तो ये इतनी सारी फिल्मों में आपने बांसुरी की तान छेड़ी है, कुछ आप इन गानों से जुड़ी, इन फिल्मों से जुड़ी हुई कोई अपनी नायाब यादें ताजा करें, साझा करें।
2: जी, जुदाई फिल्म में दरअसल नदीम श्रवण का म्यूजिक है
1: जी।
2: और

0: जी
1: मुखड़ा अपने आप में इतना
0: क्या
1: मुश्किल,
0: बात है।
1: और हुआ क्यों कि दो तीन बांसुरी वादक गए वहां और वो बजा नहीं पाए, पीस इतना मुश्किल था।
0: जी
1: तो कैलाश मेहता करके एक बहुत अच्छे कीबोर्ड प्लेयर जो मिनी कॉर्ग में बीन की आवाज निकालते थे, उनको मेरे ऊपर बहुत भरोसा था। और उसमें कुछ टाफू ब्रदर्स बोलते हैं,
0: जी
1: एक टाफू खान तबला प्लेयर है और एक टाफू ब्रदर जो दूसरा भाई अकोडियन प्लेयर है, तो जो दूसरा भाई है वो आया हुआ था। तो उनके सामने एक ऐसा एक होता है कि हिंदुस्तान की लाज कौन रखे, तो बात तब देश पे आ गई। तो कैलाश ने कहा वो रोनू मजुमदार को बुलाओ, वो ठीक कर देगा सबको।
0: क्या बात है।
1: तो वो कैलाश ने पता नहीं, मोबाइल का जमाना तो था नहीं, नीचे से फोन किया, तू करके ही बात करता था मेरे साथ, तू कहाँ है? मैं बोला कैलाश भाई मैं तो घर पे ही हूँ, आराम कर रहा हूँ। बोले आजा जल्दी सुदीप स्टूडियो में, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, और तू बता दे इन लोगों को कि तू क्या चीज है। मैंने बोला अरे यार ऐसी क्या बात, हम तो गुलाम अली के साथ इतना काम किया। बोले बस इसीलिए तो
0: जी
1: बुला रहा हूँ, तूने गुलाम अली जी से वाह वाह ले लिया है तो और क्या चाहिए, गुलाम अली से तो बड़ा नहीं है ना ये।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो
0: तो
1: मैं स्टूडियो पहुंचा, तो पहुंच के उन्होंने तो 5 मिनट तक तो मुझे अपना हारमोनियम ही सुनाते रहे। मैंने बोला कि इनको सुनना है मुझे कि नहीं, पहले पूछ तो लेना चाहिए, ये क्यों जबरदस्ती क्यों सुना रहे मुझे। फिर मैंने टोक दिया बीच में, मैंने कहा कि मुझे ये सब जो आप बजा रहे हैं ये सब बजाना है क्या, तो ये सब मैं लिखूं? बोले नहीं, आपका पीस तो अलग है। तो मैंने कहा फिर तो वही बताइए ना जो मुझे बजाना है। तो जैसे ही बजा तो मैंने लिखने लगा, तो बोले लिखिए मत। मैंने कहा मैं लिखूंगा जरूर ताकि आप बदल ना सके। हाँ
0: क्या बात है।
1: लिख लूंगा तो
0: बढ़िया।
1: मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि नहीं आपने ऐसे नहीं ऐसे कहा था।
0: जी।
1: जब उन्होंने पूरा लिखवा दिया, दो टेक में मैंने बजा दिया।
0: क्या बात है।
1: तब से वो फोन करते थे मुझे, और गुलाम अली भाई तो फोन करते ही थे, उन्होंने भी मेरे नाल पंजाबी च गल करनी। वो कहते सन ओ रोनू भाई ओ दूजा जरा आंदा है ओनू पता नहीं पंजाब घराने दा, तुसी आओगे तो चंगा रहेगा।
0: क्या
1: तो
0: बात है।
1: बहुत ही प्यार। तो जुदाई का ये किस्सा, और माचिस का किस्सा मैं खास करके आपको ये बताऊं कि पंचमदा जाने के बाद 3-4 साल के लिए मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। फिल्म लाइन के प्रति मेरा मन उचाट जो बोलते हैं ना एक शब्द है, एक विड्रॉन फीलिंग आ गया था कि मैं फिल्मों में क्यों बजाऊं, मैं अपने सोलो प्रोग्राम करूं वही अच्छा है। फिर फोन आ गया गुलजार साहब का, और गुलजार साहब की आदत है कि कोई बंगाली है तो अपने से छोटा भी है तो उसको दादा ही कहते हैं।
0: अच्छा,
1: आज भी गुलजार साहब मुझे दादा कहते हैं,
0: क्या बात है।
1: वो उनकी
0: भारी सी
1: बैरिटोन भारी
0: आवाज।
1: सी आवाज।
0: हाँ बिल्कुल
1: कहाँ है हुजूर दादा, उनको हम लोग भाई जी कहते हैं इंडस्ट्री
0: जी।
1: में। भाई जी प्रणाम। बोले मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और एक नए लड़के को चांस दे रहा हूँ, उसका नाम है विशाल
0: विशाल
1: भारद्वाज।
0: भारद्वाज।

0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अद्भुत। अब लगता है कि गाना भी सुनवाना पड़ेगा। जी
1: ये गाना लोगों को सुनाई, उसके पहले मैं एक बात
0: जी
1: विशाल भारद्वाज जी और गुलजार साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके पहले मैंने बहुत माचिस से पहले बजाया, मगर कभी स्क्रीन पे मेरा नाम नहीं आया था, और सीडी में उन्होंने क्रेडिट पे मेरा नाम दिया। माचिस का पूरा बैकग्राउंड

0: ला ला ला ला, सब गाना मैंने बजाया। और बैकग्राउंड में एक यादगार किस्सा है जिसमें टब्बू जो है वो साइनाइट की गोली चंद्रचूड़ के मुंह में दे रही
1: जी
0: है,
1: दे रही
0: वहां
1: है
0: का
1: वो।
0: मेरा बजाया हुआ राग मारवा, उसमें वो किस्सा। मैंने कहा गुलजार साहब इस सीन को मैं अकेला नहीं उठा पाऊंगा। उन्होंने कहा दादा आप बजाइए तो सही, ये सीन आपके सामने पनाह मांगेगी। उस सीन को याद करिए।

0: वाह, राग मारवा में ये बांसुरी की तान थी फिल्म माचिस, और अद्भुत, आपने तो जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया पंडित जी। तो अब इसके बाद हम क्या गाना सुनवाएं या फिर?
1: मैं चाहता हूं कि पानी पानी रे इस गाने को लोगों को सुनाइए, क्योंकि उसमें तीन फ्लूट मैंने डबिंग किए थे जो एक साथ अभी बजाना संभव नहीं, तो एक्चुअल जो मैंने बजाया उसको लोग सुन लेंगे तो, और दीदी की वो मखमली और वो शहद से टपकती हुई
0: आवाज,
1: वो आवाज जो लगता है कि माँ सरस्वती गा रही है।

0: रोनुदा, एक गाना है गीत फिल्म का, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, और जब हमारी बात हो रही थी फोन पर तो आपने इसका जिक्र भी किया था। बड़ी सुंदर बांसुरी है उसमें, और बांसुरी वादक का रोल किया है राजेंद्र कुमार ने ना,
1: जी जी जी
0: तो क्या हम आपसे अनुरोध कर सकते हैं कि आप हमारे श्रोताओं को एक टुकड़ा सुनाएं?
1: उस पीस को हम लोग बहुत सुनते थे, बहुत छोटे थे जब हम लोग,
0: जी।
1: तो हरिप्रसाद चौरसिया जी पंडित जी ने उसको बजाया। उसका जो पीस है वो पंचम को सा करके बसता है,
0: जी।
1: तो उसका टेक्निकली भी फ्लूट प्लेयर्स को सीखना चाहिए कि कैसे वो बजा।

0: वाह, अद्भुत तान
1: ये
0: छेड़ी आपने।
1: मुझे मुझे भी डर
0: हाँ
1: लग रहा था कि वो पीस मुझे याद है कि नहीं। मैं इस पीस को कितने सालों बाद बजा रहा हूं, मगर शुक्र है कि मैं बजा
0: बहुत
1: सका।
0: अच्छा लगा, लेकिन क्या करें, ये जो घड़ी की सुई है ना, ये हम सबको बहुत बाध्य कर देती है, तो हम यहाँ पर लेते हैं अनुमति और कहते हैं नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। सबसे पहला जो गीत है कार्यक्रम का वो है दूज का चांद। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़, साहिल लुधियानवी के बोल और संगीत है रोशन का।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई

0: कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना ज़रूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला जो गीत है ये परदेसी फिल्म का गाना मीना कपूर और साथियों की आवाजों में, संगीत है अनिल बिस्वास का।

ABC.

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें।

0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए रतन फिल्म का गाना, जोहराबाई अंबाले वाली और करण दीवान की आवाज़ें हैं। डीएन मधोक का लिखा हुआ ये गीत है और संगीत है नौशाद अली का।

रतन फिल्म का गाना आपने सुना जोहराबाई अंबाले वाली और करण दीवान की आवाजों में। कार्यक्रम में गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, समय हो चला है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। लीजिए अब सुनिए आर पार फिल्म का ये गाना, जिसे गीता दत्त ने गाया है, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये गाना आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम बूट पॉलिश।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गीत है शर्त फिल्म से, हेमंत कुमार की आवाज, संगीत भी हेमंत कुमार का है, गीत SH बिहारी का।

प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है रही प्यार के। दीवार फिल्म का गाना सुनिए, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है आर डी।

किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में लीजिए अब सुनिए खेल खेल में, इस फिल्म का गाना। गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार आर डी बर्मन।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: दोस्तों आज अभिनेत्री नीतू सिंह का जन्मदिन है, तो हम उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और सुनते हैं कभी कभी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा साहिल लुधियानवी ने, धुन बनाई खय्याम ने।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी गाने आपको सुनवाए जाएंगे एक ब्रेक के बाद।

अंतराल के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं यादों की बारात। इस फिल्म का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत के बोल है मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत है आरडी बर्मन का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। अब आपको सुनवाते हैं अमर अकबर एंथनी, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।

0: भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सख्त उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। संदीप बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में एआई तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड

0: स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तरकश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, जीवन में भौतिक उन्नति से ज्यादा आत्मिक उन्नति ज्यादा जरूरी है। आत्मिक उन्नति का मुख्य अर्थ अपनी आत्मा को सांसारिक विकारों और अहंकार से मुक्त करना है। ये नियमित ध्यान, आत्म समीक्षा और निष्काम सेवा के अभ्यास से संभव है। सही और सकारात्मक विचारों को अपनाकर ही मन की शुद्धि संभव है। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने कार्यों और विचारों पर हमें विचार करना चाहिए। अपनी गलतियों को पहचानना और उसमें सुधार करना आत्मिक उन्नति की पहली शर्त है। हमारे सामने असंख्य समस्याएं हैं और उन असंख्य समस्याओं का समाधान केवल इस बात पर टिका हुआ है कि हमारी आंतरिक स्थिति सही हो। हमारा दृष्टिकोण गलत होगा तो हमारे क्रियाकलाप भी गलत होंगे और गलत क्रियाकलाप से जो परिणाम सामने आते हैं वे भयंकर दुखदायी होते हैं।

इसलिए हमें आंतरिक उत्थान, आंतरिक उत्कर्ष और आत्मिक विकास के लिए कार्य करना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है हम उन चीजों की तलाश करें जिन पर हमारी आत्मिक उन्नति टिकी हुई हो। और ये चार आधार हैं: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये चारों आधार ऐसे हैं दोस्तों जिनमें से एक को भी आत्मोत्कर्ष के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके बिना हमारे जीवन का उत्थान हो सके। मसलन बीज एक, जमीन दो, खाद तीन और पानी चार। इन चारों को मिलाकर ही किसी पेड़ का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार ये चारों चीजें बेहद जरूरी हैं। इसलिए आत्मिक उन्नति अहंकार और विकारों को मिटाकर अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करने की प्रक्रिया है, यानी ये बाहरी दिखावे के बजाय भीतर की यात्रा है।

अपने व्यक्तिगत विकास, मानसिक शांति और गलतियों में सुधार के लिए आत्ममंथन बेहद जरूरी हो जाता है। ये हमें खुद का आकलन करके अपनी कमियों को दूर करने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। आत्म परीक्षण या आत्मनिरीक्षण व्यक्तिगत विकास और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। हमारा जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक अत्यंत अनमोल उपहार है। ये खुशियों, चुनौतियों और अनुभवों से भरा एक खूबसूरत सफर है। जीवन का असली उद्देश्य हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना और निरंतर आगे बढ़ना है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को जितना कोई बाहरी सिखा सकता है, उससे कहीं अधिक वो अपने आत्म अवलोकन या आत्म समीक्षा से सीख सकता है।

आत्म समीक्षा यानी अपना मूल्यांकन करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई और नहीं जानता। इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए आत्म समीक्षा बेहद जरूरी है।

सवाल ये उठता है कि आत्मिक उन्नति के लिए आत्म समीक्षा कैसे की जाए। जब हम सुबह उठते हैं तो ये भावना प्रकट करनी चाहिए कि हमें अनमोल मनुष्य जीवन मिला है, तो सबसे पहले हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें, फिर उस ईश्वर के दिए गए इस दिन रूपी जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग करें। दिन भर मेहनत मशक्कत कर रात्रि को सोने जाएं तो अपने दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन करें। अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और जो कार्य गलत हुए हैं उनके लिए ईश्वर से क्षमा याचना करें। गलती हो जाने पर हमें खुद को माफ करना भी सीखना चाहिए। हालांकि खुद को माफ करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें आंतरिक शांति की जरूरत होगी, और जब तक आंतरिक शांति नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मन को शांत रखें। मन की सच्ची शांति ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बाहरी उपलब्धियां चाहे कितनी भी क्यों न हो जाए, अगर हमारा मन शांत और संतुष्ट नहीं है तो कोई भी सुख अधूरा लगता है। इसलिए नियमित ध्यान, सकारात्मक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में उतारना चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम के साथ। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहला जो गीत है ये मणिकर्णिका फिल्म का गाना, शंकर महादेवन की आवाज में, प्रसून जोशी के बोल, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में दबंग फिल्म का ये गाना अब आपको सुनवा रहे हैं, जलीस शेरवानी के बोल और संगीत साजिद वाजिद का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई इस फिल्म से है। मोहित चौहान की आवाज, इरशाद कामिल के बोल और संगीत है प्रीतम का।

ब्रेक के बाद लीजिए, अब सुनिए आशिकी 2। इस फिल्म का गाना अंकित तिवारी की आवाज में, संदीप नाथ ने इस गीत को लिखा और धुन बनाई अंकित तिवारी ने।

0: जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब यह प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दोस्तों, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आज अभिनेत्री नीतू सिंह का जन्मदिन है, तो हम उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। 1960, 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। दो कलियां, ये फिल्म तो आपको याद ही होगी, दोहरी भूमिका इसमें उन्होंने निभाई थी। और इसके अलावा बहुत सारी फिल्मों के हम नाम ले सकते हैं, यादों की बारात, खेल खेल में, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, परवरिश जानी दुश्मन, काला पत्थर, ऐसी कई फिल्मों के नाम इस समय हमें याद आ रहे हैं। तो जन्मदिन की बहुत सारी उन्हें शुभकामनाएं। और अब कार्यक्रम का अगला गाना चीनी कम, इस फिल्म का गाना, श्रेया घोषाल की आवाज, समीर के बोल और संगीत है इलैयाराजा का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक पाठशाला। इस फिल्म का गाना तुलसी कुमार, आकांक्षा लामा और हनीफ शेख की आवाजों में, गीत और संगीत हनीफ शेख का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम जारी है चित्रलोक। अब आइए सुनते हैं रॉय फिल्म का गाना, मीत ब्रदर्स अनजान फिएट और कनिका कपूर की आवाजों में। कुमार के बोल, संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है सोना महापात्रा की आवाज में फुकरे फिल्म का गाना, मुन्ना धीमान का लिखा हुआ गाना, राम संपत का संगीत।

ब्रेक के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं बैंड बाजा बारात। इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत है सलीम सुलेमान का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना विशाल मिश्रा की आवाज में, राजशेखर के बोल, विशाल मिश्रा का संगीत, फिल्म का नाम एनिमल।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना। सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजें, मयूर पुरी के बोल, संगीत ए आर रहमान का, फिल्म का नाम ब्लू।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। साथियों, आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कॉमेडी के बादशाह जगदीप पर केंद्रित।

0: कार्यक्रम।
1: मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है, समझे?
0: जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कहा हमने जनाब। हम जानते हैं कि आपका नाम सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। हुजूर, हमने तो पहले ही कहा कि कॉमेडी की दुनिया के असली सूरमा जनाब सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी साहब के बारे में आज हम बात करेंगे। जी दोस्तों, यही है जगदीप साहब का असली और पूरा नाम।

0: आएगा।
1: 29 मार्च 1939 को दतिया में जन्म हुआ जगदीप साहब का। पर्दे पर आकर इन्होंने अपना नाम जगदीप रख लिया और दर्शकों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जगदीप साहब की अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसी रही, कैसे दुख दर्द से भरी जिंदगी के बीच भी जिंदा दिली से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए, बताएंगे इस गाने के बाद।

0: जगदीप साहब की, जबकि देश का विभाजन हुआ उस समय तक इनके पिता का भी देहांत हो चुका था। देश के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लिहाजा माँ बेटे बंबई यानी आज की मुंबई आ गए। बहुत छोटी उम्र यानी 6 या 7 साल की उम्र थी। सर पर सिर्फ माँ का साया, भूख, अभाव और गरीबी से जूझता बचपन। उस जद्दोजहद भरी जिंदगी में जगदीप साहब की माँ को एक यतीम खाने में काम मिल गया, जहाँ वो खाना बनाया करती थी। इसी तरह एक तंग बस्ती में जिंदगी बसर हो रही थी। माँ की कोशिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख ले, सो जगदीप साहब को वो स्कूल भी भेजा करती थी।
1: तुम तो बहुत विद्वान हो, इतनी विद्या कहाँ से सीखी?
2: चिंच पोकली दादर लोअर पर्ल यूनिवर्सिटी।
0: इस कम उम्र में भी बालक जगदीप को ये समझ में आ रहा था कि जिंदगी का हर एक दिन गुजारना उसके और उसकी माँ के लिए कितना मुश्किल है। बालक जगदीप बस्ती के दूसरे बच्चों को काम करते देखता तो सोचता कि मैं काम क्यों नहीं कर सकता हूँ। माँ नहीं चाहती थी कि बेटा पढ़ाई छोड़े, लेकिन आखिर जिंदगी की जरूरतों के आगे माँ को भी बालक जगदीप की जिद के आगे झुकना पड़ा। खेलने कूदने की उम्र में बालक जगदीप ने छोटे मोटे काम शुरू कर दिए, कभी क्लीनर, कभी सामान ढोना, कभी पतंग बनाकर बेचा करना। जिन पतंगों को जगदीप बना बना कर बेचा करते थे, वो पतंगें आसमान में परवाज भरती थीं। बस उन्हें एक डोर की जरूरत होती थी। जगदीप को क्या पता था कि वो भी एक दिन आसमान की ऊंचाई तक पहुंचने वाले हैं, बहुत ऊंची उड़ान भरने

0: और आखिर वो दिन आ ही गया जब पतंग की डोर की तरह जगदीप की किस्मत की डोर बनकर एक शख्स उसी सड़क पर आया जहां बालक जगदीप काम किया करता था। उसे 5 से 10 साल तक के बच्चों की तलाश थी। जगदीप के पूछने पर उसने बताया कि एक फिल्म में एक सीन में उसे कुछ बच्चों की जरूरत है जहां सिर्फ बैठे रहना है और इसके लिए हर एक बच्चे को रोज के 3 रुपए मिलेंगे। बस फिर क्या था, उस सड़क के बहुत से बच्चों की टोली चल दी शूटिंग के लिए। इसमें बालक जगदीप भी थे। शूटिंग में एक दिन जगदीप को एक डायलॉग बोलने के लिए कहा गया। चूंकि जबान इनकी बड़ी साफ थी, उर्दू बहुत अच्छी बोल लेते थे, लिहाजा डायलॉग बोलने के उन्हें 3 रुपए अलग से मिले। ये काम जगदीप को बहुत भाया। वो फिल्म थी अफसाना, निर्देशक थे बीआर चोपड़ा और इनके सहायक निर्देशक थे यश चोपड़ा। बस यहीं से शुरू हुआ बालक जगदीप का फिल्मी सफर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट।
1: क्या नाम है तेरा?
2: मुन्ना।
1: और अपना नाम है लक्ष्मण जी, राम जी, हनुमान जी, पोस्टर चिपकाने वाला एंड कंप्लीट, समझा?
0: फिल्म दर फिल्म जगदीप काम कर रहे थे, प्रतिभा निखर रही थी, फिल्म सर्किट में लोग पहचानने भी लगे थे। तभी फणी मजूमदार की फिल्म धोबी डॉक्टर में नायक किशोर कुमार के बचपन की भूमिका निभाने का जगदीप को मौका मिला और इनके अपोजिट थी बालिका आशा पारेख। धोबी डॉक्टर में जगदीप का काम देखकर फिल्मकार बिमल रॉय ने जगदीप को फिल्म 2 बीघा जमीन में काम दे दिया।
3: कन्हैया यार, तू पूरा चपड़ घंचू, काम से जा रहा तूने टोक दिया।
2: कहाँ जा रहे थे?
3: बगदाद
2: है?
3: अबे यार बगदाद सिनेमा, रंजन है उसमें।
2: वाह वाह, क्या तलवार चलाता है। सेड, सेड।

0: क्या जान से मार देता है?
1: हाँ चल, चलता है?
0: ना बाबा।
1: अबे चल मैं दिखाऊंगा, आज जेब गरम है अपनी, सालिन 2 रुपए कमाए। हाँ
0: 2 रुपए? इतने कहाँ से मिले?
1: अरे जूता पॉलिश करके। आज एक असली साहबा फंसा, ऐसा जूता पॉलिश किया के बेटा कायल हो गया। हैंडशेक करके अंग्रेजी में बोला वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, और फटाक से 2 रुपए हाथ पर धर दिए।
2: अब तक जगदीप ने जवानी में कदम रख दिया था और फिर हीरो भी बन गए। फिल्म आई भाभी, आज भी लोग याद करते हैं। इस फिल्म में इनकी हीरोइन थी नंदा।

0: जगदीप ने हर तरह की फिल्मों में काम किया, हर तरह के किरदार निभाए, लेकिन दर्शकों ने इनके मजाहिया अवतार को बेहद सराहा। फिर जब फिल्म शोले आई तो सूरमा भोपाली ने जगदीप को और जगदीप ने सूरमा भोपाली को तो मानो अमर ही कर दिया।
1: अरे कोशिश, ये सी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना, एक को दी मैंने पटखनी के वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग जो खींची है के जाते किधर वहां, और कस के दो दिए लबाड़े के चलो छाने, बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने।
2: वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए?
1: हाँ हाँ,
2: मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो।
1: अरे बहुत बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए हैं कि सूरमा भाई माफ कर दो, वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए।
3: फिर क्या हुआ?
1: अरे फिर होना क्या था, मैं तो स्टिक रखता हूँ, अब जो मैंने फिन फिनाई है तो जाना सुधाई कर दी, बहुत मारा।
3: फिर क्या हुआ?
1: बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा।
3: क्या कहा?
1: क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे।
0: जगदीप साहब के बेटे जावेद और नावेद भी फिल्मों और टीवी पर सक्रिय हैं। जावेद तो जगदीप साहब की तरह ही हरफन मौला कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे डांसर माने जाते हैं जावेद जाफरी।

0: जगदीप साहब ने एक बहुत ही लंबी पारी खेली अपने फिल्मी करियर में और अपने सभी सहकर्मियों फिल्मकारों के चहेते बने रहे और दशकों के तो आज भी चहेते हैं।
1: शाम को कहाँ मिलोगे
2: इसलिए जी,
1: शाम को कहाँ मिलोगे
2: इसलिए।

0: रखते हैं।
1: देखो हाँ, अब बहुत हो गया, अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है, समझे?
0: जी हाँ बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो ये था बेहतरीन अदाकार जगदीप पर केंद्रित प्रोग्राम आज के फनकार।
2: अरे हम पंछी एक डाल के
0: अपने हिस्से का किरदार निभाकर दुनिया की डाल से उड़ गया ये पंछी। जगदीप साहब भले ही चले गए हों, लेकिन उनका निभाया हर एक किरदार हमारे आसपास हमेशा रहेगा।
2: ओए संग

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने और ये है इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में ऐसे कलाकार पधारे हैं जो आपके घर में भी आपसे मिल चुके हैं, आप सिनेमा हॉल में जाएं तो वहां भी आपसे मिल चुके हैं, और आपने अपने लैपटॉप के पर्दे पर या टीवी के पर्दे पर जब कभी OTT प्लेटफॉर्म पर आप गए होंगे तो वहां भी आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। जी हाँ, एक ऐसा अभिनेता जो सेल्यूलॉइड का कोई भी जरिया हो, कोई भी मीडियम हो, वहां अपना नाम रखते हैं और अपनी जगह उन्होंने बनाई है। आइए स्वागत करते हैं विपुल देशपांडे का। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
1: विपुल जी, कहाँ से शुरू करें, शुरू से बात करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पैदाइश कहाँ की है और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: वैसे मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते थे, मेरी पैदाइश आप कह सकते हैं कि मुंबई में ही हुई।
1: अच्छा।
2: लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई से नागपुर।
1: अच्छा।
2: तो नागपुर ये मेरा वैसे विदर्भ में हम लोग का घर है
1: जी।
2: वहीं पे सब रिलेटिव्स हैं और एंसेस्ट्रल अगर बोला जाए तो अमरावती के पास अकोलखेड़ नाम की एक जगह है जहां से हम बिलोंग करते हैं।
1: जी जी।
2: बट अभी हाल ही में सभी लोग जॉब के सिलसिले में सब बाहर आए और पिताजी बैंक में थे और मेरी माँ जो है वो लेक्चरर थी, तो उन लोगों ने फिर नागपुर में अपना जो है परमानेंट एड्रेस बनाया और मेरा स्कूलिंग नागपुर में ही हुआ।
1: अच्छा।
2: मैं पिताजी का पहले से हॉबी था कि वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग ये सभी जरिए में अपना एक पैशन कायम रखा
1: जी।
2: और मुंबई

0: में ये सब करने के लिए बैंक में जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नागपुर चुना।
1: अच्छा,
0: हालांकि एग्जैक्टली उल्टा मैंने किया कि मुझे मुंबई चुनना पड़ा वापस
1: जी
0: तो मैं वहां से वापस आया, बट वहां से आते आते बहुत समय लग गया। तो हालांकि मैं चाहता जरूर था कि मैं पढ़ाई करूं एनएसडी में, या फिर ड्रामेटिक्स पढ़ूं, या एफटीआई में जाऊं,
1: जी
0: बट एक्सपोजर कम होता है मुंबई के
1: बाकी शहरों
0: मुकाबले
1: में जी।
0: इस क्षेत्र के लिए
1: जी जी
0: स्पेशली। इसे हम लोग करियर नहीं मानते, मतलब एक्टिंग ये हॉबी करके देखी जाती है।
1: बिल्कुल
0: मैं जिस शहर से आता हूं वहां पे, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्रांतिकारी रवैया अपनाया था कि नहीं, मुझे ये करना है। लेकिन
1: हाँ
0: पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा है पहले पढ़ाई भी कर लो,
1: जी
0: ताकि बड़ी अनसर्टन फील्ड है,
1: हाँ
0: आप नॉलेजेबल रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे बाद में, अगर ऐसा कुछ समय आया तो बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए सपोर्ट किया, देन मैंने एमबीए किया। फिर जॉब करते करते ऐसा हो गया कि वो एक होता है ना 99 का पढ़ा बोलते हैं, आदमी फंस
1: हाँ
0: जाता है, तो
1: हाँ
0: उसमें फंस सा गया था।
1: अच्छा
0: बट देन फिर मैंने कहा कि नहीं यार, करना तो पड़ेगा। तो फिर शुरू में नागपुर में जो भी थिएटर कर पाए हम, वो मैंने किया।
1: जी
0: वहां पे कुछ महानाट्य थे, कुछ नॉर्मल नाटक थे, वो मैंने किए। लेकिन हालांकि मुंबई आना ही एक रास्ता था, तो मैं एक बार आके गया।
1: अच्छा
0: मैं 2000 में मुंबई आया था, तो आज से 26 साल पहले की बात है,
1: जी
0: तब मैं 20 साल का था। लेकिन तब कुछ मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि कोई चीज का एक्सपोजर नहीं था, कुछ चीज के
1: हाँ
0: बारे में मालूमात नहीं थी। तो मुझे एक महीने बाद वापस जाना पड़ा। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के कुछ करना पॉसिबल नहीं है। देन आई वेंट बैक, आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग, आई कंप्लीट माई एमबीए।
1: अच्छा
0: उसी के साथ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मैंने गोवा में 1 साल जॉब किया। फिर मैं कैसे तो भी करके, मतलब मिन्नतें करके, मैंने कंपनी से बात की कि मुझे मुंबई जाना है। मालूम था कि मुंबई में ही करना पड़ेगा जो करना है, तो वो हुआ नहीं। वीडियोकॉन से ट्रांसफर नहीं मिली, सो आई टुक अ स्विच। मैं यहाँ पे हाइपरसिटी में जॉब करने आया।
1: अच्छा
0: सो 2-2.5 साल लग गए। उसके बाद में फिर कहीं जाके एक जगह मैंने
1: मतलब
0: ऑडिशन
1: पहली
0: दी
1: बार आए तो एक नौकरी के लिए आए।
0: नौकरी के लिए
1: अच्छा
0: मुंबई में। मैंने 2007 से लेकर 2009 तक नौकरी की। 2009 से मैंने स्विच किया, रिसेशन हिट हुआ था उस दौरान, नौकरियां सभी की थोड़ी सी डामाडोल में थी।
1: जी।
0: तो फिर 2000 मैंने स्विच किया बिरला में, बिरला एजुटेक में मैं काम कर रहा था 2 साल ऑलमोस्ट, वहां पे काम किया। और उसी दौरान मैंने एक ऑडिशन के बारे में पता किया, जो कि 4 इडियट्स नाम की एक फिल्म थी, जो पता चला।
1: जी, ये मुंबई की जो आपकी अभिनय की यात्रा है उसकी अब यहां शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि नागपुर में जो आपने थिएटर किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह के नाटक वो हुआ करते थे जिनमें आपने अभिनय किया।
0: एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक कलाकार के लिए, जब वो स्टेज पे जाता है या
1: जी
0: स्टेज से जुड़ी कोई भी हरकत करता है।
1: हाँ
0: लेकिन सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड वहां पे स्कोप था,
1: जी
0: क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे या तो यहां पे आके वापस जा चुके थे कि उनका यहां पे शायद ना हो पाया हो, या फिर वहां से आए ही नहीं है और वहीं पे एक अपनी दुनिया बसा ली है।
1: हाँ
0: एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की बात जहां पे होती है।
1: हाँ
0: तो नाटक नो डाउट बहुत अच्छे
1: एक
0: थे।
1: उम्र होती है जब हमें एहसास होता है कि भाई हाँ हम अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकते हैं,
0: जी
1: और एक वो समय होता है कि जब हमें हमारे घर से प्रोत्साहन मिलता है या हमारे किसी शिक्षक ने हमें कहा कि चलो तुम तो बड़ा अच्छा कर सकते हो, तो वो हमें स्टेज पर धक्का दे देते हैं एक तरह से। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
0: अभिनय मैं कुछ कर सकता हूं, ये मेरी, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एक्टर ही बनना चाहता
1: क्या
0: था,
1: बात है, क्या
0: तो
1: बात
0: आई नेवर इमेजिनड एनी अदर
1: है। वाह
0: प्रोफेशन।
1: वाह वाह वाह
0: बट
1: वाह
0: जरिया नहीं मिल रहा था, तो नाटक
1: हाँ
0: हम करते रहते थे। 5th स्टैंडर्ड से नाटक हर साल मेरे स्कूल में करता था,
1: हाँ
0: जो स्नेह सम्मेलन गैदरिंग होता है
1: हाँ
0: उसमें हर साल करता था, जहां जहां पॉसिबल हो वहां पे करता था। और जैसे कहा आपने कि लोग सराहना करते हैं तो आपको अच्छा लगता है,
1: जी
0: आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो वही है कि आप, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है कि हाँ भी लोग जब बोल रहे हैं तो समझ जाते हैं आपके, हाँ आप कर सकते हैं अच्छा। तो ये फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया,
1: जी
0: बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड वेल, पीपल हैव अप्रिशिएटेड,
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने वो सराहना की और फिर आगे बढ़ती गई।
1: और फिर मुंबई आके अपने आप को आजमाना, ये जो मन की एक इच्छा है, बाकी सारे काम करते हुए, नौकरी करते हुए या पढ़ते हुए भी हम जो है वो इच्छा मन में कुलबुलाते रहती है,
0: बहुत ज्यादा
1: ये
0: मैं
1: कितने तने दिनों तक चला?
0: ये सर बहुत चला ये, बेसिकली अगर बात करें तो 2006 में मेरा एमबीए, जब मेरा पास आउट हो गया,
1: जी जी
0: मैं पहली बार जॉब करने गया, तो मैंने मेरे बॉस को कहा कि मुझे सर मुंबई में आप प्लेसमेंट दे दो। तो
1: अच्छा
0: मैं चाहता था कि जॉब करते हुए मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे,
1: हाँ
0: लेकिन उस दौरान मुंबई में था नहीं। तो वो मेरा 1.5 साल जो है औरंगाबाद, 6 महीने, और फिर 9 से 10 महीने गोवा में, ऐसा मेरा बीता। और रोज रात को, रात को इसलिए क्योंकि दिन भर काम, आपका समय कट जाता है, फिर जो आपको समय मिलता है शाम को 7-8 बजे, देन यू फील कि मैंने आज जो दिन भर किया, क्या वो मुझे जो पसंद था वो किया,
1: अच्छा
0: या फिर बस करना है इसलिए किया, सरवाइव कर

0: के लिए किया, तो वही एक बड़ी मशक्कत और बड़ा ही एक द्वंद होता था
1: जी
0: कि यार ये नहीं करना चाहता हूं, ये खुशी नहीं मिल रही है
1: जी
0: लेकिन करना पड़ रहा है।
1: ओह
0: तो कुछ तो भी करके भगवान की दया से मुझे वो स्विच करना पॉसिबल हुआ और फिर मुंबई आया।
1: तो ये मुंबई का जो सफर है, हम उसकी बात करेंगे, मगर हमारे बातों के बीच में आपकी पसंद के गाने भी हम सुनेंगे। तो कौन सा गाना होगा सबसे पहला जो आपको पसंद है?
0: मैं जिंदगी की वो जिस नजरिए से देखता हूं, उस नजरिए से अगर बात करें
1: हाँ
0: तो जिंदगी को एक लाइट ली और एक हंसते खेलते जितना पॉसिबल हो बिताना चाहिए, किसी को
1: जी
0: तकलीफ ना देते हुए, शायद वो ज्यादा जरूरी है। तो बच्चन साहब का एक गाना है,
1: हाँ
0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल,
1: वाह
0: इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं,
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया
0: ये
1: गाना,
0: एक बहुत खूबसूरत सा गाना है।
1: आइए सुनते हैं। जिंदगी

0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और ये जिंदगी जो अभिनय यात्रा के रूप में आपकी मुंबई में शुरू हुई, तो वो कैसी शुरुआत थी?
1: सर, मैं जब नागपुर में था 2 साल
0: हाँ
1: के लिए,
0: हाँ
1: मैंने जॉब छोड़ के, मैं नागपुर में 2 साल के लिए मैंने एक पॉज लिया था कि एक नौकरी की आदत होती है, 1 तारीख को सैलरी आती है,
0: हाँ हाँ
1: वो तो वो तोड़नी थी मुझे आदत,
0: हाँ
1: क्योंकि यहाँ पे आके कोई गारंटी नहीं थी कि रोज काम मिले। तो मैंने वहाँ पे एक बिजनेस हमारा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो मेरी माँ के अंडर बड़ा हुआ था पूरे अच्छे
0: जी
1: से।
0: जी
1: तो क्योंकि मम्मी लेक्चरर थी, रिटायरमेंट के बाद में शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ दिस। तो फिर वो हमने थोड़ा सा एक्सपांड किया, 25 सेंटर्स हमने उसके बनाए नागपुर में, और फिर मैं यहाँ पे आने की मेरी जो एक बात हुई, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। मैंने सोचा कि जाते काम कैसे मिलेगा,
0: अच्छा
1: तो आई नेवर हैड अ मुस्टैश इन माई लाइफ। यहाँ पे मैंने देखा कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल्स, ऐसे कुछ क्राइम

0: शोज आ रहे थे उस दौरान, जो कि बहुत हिट होते थे और हमेशा नए एक्टर्स उसमें दिखाई पड़ते थे और रिपीट भी होते थे कुछ।
1: जी
0: तो मैंने सोचा कि यार ये एक सही है, इन लोगों को नए नए बंदे लगते होंगे तो यहाँ पे जाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मेरी हाइट है 6 फिट 2 इंच, भगवान ने दी हुई, तो उसका फायदा कॉप के रोल में किया जा सकता है, तो एटलीस्ट कॉप रिपीट भी ज्यादा होते हैं।
1: हाँ
0: सेम थिंग हैपेंड, बट इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months
1: अच्छा
0: टू लैंड इन अ पर्टिकुलर रोल। वो रोल ऐसे आसानी से नहीं मिल पाया, उसके लिए लाइन में लग के इंट्रोडक्शन देना पड़ा बहुत बार, कभी
1: जी
0: लाइन में लगने के बाद नंबर भी नहीं आता था।
1: हाँ
0: तो वो सब करते करते बट मैंने मूंछ बढ़ाई और मैं
1: अच्छा
0: थोड़ा फिजिक उस हिसाब से किया कि मैं एक ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर में जा सकूं,
1: जी जी
0: और वही हुआ कि फिर उसके बाद क्राइम पेट्रोल साउदर्न इंडिया, इसमें मैं रेगुलर तौर पे पुलिस ऑफिसर के दौर में दिखने लगा।
1: अच्छा
0: तो एटलीस्ट मुझे पहले से कोई सीखने वाला, मैं ना कहीं जा पाया सीखने के लिए और कुछ कर पाया, बट कैमरा मुझे सीखने को वहां से मिला।
1: अच्छा
0: मैंने बहुत करीब से इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया
1: जी
0: और बहुत अच्छे एपिसोड्स हुआ करते थे क्राइम पेट्रोल के। पहले सुब्बू सर उनको ऑप्टिमिस्टिक के थ्रू डायरेक्ट करते थे या देखते थे,
1: जी
0: तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो वो मुझे समझने काफी मिला। आजकल सटल एक्टिंग ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं,
1: जी जी
0: जिसको एक नैसर्गिक तरीके से हम लोग, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं,
1: सहज और स्वाभाविक
0: सहज और स्वाभाविक
1: अभिनय जिसे
0: अभिनय
1: कहा
0: जिसको
1: जाता है।
0: कहते हैं,
1: जी।
0: तो वो मुझे वहां से ज्यादा अच्छे से सीखने को मिला। ऐसा लगता नहीं था कि अभिनय किया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभिनय ना करो, आपको करना पड़ता है कि वैसा लगे ना कि वो अभिनय हो रहा है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट
1: जी
0: थिंग।
1: जी
0: तो ये मुझे वहां से सीखने को मिला और ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, वो कंटिन्यू रही। तो दैट वॉज माई स्टार्ट इन द मुंबई।
1: क्या बात है। और उन शुरुआती दिनों में आप मराठी में भी कुछ देख रहे थे कि कुछ करने को मिले ऐसा?
0: मैं सभी चीजों के लिए ओपन था, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश तो खैर अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, मराठी मेरी मदर टंग है,
1: जी।
0: मी मराठी है। बट यही था कि जब आया तो मुझे सामने यही चीजें मिली हिंदी लैंग्वेज की, तो मैं हिंदी में फिर काम करता रहा। मराठी में मैंने एक दो बार ट्राई किया जहां जहां मुझे लगा, जैसे मैंने आने के बाद में वो 4 इडियट्स जो फिल्म की थी उसके बेसिस पे, जस्ट गम्मत नाम की एक फिल्म की, लेकिन एक बड़ा ही छोटा सा किरदार मैंने निभाया जो कि शायद ही किसी को ध्यान में रहा हो,
1: जी
0: और बाकी जगह शायद ये लॉबी, लॉबी तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है, लॉबी मतलब एक ग्रुप जो साथ में मिलकर काम करता है,
1: हाँ
0: अब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो जाता है इसलिए वो साथ में काम करता है।
1: जी
0: तो ये थोड़ी स्ट्रांग लगी मुझे रीजनल के दायरे में, तो
1: जी
0: वहां पे मेरी एंट्री ज्यादा नहीं हो पाई। आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मराठी अभिनेता हूं, मैं मराठी कर सकता हूं,
1: जी
0: बट आई वुड लव टू एक्सपांड माई थिंग। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार मिले
1: जी
0: जो मराठी में भी नहीं हो पाऊं, बट हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूँ रेगुलर, सो दैट इज थिंग।
1: चलिए यहां पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का। कौन सा गाना होगा?
0: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमोसफेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ,
1: जी
0: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में ये अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए, ये एक मेरा बहुत फेवरेट
1: ओहो
0: गाना है।
1: बहुत खूबसूरत गीत है, आइए सुनते हैं।
2: जब

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बढ़
1: हाँ
0: जाए। ये मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है इसका सामना होता
1: जी
0: है ना।
1: जी
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे, मगर एक ही तरह की वो टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी,
1: हाँ
0: और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था।
1: जी,
0: कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी,
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए। हाँ, तो
1: हाँ
0: वो भी वाकया जो है कि पहली
1: जी,
0: फिल्म कैसे मिली?
1: ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि अब बोलने में जा रहा था कि बच्चा साहब के जवानी मैंने सुना हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय, वो कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तो
0: बराबर
1: जब तक हम इस जिंदगी में है, इस दुनिया में है, तब तक संघर्ष रहेगा। उसको हम
0: जी।
1: कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं उस पर
0: हाँ,
1: डिपेंड है।
0: यस,
1: तो संघर्ष हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3 3 महीने मेरे पास काम नहीं था।
0: हो
1: तो एक एक्टर के लिए जब 3 महीने काम नहीं है तो आप 3 महीने कुछ नहीं कमा रहे हो, वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी। लेकिन ऊपर वाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ
0: अच्छा
1: वो चीजें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं, तो पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा, अगर
0: हाँ
1: डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं।
0: जी
1: तो ये चलता रहा काफी दिन, फिर हमें नहीं बोलना पड़ा। बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा, और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है, उसी से आपका घर चलने वाला है,
0: लेकिन मना करना
1: लेकिन
0: पड़ा
1: मना करना पड़ रहा है क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे हैं। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं
0: जी
1: वेरिएशन ना दे पाऊं
0: जी जी
1: तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस हिसाब
0: हाँ
1: से हमने काम किया, फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए। हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए,
0: जी
1: तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर्क ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूँ,
0: अच्छा
1: वर्क ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता है,
0: जी, अनाज का
1: अनाज का
0: कोठार।
1: कोठार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो जो 20 20 25 25 फीट के कोठार होते हैं, जो
0: जी
1: पहले किले पे भी हुआ करते थे,
0: हाँ
1: जहां पे लोग आके उस पर धान्य डालते थे। कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे बताया
0: हाँ
1: कि काम आप करते हो आप उसमें डालो, वैसे ही एक धान्य का जैसा वर्क ग्रेनरी है, तो उसमें आप डालोगे एक बार 2 बार 10 बार 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा,
0: जी
1: फिर आप जो भी डालोगे एक भी छोटा गड़बा आप उसमें डालोगे
0: जी
1: अनाज तो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रीनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो मिली वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन इंट्रोडक्शन ऑडिशन
0: अच्छा
1: इंट्रोडक्शन दे दे के एक जगह से कॉल आया, और एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नाम की फिल्म साउथ में की थी,
0: जी
1: उनका नाम था संदीप सर, संदीप वांगा रेड्डी, उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा,
0: अच्छा
1: मुकेश चावड़ा साहब के यहाँ से वो ऑडिशन आया था, एंड ही लाइक्ड इट फॉर द कैरेक्टर ऑफ द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहाँ काम करता है। और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था, सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार था,
0: जी,
1: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म दैट हैपेंड इन माय लाइफ। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते होंगे।
0: हाँ, बड़े सेलिब्रेट पर्दे का ये जो पहला अनुभव था, इसमें सारे बड़े नाम,
1: बहुत
0: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने, या इन सब के साथ काम करते हुए क्या अनुभव क्या था?
1: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ सर, तो मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा होता
0: क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है, और
1: हूँ।
0: मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए।
1: बस वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी वही है,
0: हाँ
1: अगर
0: हाँ
1: आप आपकी कला में निपुण हो, आपने उसे सफिशिएंट टाइम दिया है,
0: जी
1: तो सामने मतलब मैं बच्चन साहब के साथ भी रूबरू हुआ हूँ पर मुझे कभी प्रेशर नहीं आया।
0: ओहो
1: तो और यही सब लोग हैं जो इस लेवल पे जा चुके हैं, जैसे बच्चन साहब को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं,
0: जी
1: जब मैं उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ वागले की दुनिया के हमारे शो के थ्रू एक्सचेंज हुआ था,
0: हाँ हाँ
1: हमारा शो और उनका शो KBC, और वो हम
0: जी
1: लोग
0: जी
1: तो हमें नसीब प्राप्त हुआ उनके इर्द गिर्द बैठने का, उनसे बात
0: हाँ
1: करने का।
0: हाँ
1: तो मुझे प्रेशर नहीं लगा, मुझे लगा कि अपना ही कोई एक सीनियर, एक बहुत बड़ा,
0: जी
1: अभी मेरी आंखों में पानी आ रहा है, वो फील था वो अलग ही था। तो वो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा, और उनसे मैंने बात भी की, मैंने उनको कहा, आई रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर कि मुझे 1 मिनट अलग से बात करनी है। जैसे
0: अच्छा
1: अरे आप दिन भर साथ में थे सर, क्या प्रॉब्लम है, 1 मिनट बात करनी है।
0: हाँ
1: तो वो

0: साहब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल से वो आए। उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैंने कहा सर एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में।
1: हाँ
0: अरे क्या हो गया?
1: अच्छा
0: मैंने कहा सर वो बचपन से आपको देखते देखते बड़े हुए हैं,
1: हाँ
0: तो अभी जब भी एक्टिंग करते हैं तो मेरा कोई ना कोई दोस्त या कोई डायरेक्टर ऐसा बोलता है कि यार खुद से थोड़ा बच्चन कम कर ले। लाफ द सेम वे द वे यू
1: ओह
0: लाफ।
1: अच्छा।
0: बोला मुझसे होता नहीं है।
1: हाँ। यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गाना चुनो तो आप बच्चन साहब की फिल्म का गाना चुनेंगे? हाँ
0: बिल्कुल, मुझे उनका एक बहुत खूबसूरत गाना आता है और जो मैं गाता भी हूँ बहुत सारे गेट टुगेदर्स में,
1: हाँ
0: शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे।
1: ओहो
0: आई लव दैट सॉन्ग। इट स्टार्ट्स विथ हम बंदे हैं प्यार के, तो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं हमेशा
1: क्या बात,
0: पसंद।
1: चलिए सुनते हैं।

0: शराबी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, दे दे प्यार दे। और ये प्यार जो आपने मांगा इंडस्ट्री से, वो आपको मिलता गया, बढ़ता गया ये प्यार, और इस प्यार की अब इंतहा होना बाकी है। मगर इस प्यार के बढ़त में जो अगला स्टेप है, वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा प्रोजेक्ट था?
1: इस दौरान काफी फिल्में हुई, AK वर्सेस AK नाम की, अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जी के साथ एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी
0: हाँ,
1: वो, मैंने एक फिल्म की, बहुत अच्छी फिल्म थी। अनिल जी और अनुराग जी के साथ काम करने का मौका मिला, दोनों इतने महान एक्टर्स भी
0: जी
1: हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है इन सब लोगों के थ्रू। तो AK वर्सेस AK मेरी दूसरी फिल्म थी।
0: जी
1: फिर मैंने बागी 3 भी की, जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ में थी, रितेश देशमुख
0: हाँ,
1: साहब थे वो थी। फिर उसके बाद में मेरी दो प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मडगांव एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी अभी, कुणाल खेमू उन्होंने वो डायरेक्ट की थी, लिखी थी,
0: जी
1: सो लाइट कॉमेडी फिल्म, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी। जैसे मैं हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, ये फिल्में कभी भी लगाओ, कितनी भी बार देखो, वैसा ही मडगांव एक्सप्रेस भी आप कभी भी देखो, एक बड़ा ही लाइट कॉमेडी फैमिली के साथ देखने लायक
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: एक फिल्म थी। और एक ताजा खबर नाम के वेब
0: वेब
1: सीरीज
0: सीरीज
1: जी, जो कि भुवन बाम

0: अपने आप में एक बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार है आज के दुनिया में,
1: जी
0: तो उसके साथ की थी वो दोनों सीजन मैंने उसमें किए, तो उसमें भी मेरा प्राइमरी कैरेक्टर रहा। नेगेटिव शेड है, ग्रे शेड है। पहले सीजन में विलन थे जड़ी चक्रवर्ती साहब,
1: जी
0: जो कि साउथ से सत्या मूवी आई थी, उन्होंने सत्या का कैरेक्टर किया।
1: हाँ
0: और दूसरे में थे जावेद जाफरी साहब,
1: जी
0: तो ये दोनों के साथ मैंने वो कैरेक्टर किया था जो कि ग्रे शेड था, लेकिन काम करते हुए बहुत मजा आया। फिर बीच में गांधी गोड से एक युद्ध,
1: हाँ
0: जो राजकुमार संतोषी साहब की फिल्म थी, उसका किस्सा बड़ा खूबसूरत है। हुआ ये कि मैं रणजीत कपूर सर के साथ नाटक किया करता था।
1: अच्छा
0: रणजीत कपूर सर जो अन्नू कपूर साहब के बड़े भाई हैं, 9 साल बड़े,
1: हाँ हाँ
0: वो थिएटर की वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सनैलिटी होंगी आज इंडिया में।
1: जी जी
0: तो उनके साथ में नाटक करता था, चेखव की दुनिया, शेर अफगन भी हम करने वाले थे। तो सर को मैं बहुत मानता हूँ। लॉकडाउन खत्म होते ही मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाता हूँ, फैमिली मेरी नागपुर में ही थी,
1: हाँ
0: लेकिन मैं आ गया, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम चालू हुआ था।
1: जी
0: मैं रंजीत सर को मिलने गया। रंजीत सर ने कहा कि विपुल कल आ जाओ, उस दौरान जो है वो सोसाइटीज लॉक हुआ करती थी, सबको एंट्री नहीं होती थी। बोले तुम्हारे पास गाड़ी है तो मुझे तुम छोड़ देना, मुझे जाना है जुहू,
1: अच्छा
0: तब हमारी रास्ते में बात भी हो जाएगी। मैंने बोला सर ठीक है। मैं गया, सर को पिकअप किया मैंने। हम जाते जाते बातें कर रहे थे, जो कुछ बातें थी, मैंने भी एक फिल्म लिखी थी, मैंने सर को बताई,
1: अच्छा
0: बातें हुई। मुझे पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा जू चलो,
1: अच्छा
0: बच्चन साहब के घर के सामने से जाएंगे। तो मैं वहां ले गया गाड़ी। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरी मंजिल आ गई, मैं उतरता हूँ,
1: हाँ
0: मिलते हैं बाद में। मैं बोला ठीक है सर। तो उन्होंने उतरते वक्त पूछा, तुम राज जी से मिले हो? मैंने बोला कौन राज जी सर?
1: हाँ
0: अरे राजकुमार संतोषी।
1: अच्छा
0: अरे मैंने बोला सर मैंने तो नाम ही सुना है, आप राज जी से मिले हो, कैसे मैं मिलूंगा? अच्छा तो आ जाओ चलो। फॉर मी इट वॉज लाइक गूस बम्प,
1: ओ
0: इतने बड़े इंसान से आ जाओ चलो मिलने।
1: हाँ
0: मैंने तुरंत, मैंने ठीक है आता हूँ, मैंने गाड़ी लगाई, उनके साथ ऊपर गया। ऊपर गया तो राज जी नहीं थे, बाहर गए हुए थे।
1: अच्छा
0: उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, और वो चले गए अंदर किसी वर्कशॉप टाइप डिस्कशन के लिए।
1: अच्छा
0: अब वो बहुत बड़ा सा फ्लैट, टॉप फ्लोर पे मैं था, मैं वहां पे जाके, टेरेस ओपन था, वहां पे जाके बैठ गया। और एक इंसान बड़ा खूबसूरत ख्यालों में खो जाता है। मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मेरे लंबे बाल हुआ, लॉकडाउन में मैंने कंधे तक बाल बढ़ा लिए थे।
1: अच्छा
0: मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और राज जी की एंट्री होती है। राज जी बोलते हैं अरे यार ये कौन है, इसको ले लेते हैं। ऐसे मैं कुछ सोच रहा था। हालांकि राज जी आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने मुझे देखा नहीं, बाद में मुझे मिलाया गया उनसे। और एक कैरेक्टर उनके दिमाग में था, जो उनके एसोसिएट ने आके मुझे बताया
1: हाँ
0: कि डीएसपी राणा नाम के एक उस दौरान के अच्छा कैरेक्टर था।
1: जी
0: तो उनको बताया कि ये है विपुल देशपांडे। रंजीत सर ने बताया कि मेरा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, थैंक्स टू रंजीत सर फॉर दैट। और उन्होंने कहा कि आप इससे जो भी आपके पास काम हो आप कराइए, बहुत बढ़िया कलाकार है। तो उन्होंने कहा यार डीएसपी का कैरेक्टर है लेकिन इतने खूबसूरत बाल बढ़ा रखे हैं,
1: हाँ
0: काटने पड़ेंगे। मैंने बोला सर मैं काट लूंगा, बालों का टेंशन नहीं है, अब काम
1: अच्छा
0: करना जरूरी है। देन ही गिव मी दैट कैरेक्टर एंड आई वर्क विद हिम। इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम आल्सो।
1: ओटीटी की वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए आपने काम किया, टेलीविजन के लिए सीरीज की है और बड़े पर्दे पर भी काम किया है। ये तीनों अलग-अलग मीडियम है, मगर इसके शूटिंग की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है।
0: जी
1: कुछ फर्क आपने एक एक्टर के रूप में महसूस किया है इसमें?
0: फिल्म और ओटीटी ऑलमोस्ट सेम है,
1: हाँ
0: क्योंकि इसके पहली बात आती है बजट की। आपके पास में थोड़ा अच्छा डिसेंट बजट है तो आपके पास टाइम होता है।
1: जी
0: टेलीविजन में क्या होता है कि आपके पास में टाइम थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपको वो शूट करके पहुंचाना है
1: हाँ
0: आगे, और
1: उसकी एक तयशुदा तारीख है कि उस दिन वो
0: डेडलाइन
1: एपिसोड तो टेलीकास्ट होना ही
0: होना
1: है।
0: ही है।
1: जी
0: तो जैसे आपने कहा कि एक तयशुदा तारीख है, तो उस वक्त आपको पहुंचाना है।
1: हम्म
0: और आपके पास में बहुत सारा काम होता है,
1: जी जी
0: बिकॉज महीने में अगर वो 28 दिन टेलीकास्ट हो रहा है, 28 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 28 स्टोरीज आपको लगेंगी।
1: जी
0: तो मेरा एक बहुत ही बड़ा काम जो मैंने किया है आज तक, वो था वागले की दुनिया।
1: हाँ जी
0: मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जेडी सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। जेडी मजेठिया सर, आतिश कपाड़िया सर, ये
1: जी
0: दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। मुझे मौका मिला सुमित राघवन जैसे इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ भाई के कैरेक्टर में काम करने का। तो सुमित दा मेरे मेंटर जैसे हैं।
1: क्या बात है
0: दो और हमारे आइकॉन थे, भारती मौसी, भारती आचरेकर,
1: जी
0: और अंजन सर, अंजन श्रीवास्तव, जो कि सीनियर कपल थे
1: जी
0: वागले।
1: जी
0: ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट्स हैं,
1: बिल्कुल
0: इनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो ये तीनों के साथ काम करने में बड़ा मजा आया, मुझे बहुत सराहना भी मिली इन लोगों के साथ काम करते हुए, बहुत सीखने मिला। ये मेरा पहला डेली शो था,
1: अच्छा
0: तब तक मैं फिल्म्स और ओटीटी ही करना चाहता था, तो मैं उसी पे फोकस ज्यादा कर रहा था।

0: बट ये कैरेक्टर बड़ा ही अपने आप में मुझे
1: ये मुझे
0: पसंद
1: लगता है 2022 की बात है।
0: है। जी, 2022 की बात है, आज से 4 साल पहले।
1: हाँ
0: तो ये मुझे फोन आया, जैसे मैंने कहा वर्क ग्रीनरी,
1: हाँ
0: उसी कॉन्सेप्ट में मुझे कॉल आया। ये होता है कि आप जैसे कोई न्यू कॉमर भी आता है, वो सोचता है यार मैं अभी ये ऑडिशन क्यों दूं, वो क्यों दूं। मुझे लगता है हर एक ऑडिशन जो आपके पास आता है वो कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आता है। वो
1: हाँ
0: शायद कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल में जाएगा जहां से आपको बाद में फ्यूचर में काम मिलेगा,
1: अच्छा
0: क्योंकि सबको चाहिए अच्छे काम करने
1: बिल्कुल
0: वाले। तो
1: बिल्कुल
0: कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दे नीड गुड पीपल। तो आपके पास जो भी मौका, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको छोड़ो मत। आपके पास में भले ही आपको लग रहा है कि ये इतना मजा नहीं आ रहा है, बट आप उसको शूट करके भेज दो।
1: जी
0: आजकल तो बहुत आसान हो गया है। पहले मैं जब आया था 2013 में, ये ऑनलाइन वीडियो बना के भेजने वाली बात नहीं थी।
1: बिल्कुल
0: आज ऐसा हो गया कि आपको स्क्रिप्ट आती है, आपका मोबाइल में अच्छा कैमरा है, आप उसको स्टैंड पे लगाओ और खुद ही घर पे बैठ के शूट कर लो, आप
1: अपना
0: ऑडिशन भेज दो। सही लगा तो वो बुलाएंगे। ये पहले नहीं हुआ करता था। पहले एक भी ऑडिशन क्यों ना हो, जाना पड़ता था, जहां जहां बुलाया जा रहा
1: जी
0: है
1: जी
0: वहां पे लाइन में खड़ा होना
1: वो
0: पड़ता था।
1: दर दर भटकने वाली बात है ना।
0: बिल्कुल, हमने दर दर की ठोकरें खाई है।
1: हाँ
0: और बहुत जगह से बाहर से ही निकाला जाता था कि यहां कुछ काम नहीं है। कुछ जगह पूछा जाता था कि आपकी अपॉइंटमेंट है, तो नहीं सर पता करने आए, कुछ काम है क्या? नहीं नहीं कोई को, कोई काम नहीं है।
1: ओह
0: तो ये भी बहुत बार, बहुत साल हुआ है मेरे साथ। तो लेकिन उसका अपना एक मजा था,
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: सफर है।
1: अच्छा
0: मंजिल पे पहुंचने का मजा तभी आता है जब सफर अच्छा हो।
1: हाँ
0: अगर सफर आप डायरेक्ट चले गए तो क्या मतलब फिर?
1: बराबर
0: तो एक अलग मजा रहा है, अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ। स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ है,
1: हाँ
0: अभी भी ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वहां तक पहुंचने के लिए अभी समय होगा। पर जब भी मिलेगा ये सफर आनंददायी ही रहेगा।
1: क्या बात है। कोई ऐसा गाना जो आपके इस संघर्ष के दिनों में बार बार आपके जहन में गूंजता हो।
0: देवानंद साहब का जो एक गाना मैंने उन पे फिल्माया, वो गाना देखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला
1: है,
0: गया
1: क्या बात है।
0: और फिक्र को धुएं में उड़ाता
1: हम दोनों
0: चला
1: फिल्म का गाना है,
0: गया। हाँ जी,
1: बेहद लोकप्रिय गीत
0: बेहद
1: है।
0: लोकप्रिय।
1: आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, जिंदगी का साथ निभाते निभाते आप वागले की दुनिया तक पहुंचे। हम उसकी बातें और थोड़ा विस्तार से करना चाहेंगे।
1: जी
0: अंजन जी जैसे वरिष्ठ और श्रेष्ठतम कलाकार के साथ काम करना, भारती जी आचरेकर और सुमित दादा के बारे में आप बता रहे थे, सुमित राघवन जी, कैसा इंटरेक्शन होता था ऑफ द कैमरा, कैसे सब माहौल होता था?
1: एक बहुत ही खूबसूरत बात सुमित दादा के साथ ये होता था
0: जी
1: कि मैं जब तक सेट पे जाऊं और हम लोग रिहर्सल करें
0: जी
1: तब तक मैं उसको बोलता था कि सुमित्दा ये करते हैं, सुमित्दा ये करेंगे, हाँ ये करेंगे।
0: हाँ
1: जैसे ही एक्शन होता है वो दादा मुझे बोलता था
0: जी,
1: क्योंकि
0: आपने
1: मैंने
0: बड़े भाई का रोल
1: मैंने
0: किया,
1: उनके बड़े भाई का रोल किया था,
0: मनोज नाम था
1: मनोज
0: उसका
1: वागले
0: उस
1: मेरा
0: वक्त।
1: नाम था।
0: जी,
1: तो बड़ा एक अजीब सा वो लगता था, मुझे
0: हाँ
1: बड़ा मजा आता था उसमें सुनते हुए
0: हाँ
1: कि जब तक एक्शन नहीं हो रहा है तब तक मैं उनको दादा बोल रहा हूँ, सभी हम लोग सभी
0: जी
1: से
0: जी
1: सीनियर है।
0: जी
1: और फिर उसके बाद में जैसे ही एक्शन हो गया तो सुमित दादा की यहां से आवाज आती थी, अरे
0: हाँ
1: दादा। खैर ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन जहां तक उनके साथ काम करने का सवाल है, सुमित दादा को भी 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो बहुत
0: जी
1: बचपन से काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: फास्टर फेने वो
0: हाँ
1: शो किया करते थे 80s में शायद,
0: बिल्कुल,
1: और अंजन जी और भारती मौसी का तो क्या ही कहना, मतलब वो मेरे फर्स्ट रील मदर फादर थे और उन्होंने
0: हाँ
1: उतना ही प्यार दिया।
0: आपको वो पहला शॉट याद आ रहा होगा अंजन जी के साथ जो दिया था आपने।
1: अमेजिंग इट वाज, मतलब
0: हाँ
1: पहला शॉट सुमित्रा के साथ भी, अंजन जी के साथ भी। तो हालांकि सुमित्रा के साथ तो मेरा मॉक शूट भी हुआ था,
0: अच्छा,
1: क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको प्रोडक्शन बुलाता है, चैनल बुलाता है, एक ऑडिशन होता है, उसके बाद में देखा जाता है कि इनके साथ में केमिस्ट्री होगी कि नहीं होगी।
0: हाँ
1: तो मुझे बुलाया था मेरे ऑडिशन के बाद में, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में प्रोडक्शन ने मॉक शूट के लिए।
0: अच्छा,
1: तब सीन ये था कि माँ मतलब भारती मौसी एडमिट है
0: अच्छा,
1: और ये जो कैरेक्टर है मनोज वागले का, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है
0: ओके,
1: मेरा, जो कैरेक्टर मैंने जो प्ले किया था, और उतना ही कूल और उतना ही शांत सुलझा हुआ है राजेश वागले जो कि सुमित दादा प्ले करते थे।
0: हाँ,
1: तो इतना उसमें डिफरेंस दिखाना था कि माँ के हॉस्पिटल में वो उधर बजर बजा रही है, कोई आ नहीं रहा है और ये भड़का हुआ है, और फिर नर्स को बुलाता है, नर्स को झाड़ता है और वो डर के चली जाती है। इस टाइप का एक वो सीन था, मैं सीन प्रिपेयर करके आया, सुविधा को भी मैं पहली बार मिला था। तो बड़ी प्लीजेंट पर्सनालिटी है, जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं, उतने ही दिल के खूबसूरत होते हैं, मैंने देखा हुआ है। ये तभी तो एक अच्छी एक्टिंग कर सकते
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल,
1: इंसान अगर दिल से अच्छा नहीं है तो
0: बहुत
1: मुझे नहीं
0: बड़े
1: लगता।
0: कलाकार इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे और बड़े इंसान हैं
1: जी,
0: और बहुत विनम्र होते हैं।
1: बहुत विनम्र होते हैं, इनको कभी भी आप देखेंगे नहीं कि अननेसेसरी शॉर्ट टेम्पर हो, किस पे चला रहे हैं, कुछ भी है।
0: जी,
1: तो ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सुमित दा के साथ वो भी मैंने जो एक मॉक शूट किया, एक्शन होने के पहले तक मैं बिल्कुल उस जोन में नहीं जाता,
0: जी,
1: लेकिन एक्शन के बाद मैं चाहता हूं कि इंसान वही रहे जो कैरेक्टर है, वही मैं फील करूं अंदर से। और ये मुझे वहां सीखने को मिला, हमारे डायरेक्टर थे समीर कुलकर्णी सर, अमित कानेरे सर,
0: जी
1: दीपेश शाह, ये तीन डायरेक्टर्स थे वहां पे। इन तीनों ने भी जब तक सीन ओके नहीं होता तब तक वो आगे नहीं भेजते थे।
0: अच्छा,
1: मेरे ख्याल से ऊपर से आया हुआ है, जेडी सर से तू आया है कि यार ये चीज करनी है तो अच्छी करनी है, छापना नहीं है कि हाँ चलो हो गया आगे बढ़ो। हालांकि वहां पे जाके कोई रोक ही देगा आपको, या ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये सीन नहीं है, आप भी रोजमर्रा के आर्टिस्ट आप रोज कर रहे हो चीजें तो हो
0: जी,
1: जाती है, लेकिन जो मूड आया है वो हम करते थे। जैसे अंजन सर मुझे मोस्ट ऑफ टाइम, अगर मेरा और उनका सीन है, वो मुझे उनके रूम में बुला लेते थे
0: अच्छा,
1: कि यार विपुल आ जाओ अपना सीन है, रूम में बैठ के रिहर्सल करते हैं। वो भी थिएटर आर्टिस्ट है, मैंने भी थिएटर किया है, मुझे बड़ा पसंद है, तो वो बुला देते हैं और मैं और अंजन सर फिर हम लोग रूम में ही उनके वैनिटी में ही पहले रिहर्स करते थे क्या मूड रहेगा। सिर्फ लाइन्स ही नहीं होती है एक आर्टिस्ट के लिए, न्यूएंसेस जो छोटे छोटे उसमें की हरकतें होती है
0: जी
1: वो ज्यादा मैटर करती है,
0: बिल्कुल,
1: पॉजेस मैटर करते हैं। टीवी जो है आपके छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को पकड़ लेता है, आई मूवमेंट हो, चाहे आपने कहीं बीच में हल्का सा कान मूव किया है, या मराठी में आवंडा गेड़ा समझ तो अपन
0: हाँ, एक घूंट लेने की जो एक
1: घूंट वो
0: प्रक्रिया,
1: है, तो ये छोटी छोटी बातें जो है कैमरा नोटिस करता है आपकी, तो ये चीज सीखने को मिलती थी। भारती मौसी के साथ इमोशनल सीन करने में बहुत कष्ट लगा, ऐसा
0: प्रयास करना
1: प्रयास
0: पड़ता
1: करना पड़ता था कि उस लेवल तक कैसे उसके आजू बाजू पहुंचा जाए,
0: है। हाँ
1: लेवल तो पहुंचने की बात ही नहीं करता, शी इज सो सीनियर। तो भारती मौसी के साथ जब इमोशनल सीन एक माँ बेटे वाला होता था, और बहुत ज्यादा उनके साथ ही रहे इनिशियली,
0: जी
1: बाद में फिर अंजन जी के साथ भी रहे, लेकिन पहले माँ के साथ वो बेटे का बॉन्डिंग दिखाना था, तो एक अलग जोन में चले जाता था। फिर
0: हाँ
1: मैं उतना जरूर समझता कि ये चीज उस राइटर ने इतने प्यार से लिखी है,
0: हाँ
1: इतने इमोशन सोच के लिखी है। मैं करने वाला हूं एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट के साथ,
0: जी
1: तो वो उस लेवल पे जाना ही चाहिए, तो ही मजा आएगा।
0: हाँ
1: तो आई यूज टू हैव इट फॉर एन आवर टू आवर, मैं लिखता था, खुद मैं लिखता हूँ, जितने भी लाइन्स आती है, वैसे तो स्क्रिप्ट मिलती है, बट आई यूज टू राइट इन माई वर्ड्स एंड देन रिपीट इट ऑन रेगुलर बेसिस। ये मैंने सीखा है शायद नाना
0: जी
1: पाटेकर
0: जी
1: साहब से भी सुना था, आमिर खान साहब से भी सुना था, कि वो खुद लिखते हैं एंड देन वो रिहर्स करते हैं 20 बार 25 बार।
0: जी जी
1: उसी से फायदा होता है, आपके पास जो भी है वो स्क्रिप्ट है,
0: जी
1: वो स्क्रिप्ट में ही चीजें मिलेंगी आपको जो डिलीवर करनी है।
0: जी
1: तो ये इन तीनों के साथ मैंने सीखा है और बहुत मजा आया। बाकी भी मेरे जितने भी को एक्ट्रेस थे, मेरी वाइफ थी विद्या वागले, सुकन्या ने वो किरदार किया था, फिर हमारे पड़ोसी थे अमित और दीपक, दीपक
0: जी
1: पारिक, और
0: जी
1: उनके साथ भी करने में बड़ा मजा आता था। एक अलग ही जोन में वागले जो है चलता रहा।
0: हाँ
1: वागले ने मुझे बहुत कुछ दिया,
0: जी।
1: घर घर में पहचान मेरी मनोज वागले के नाम से।
0: हाँ, मैं अभी उसी सवाल पे आने वाला हूं
1: जी
0: कि घर घर में आप पहुंचे, मगर ये वागले का शूटिंग करने के बाद जब आप अपने घर नागपुर पहुंचे तो कैसा रिएक्शन था?
1: मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता तो था ही कि मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ।
0: हाँ
1: कुछ लोगों ने मेरे काम देखे थे, क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया, लेकिन वो छोटे मोटे काम थे जो ज्यादा दिखते नहीं थे।
0: अच्छा
1: तो वागले करने के बाद जब घर घर में शील पहुंची, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी बताना चालू किया, ये हमारा दोस्त है। तो लोग यकीन नहीं करते थे
0: हाँ
1: कि ये तेरा रोज कहां से आएगा।
0: हाँ
1: जो नागपुर का तो नागपुर में होगा, या ऐसा थोड़ी होता है।
0: हाँ
1: बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते थे। एक बहुत ही मजाक किया सीन हुआ मेरे साथ।
0: अच्छा
1: मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, 2023 की बात है, हॉस्पिटल में हम लोग थे। एक बार मैं नीचे से, मैं और मेरी शायद माँ थी मेरे साथ,
0: हाँ
1: हम लोग नीचे से लिफ्ट में ऊपर के फ्लोर पे जा रहे थे। वहां पे एक इंसान आए, उन्होंने मुझे थोड़ी देर घूर के देखा, फिर अपने आप में कुछ सोचा
0: अच्छा
1: और थोड़ी देर में बोलते हैं, आप ही के जैसा एक आर्टिस्ट है,
0: अच्छा
1: दिखता बिल्कुल आपकी तरह। मैंने बोला अच्छा,
0: अच्छा
1: मैंने बोला किसमें? वो बहुत बड़ा एक शो है वागले की दुनिया, उसमें मनोज वागले का कैरेक्टर करता है,
0: हाँ
1: बिल्कुल हूबहू आपकी तरह दिखता है। मैंने बोला अच्छा,
0: अच्छा जी जी
1: मैंने
0: जी
1: बोला सर काम अच्छा करता है क्या?
0: हाँ
1: अरे बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। तो मैं
0: अच्छा
1: बोला चलो नाम तो नहीं खराब कर रहा है। आई
0: क्या
1: लाइक
0: बात
1: दैट, आई लाइक दैट थिंग। फिर किसी ने बताया, शायद कोई और भी थे लिफ्ट में,
0: हाँ
1: उनको बताया कि ये वही है, बट उन्होंने बिलीव नहीं किया। कि आप क्या
0: जी
1: करोगे
0: जी जी
1: आप।
0: ये बिल्कुल रोवेन एटकिंसन जैसा हो गया। वो कई बार अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं
1: जी
0: कि कई लोग उनसे मिले हैं और वो उनसे पहली बार यही कहते हैं कि क्या आपको पता है आप मिस्टर बीन जैसे दिखते
1: मीन
0: हैं।
1: जैसे ट्रू ट्रू।
0: जी, तो
1: बिल्कुल
0: ऐसा ही वाकया आपके साथ हुआ
1: बिल्कुल
0: क्या?
1: ऐसा ही हुआ,
0: हाँ
1: और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि उसने बोला कि यार काम अच्छा करता है।
0: हाँ
1: एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी वही बात है,
0: और क्या चाहिए,
1: और क्या चाहिए।
0: क्या बात है।
1: तो ये घर घर में नाम उसी वजह से पहुंचा, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी अच्छा लगा,
0: हाँ
1: दोस्त हैं उनको अच्छा लगा, और मैं जहां भी जाता था वो बड़े ही प्राउडली मुझे इंट्रोड्यूस भी कराते थे, बुलाते भी थे। तो ये एक प्यार है, अपनों का प्यार
0: क्या
1: है।
0: बात
1: मैंने
0: है।
1: एक फिल्म देखी थी, टॉपिक निकला है नागपुर का इसलिए
0: हाँ
1: कि आर माधवन साहब की एक फिल्म थी, रामजी लंदन वाले, ये
0: अच्छा हाँ
1: बहुत खूबसूरत फिल्म है। उसमें ये कुक होते हैं इंडिया में, उन्हें यूएस में लिख के जाया जाता है किसी फैमिली के थ्रू काम में।
0: अच्छा
1: अब वहां पे उनके साथ जो स्टोरी होती है वो तो अलग, लेकिन वहां के शेफ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं
0: अच्छा
1: और वर्ल्ड शेफ टाइटल जीत लेते हैं।
0: ओहो
1: उन्हें वहां पर रेस्टोरेंट दिया जाता है खरीद के, उनको वहां पे सब दिया जाता है,
0: हाँ
1: पर वो बोलते हैं कि यार ये सब मुझे अब मत दो, मैं तो वापस जाऊंगा ना। तो बोलते हैं अरे सर आपको इतना बड़ा रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में, ये वो सब दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है,
0: हाँ
1: गाड़ी रहेंगी आपके पास में। बोले क्या मतलब वो गाड़ी का, अगर मैं अपने दोस्तों को ना घुमा पाऊं, मैं
0: हाँ
1: अगर मेरे फैमिली के साथ चक्कर ना मार पाऊं, मैं उस सब सब चीजों को शेयर ना कर पाऊं अपने लोगों के साथ,
0: हाँ हाँ
1: तो मजा तो वही है।
0: बिल्कुल
1: तो मुझे वही अच्छा लगता है कि जाओ तो एक अपने लोग मिले, उन्हें अच्छा लगे, दैट
0: क्या बात है।
1: इज मोर इम्पोर्टेंट।
0: तो अब उन अपने लोगों के लिए जो नागपुर में बसते हैं, आपके दोस्त, आपके घर वाले, परिवार वाले, उनके लिए आप कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
1: वैसे अलग से तो बहुत सोचा नहीं, लेकिन देवानंद साहब का ये

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

हम सुन रहे थे ये भजन हे गोविंद हे गोपाल एल्बम से जगजीत सिंह और साथियों की आवाज़ में, सुदर्शन फकीर के बोल और जगजीत सिंह के संगीत के साथ।

0: प्यार का पहला एल्बम से ये लिया गया गीत, जिसे लिखा हस्ती ने, जगजीत सिंह ने गाया और उन्होंने ही संगीतबद्ध किया।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं अगला नगमा मरासिम एल्बम से। जगजीत सिंह की आवाज है, उन्होंने उसे संगीतबद्ध किया है और गुलजार ने बोल लिखे हैं।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग में। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा जिसे संगीतबद्ध किया है उत्तम सिंह ने, गाया है जगजीत सिंह और प्रीति उत्तम ने, फिल्म पिंजर से जिसे लिया गया है। आइए सुनते हैं साथियों की आवाज के साथ में ये नगमा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अंतिम नगमा, जो कि है द खजाना कॉन्सर्ट से। तलत अजीज की आवाज है और तलत अजीज के संगीत से सजा हुआ था। और हम अभी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे एक और नगमा जिसे पंकज उदास ने गाया था और पंकज उदास की ही संगीत से सजा हुआ है। आइए सुनते हैं ये नगमा खुशबू बनकर द खजाना कॉन्सर्ट से।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और इस समय दोपहर के 12 बजे हैं और इस समय आप सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमदत्ता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
0: वहाँ क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
0: वाह, ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेपथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
0: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
0: श्रोताओं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
0: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
0: तो विमलेश जी, आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था।
2: जी अजीत जी, मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
0: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
0: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
0: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
0: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
0: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रिया

0: योजनाओं को बाधित करता है।
1: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी।
1: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800-440-559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहाँ लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एमयू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है, शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ,

0: और बाल घुंघरा ले।
1: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
0: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
1: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
0: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
1: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
0: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं। और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
0: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
1: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
0: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
1: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
0: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
1: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
0: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
1: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटो पार्क की फिल्म बनाने आए हैं और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर नीत जी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए
3: आइए।
2: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें। गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
2: अच्छा अच्छा,
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
4: वाकई कमाल है।
3: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
4: स्टीन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
3: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
3: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
2: धन्यवाद।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
1: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते। और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।

0: नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम।
3: कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया है।

0: हम सुन रहे थे ये गीत प्रियात्मा फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में, योगेश के बोल, राजेश रोशन के संगीत के साथ।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं गीत परवरिश फिल्म से आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह, अमित कुमार की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ यह गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत जिंदा दिल फिल्म से। सुन रहे थे हम अभी ये गीत जिंदा दिल फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में, वर्मा मलिक के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और आइए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत, जो कि द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से है। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देवर्मन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर एक कार्यक्रम जहां पर लेकर आते हैं हम कुछ बातें यानी इबारत के रूप में और ढूंढते हैं कुछ नगमों को। आज की इबारत है, जीवन में रोटी कपड़ा और मकान तो आवश्यक है, पर इनके साथ वे छोटे छोटे सपने और अपनापन भी जरूरी है जो चेहरे पर मुस्कान ले आए। फिल्मों में अभिनेता और अभिनेत्रियां इन्हीं जीवन रंगों को जीते हुए कभी डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, वकील, पुलिसकर्मी, गायक गायिका, बावर्ची, टूरिस्ट गाइड, तांगा चालक या अनेक अन्य किरदारों में नजर आते हैं। तो आपको बताना है आपका कौन सा अभिनेता या अभिनेत्री किस किरदार या गणवेश में आपको अधिक पसंद आया। हो सकता है आपकी और हमारी पसंद और उनसे जुड़े गीत भी एक जैसे हों, और यदि ना भी हों तो उन सुनहरे दिनों को याद करके अपनी यादों को ताजा करने का आनंद ही अलग होगा। चलिए चलते हैं, हम उन साथियों के संदेशों को पढ़ते हैं जिनमें हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज के गद्यांश में जीवन की बड़ी सच्चाई को उजागर किया गया है। इसे जीवंत बनाने वाली फिल्म किरदार की बात कही गई है। छोटे छोटे सपने होते हैं जो मन में उम्मीद की किरण जगाते हैं। जीवन में कोई बहुत बड़ी और जटिल पहेली नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत छोटे छोटे पलों और एहसासों का खूबसूरत गुलदस्ता है जिन्हें हम रोज जीते हैं। खुशियाँ हमारे भीतर ही मौजूद हैं, और इसी तरह से उन्होंने सारी बात कही है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर है या कोई व्यक्ति वो कोई रोल नहीं निभा रहा है, वह अपना काम कर रहा है अपनी आजीविका के लिए, पर अभिनेता और अभिनेत्री उस किरदार को किसी फिल्म की कहानी की ज़रूरत के हिसाब से निभाता है, अभिनय करता है और उसके हिसाब से उसका मेकअप किया जाता है। शायद वह स्वयं का मेकअप भी करता होगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले गीत की तरफ, जिसके लिए हमारे श्रोताओं ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इस गीत के बाद हम उसके बारे में बात करेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन ये बताइए कि डाकिया से मिले कितने दिन हो गए हैं, या पिछली बार किसी को चिट्ठी या खत कब डाला था, बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत।

डाकिया डाक लाया, और ये डाकिया हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आप पिछली बार डाकिया से कब मिले थे, तो हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि हम मिले तो कई दिनों से नहीं, लेकिन आज आपने मिलवा दिया। ये भी अच्छी बात है, पर एक बात देखिए ना कि ये जो डाकिया के रोल में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि राजेश खन्ना ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की है और यह गीत उनके ऊपर बहुत अच्छा फिट होता है। पत्र मिलने वाले के दिल की बात इस गीत में कही गई है, साजन के आने की खबर, शादी की बात, बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं। जी बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता बता रहे हैं कि आकाशवाणी और डाक से उनका गहरा संबंध था, परंतु अब कम हो गया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम भी तो मनचाहे गीत लेकर आते हैं ना आपके बीच में, तो अपने पत्र हमारे पास भेजते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल ने हमसे चिट्ठी और खत लिखने का काम कम हो गया, खत्म ही हो गया है, और मोबाइल ने वो भी छीन लिया है। कई साल हो गए खत लिखे, डाकिया अब भी कम नजर आ रहे हैं। खत आप विविध भारती के लिए लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। हमारी श्रोता बताती हैं कि कभी उन्होंने एक पोस्ट पार्सल किया था और किसी के शुभकामनाओं के साथ उसके उनके जन्मदिन के लिए ड्रेस भेजी थी, बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए हम चल रहे हैं हमारे श्रोताओं की बातों की ओर, कि वो बड़े अच्छे से बता रहे हैं कि उन्हें कौन कौन से किरदार पसंद हैं, जिसमें राजेश खन्ना का ये डाकिया डाक लाया, उसके साथ पलकों की छांव में जो गीत है उन्हें पसंद है, बड़ा अच्छा किरदार था इस फिल्म का। इसके साथ उन्होंने कई सारी फिल्मों को पसंद किया है, और हम ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे पलकों की छांव में फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़ में, गुलजार के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। अब हमारे श्रोताओं ने बताया है कि जैसे थ्री इडियट्स में करीना कपूर ने इस फिल्म में डॉक्टर पिया नाम की मेडिकल छात्रा और डॉक्टर का किरदार किया, आनंद में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर भास्कर बनर्जी का किरदार किया, जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ ही आयुष्मान खुराना ने भी एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट यानी पुरुष महिला रोग, जो पुरुष डॉक्टर हैं वह महिला रोग विशेषज्ञ का किरदार निभा रहे थे, वह काम किया। कबीर सिंह में अभिनेता शाहिद कपूर की एक बड़ी जुनूनी गुस्सेल अलग तरीके का किरदार निभाया, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में निभाया। इसके साथ ही कई सारी चीज़ें हैं जो कई सारे किरदार हैं, जैसे डॉक्टर बनते हैं, पुलिस बनते हैं, कभी एक गुंडे का किरदार भी करते हैं, और कभी कभी कई किरदार ऐसे कर जाते हैं जिन्हें देखकर हम खुद भी डर जाते हैं, और शायद यही अभिनय की पराकाष्ठा है और वो वहां से जीत जाते हैं। हमारे श्रोता बताते हैं फिल्म अवतार में राजेश खन्ना ने एक मेहनती पिता का किरदार निभाया, जो किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं है। आत्मसम्मान और परिश्रम के बल पर वह संदेश देता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला है। बिल्कुल सही बात है। अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, तो बताइएगा कि ये जो गीत है इसमें हम किस किरदार की बात कर रहे हैं, किरदार कौन है और किरदार करने वाला कौन है, दोनों चीजें आपको बतानी है। और इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई याद अगर आपकी है तो जरूर साझा कीजिएगा। और इसके साथ एक प्रश्न और हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो ये है, ऐसा कौन सा किरदार है जिसे बचपन में आपने देखा था और सोचा था हम ऐसे ही बन जाएंगे। तो चलिए दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सुनते हैं ये गीत।

हम ये सुंदर सा गीत सुन रहे थे और हमने आपसे प्रश्न किया था कि इसमें कौन किरदार है, फिल्म क्या है. बहुत सारी बातें इसमें हुई थी, लेकिन इसके पहले हम जो गीत सुन रहे थे डाकिया पर, उसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है. बचपन में पिताजी दिल्ली अहमदाबाद में नौकरी पर जाते थे तो पत्र लिखते थे, उनका खत आता तो माँ को पढ़कर सुनाते थे. गाँव में डाकिया आता था जो घर घर चिट्ठियाँ बांटता था. गांव वाले उसकी बड़ी इज्जत करते थे. कॉलेज पढ़ने गए तो विवाह हो चुका था, तो उनकी पत्नी की सहेली खत भेजती थी और हम उसका जवाब भेजते थे. क्या बढ़िया बात है.

ना, जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है ना याद करने के लिए। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, राजेंद्र कुमार डॉक्टर के रूप में, मीना कुमारी नर्स के रूप में, दिल एक मंदिर में बहुत ही शानदार फिल्म रही है। इसमें नाव पर बैठकर जो गीत है जी, बहुत खूबसूरत गीत है, हमने भी सुना है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है कि पोस्ट ऑफिस बंद हो गए हैं अधिकतर गाँव में, और पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय और लिफाफे आने भी बंद हो गए हैं। इस बात की ये चिंता भी कर रहे हैं, और चिंता होना चाहिए। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आखिरी खत कब लिखे थे ये तो याद नहीं, पिछले साल गांव गए थे तब पिताजी को 1978 में लिखा, अंतर्देशीय मिला, उसे संभाल कर रखे हैं, इंक पेन से इसे सजाया हुआ बड़ा सुंदर सा पत्र इनके पास में है, और जिसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। और अब हम आ जाते हैं अभी इस गीत की तरफ जो अभी हम सुन रहे थे, बड़ा सुंदर सा, बड़ा मोहक सा, बड़ा प्यारा सा गीत, जिसके लिए हमने आपसे पूछा कि जो भी आपने देखा है, यानी इन सब इस किरदार को देखा है, तो ये गाइड फिल्म का, राजू गाइड का, देव आनंद का किरदार है, और इसने रोजी के लिए ये गीत गाया है, ये हमारे एक और श्रोता बता रहे हैं। बहुत सुंदर गीत है, और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बताया है कि सबसे ज़्यादा अभिनेता जयराज ने सबसे ज़्यादा फिल्मों में इंस्पेक्टर बने हैं, और उन्हें विनोद खन्ना को इंस्पेक्टर की वर्दी में देखना अच्छा लगता है, क्या बढ़िया बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे बहुत प्यार से उत्तर देखे, और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि उन्होंने गाइड देखी थी और बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देखा था, कितना अच्छा था ना, हम सपने भी उनके साथ जी लेते थे कई सारे। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे ढेर सारे उत्तर दिए हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि हमें अगले गीत की तरफ बढ़ना चाहिए। और एक बात और हमारे श्रोताओं के पास से आ रही है, बात ऐसी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की असली दौलत केवल रोटी कपड़ा और मकान नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे सपने, रिश्तों का अपनापन, चेहरे खिल उठने वाली मुस्कान है जो हर दिन को खास बना देते हैं। यही जीवन के रंग हमारी फिल्मों को भी में भी बड़े सलीके से सहेजे हैं, कभी सफेद कोट में डॉक्टर, कभी सादगी भरे शिक्षक, कभी खाकी वर्दी में पुलिस अधिकारी, तो कभी सुरों की महफिल सजाते गायक, गायिका, स्वाद बिखेरता हुआ बरची, तो मुसाफिरों का हम सफर बनता टूरिस्ट गाइड। हर अभिनेता में अपने अपने अंदाज में अलग अलग अमिट छाप छोड़ी है, बिल्कुल सही बात है। अब इसके साथ ही कई सारे सुखद क्षण हैं, कई सारी कल्पनाएं हैं, कई सारी चीजें हैं। अब एक बात हम सोचते हैं कि अगर एक अभिनेता किसी किरदार को निभाने के लिए जाता है तो वो कितनी मेहनत करता होगा, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है फिर भी वो डॉक्टर बन रहा है, वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है फिर भी वो पुलिस इंस्पेक्टर बन रहा है, वो डाकिया नहीं है या वो वकील नहीं है या वो किसी भी काम को नहीं कर रहा है, पर उस किरदार को पूरी तरह से समझ रहा है कि वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, किस तरह से बात करता है, उसका मुड़ने का अंदाज क्या होगा, हर बात को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए तो अभिनेता उस किरदार को बिल्कुल हूबहू हमारे फिल्म के पर्दे पर ले आते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बहुत सरल सा प्रश्न है, इसके गीतकार बता दीजिए, और फिर वही पहचानना है कि किरदार और अभिनेता दोनों का नाम बता दीजिए, ये किरदार कौन सा है और उस किरदार को कौन से अभिनेता ने निभाया है। बड़ा सुंदर सा गीत है, आपको बताना है इसके गीतकार का नाम भी।

तुम बिन जीवन कैसा जीवन, ये गीत हम सुन रहे थे उस फिल्म से जिसके बारे में हमने आपसे पूछा था। और जब हम आपसे पूछे तो आप गलत कैसे बता सकते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया कि बावर्ची फिल्म से है, और हमने आपसे ये पूछा था कि इसके गीतकार कौन है, तो आपने बताया कैफी आजमी, बिल्कुल सही उत्तर है। और हम बता दें कि इसे गाया है मन्ना डे ने। बड़ा खूबसूरत सा गीत है ये, और इस गीत के लिए सभी ने बड़े अच्छे से पसंद भी किया, प्यार भी किया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि उन्होंने ये बावर्ची का गाना है और इसे टीवी पर देखा है, इन्हें याद नहीं है। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले, हाँ ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हम, पहले घर पर तार का बना हुआ एक हैंगर हुआ करता था जिसमें पिताजी आने वाले हर पत्र को बहुत सलीके से फंसा कर रख देते थे। आज तो पिताजी है नहीं, और समय के साथ हैंगर भी गायब हो गया है। जी हमारे घर पर भी यही होता था, सभी के घर पर ये चीज़ होती थी उस समय। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बावर्ची फिल्म में राजेश खन्ना ने एक बावर्ची का रोल निभाया।

एक संयुक्त परिवार के मनमुटाव को दूर करके आपस में सद्भावना और लगाव को लगाने की, फिर से जगाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, प्रेरणा देने वाला किरदार है। बिल्कुल सही बात है ये कि इतना सुंदर किरदार उन्होंने जो निभाया है। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि ये गाना राग हेमंत में है और मन्नाडे की आवाज़ है, बावर्ची फिल्म का ये गीत है। बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि हाँ, इस फिल्म में हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और राजेश खन्ना की बेहतरीन किरदार जो उन्होंने निभाया है। ये फिल्म कितनी बार भी देख लें बुरा नहीं लगता, है ना। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि भारतीय डाक इंडियन पोस्ट के द्वारा साधारण पोस्ट कार्ड की वर्तमान कीमत 50 पैसे है, 5 पैसे का पोस्ट कार्ड दशकों पुरानी बात है और वह बदल गया। जी बिल्कुल, बहुत समय बाद बदला। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आपने फिर से मनचाहे गीत कार्यक्रम शुरू किया है जिससे हम पोस्ट कार्ड तक पहुँचने लगे हैं। ये भी तो एक अच्छी बात है ना, हमारे और आपके मिलने का। हमारे श्रोता को डाकू के रोल में धर्मेंद्र और सुनील दत्त इतने बेहतरीन लगते हैं कि वह छोटे थे तो उन्हें लगता था कि वास्तव में डाकू ऐसे होते होंगे, शायद होते भी होंगे, हम सब ने तो देखा ही नहीं, है ना। और भी बहुत सारे किरदार होते हैं, जैसे क्लर्क होते हैं, जैसे दूसरे और भी किरदार होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, तो उन किरदारों के बारे में भी, उन किरदारों के नाम भी आप लिख सकते हैं हमारे साथ में, तो आप ज़रूर लिखिएगा हमारे साथ में। और हमारे एक श्रोता ने एक किरदार के बारे में जिक्र किया है कि बलराज साहनी की स्वाभाविक अभिनय बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने 2 बीघा जमीन में रिक्शा वाला की भूमिका निभाई थी कलकत्ता में। उस समय हाथ से खींचने वाला रिक्शा चलता था, हाथ से खींचने वाले रिक्शे वाले का असाधारण अभिनय किए थे बलराज साहनी और उनका यह किरदार जो है वह उन्हें बहुत अच्छे से याद आता है। अब देखिए जंजीर में इन्हें प्राण, एक श्रोता लिखते हैं, प्राण साहिब ने गुंडे का किरदार निभाया था जिसमें उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसके बारे में वह देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब हम चल रहे हैं कि अभी हम जो इन सभी किरदारों के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बचपन में टारजन का किरदार देखा था और सोचा था ऐसे ही बिंदास उन्मुक्त होना है। आप टार्जन होना चाहते थे, बढ़िया बात है। वैसे सही बात है, जंगल में रहो, आराम से खाओ पियो और ऐश करो। वैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, एक किरदार है तेल मालिश वाला, सर जो तेरा चक्रा है। हाँ, ये भी जीवंत अभिनय है जॉनी वॉकर का। ऐसे ही हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। हम सब चीज़ें नहीं पढ़ सकते परंतु हम आप तक अगला गीत ज़रूर पहुँचा सकते हैं और अगला गीत जो है वो आप सुनेंगे। इसमें हम जो किरदार है वो डॉक्टर का है और गाना जो गा रहा है वो मरीज गा रहा है। अब उस डॉक्टर का किरदार किसने निभाया ये बता दीजिएगा और ये बता दीजिएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, गायक बता दीजिए और जो डॉक्टर हैं उनका नाम बता दीजिए। वैसे इस फिल्म में 2 डॉक्टर हैं, अगर दोनों का नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा, दोनों अभिनेताओं का नाम बता देंगे तो अच्छा लगेगा। और इस गीत के साथ मेरा एक और प्रश्न मन में चल रहा है कि कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसा काम जो सोचा था और पूरा हो गया और सच में आपने वो किरदार निभाया हो, जरूर से बताइएगा। बताइए इस गाने को किसने गाया और इस फिल्म में डॉक्टर का जो किरदार है वो किन्होंने निभाया।

हम सुन रहे थे फिल्म आनंद का ये गीत, योगेश के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत को गाया किसने, तो आपने सही उत्तर दिया, गायक कलाकार का नाम है मुकेश। और इनके गाने के इस गीत के साथ में कुछ संदेश हैं, उन सब संदेशों को मिलाकर हमारा अगला उत्तर बन जाता है। हमने आपसे पूछा था कि इसमें डॉक्टर की भूमिका किसने निभाई, तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि मरीज आनंद फिल्म में, जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन डॉक्टर हैं और साथ में भास्कर बनर्जी नाम के डॉक्टर का किरदार वो निभा रहे हैं, और डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी का किरदार रमेश देव निभा रहे हैं। उसके साथ में बताया कि ललिता पवार एक सहृदयी नर्स का जो किरदार है जी, जहाँ पर उन्हें माँ का एक उपाय दिया गया है, माँ का एक पद दिया गया है, उस पद के साथ में उसे निभा रही हैं। ये सारी सूचनाएं आपसे

सभी देते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता कितने ज्ञानी हैं, कितना नॉलेज है उन्हें, हर विषय पर आपके पास में ज्ञान है। और ऐसे ही एक और ज्ञान हमारा और हमारे श्रोता का मिल गया जो हमें बहुत अच्छा लगा पढ़कर। उन्होंने बताया कि अगला जो गाना हम आपको देने वाले हैं उसके बारे में बताया, पर उसके पहले एक दो संदेश हैं जो पढ़ लिए जाने चाहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, प्राण की भूमिका हमेशा विलेन और हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े वाले काम होते थे, और पर्दे पर प्राण को देखकर मन खराब हो जाता था, और उपकार जंजीर फिल्म में वो अलग रूप में ही दिखे। हालांकि ऐसा उनके साथी कलाकार कहा करते थे कि ये सबसे बढ़िया इंसान थे, व्यक्तित्व थे, लोगों की मदद में लगे रहा करते थे। हमारे श्रोता कह रहे हैं, साप्ताहिक सत्संग में ढोलक हारमोनियम वादक की कम उपस्थिति होने के कारण। अच्छा जी, कुछ उन्होंने संदेश भेजा है, उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। हमारे एक श्रोता ने बताया कि उनके पतिदेव का पसंदीदा गीत है, हम उनसे हमेशा फरमाइश करते हैं कि वह गाया करें। ऐसे ही बहुत सुंदर सा गीत है बाबू मुशाई, इस गीत के साथ में हम इस गीत को इस शब्द के साथ याद करते हैं। और चलिए अब हम चलते हैं उस अगले गीत की तरफ जिसमें हमारे श्रोता ने भी बताया और ये गीत हमने भी छांट के रखा था कि एक अभिनेता या एक अभिनेत्री किसी एक ही फिल्म में एक दो तीन चार पांच या कई सारे अन्य किरदारों को भी निभा लेते हैं। और ऐसा ही एक फिल्म नया दिन नई रात में संजीव कुमार 9 अलग किरदारों में दिखे हैं। तो चलिए हम ये वाला जो गीत है वो आपको सौंप रहे हैं, और आप याद कीजिए ऐसी कौन सी फिल्में देखी हैं जिसमें एक ही व्यक्ति ने कई सारे किरदार निभा लिए हो। वही पुलिस वाला भी बन गया हो तो वही गुंडा भी बन गया हो, कौन जाने कि वही व्यक्ति एक सामान्य किसान हो, थोड़ी देर बाद उसका ही बहरूपिया आ गया हो, है ना, किसी और रूप में। ऐसी कई सारी बातें होंगी आपके मन में, तो जल्दी से हमें बताइए। एक ही प्रश्न दे रही हूं इस बार में आपको, जल्दी से बताइए ऐसा कौन कौन से किरदार आपको याद है, ऐसी कौन कौन सी फिल्में आपको याद है जहां पर बहुत सारे किरदार एक ही अभिनेता ने या अभिनेत्री ने निभाए हैं। बहुत मेहनत लगी होगी ये काम करने में, पर किया तो होगा, चलिए बताइएगा जरूर।

हम सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत, और इस गीत में हमने बस आपसे ये पूछा था कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से किरदार हैं जो कई लोगों ने कई बार निभाए हैं, एक ही अभिनेता ने कई सारे किरदार निभाए हों, तो ऐसी भी कई फिल्में हैं। तो संजीव कुमार को ये याद किया लोगों ने, और बड़े अच्छे से हमारे श्रोता ने बताया कि अंगूर में जो उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है, जी बिल्कुल, बड़ी मजेदार भूमिका रही है वो। और हमारा दिमाग भी कुछ समय के लिए घूम जाता है, पर जब पूरी फिल्म देखते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। तो इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया कि राजेश खन्ना फिल्म सच्चा झूठा, दिलीप कुमार राम श्याम, हेमा मालिनी सीता गीता, और हमारे श्रोता ने जो बात बताई थी वह भी यहीं पर है कि बहुत अच्छे से राम श्याम, गोरा काला, हम दोनों इज्जत, जॉनी मेरा नाम जैसे फिल्म का नाम लिया कि कॉमेडी में ट्रिपल रोल, पहला राम, दूजा राम, तीजा राम का आईएस जौहर ने, अभिनेता आईएस जौहर ने इस किरदार को निभाया था। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किरदार था और बड़ा आनंद के साथ था। इसमें मलयालम अभिनेता जॉनसन जॉर्ज ने फिल्म अरानु नजान में अभिनय की मात्रा 45, एक ही अभिनेता द्वारा 45 अलग अलग अभिनय किए गए एक ही फिल्म में, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने आखिरी रास्ता में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने 3 अलग अलग भूमिकाएं निभाई। ऐसे करके हमारे श्रोताओं ने सच्चा झूठा, राम श्याम, सीता गीता, इन सभी फिल्मों की फिर से जिक्र किया है। गोविंदा को देखा था फिल्म हद कर दी आपने में, दादा दादी, माँ पिता, बहन, सारे रोल उन्होंने ही किए थे। जी जुड़वा, बेटों की तेरी भूमिका कई सारे निभाए हैं अमिताभ बच्चन ने, इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं फिल्म महान के बारे में। राज राणा, रणवीर, इंस्पेक्टर शंकर और गुरु, दूसरा बेटा जो एक स्टेज एक्टर है, इसके बारे में, आंटी नंबर वन के बारे में जिक्र हो रहा है, कई सारी फिल्मों के बारे में जिक्र हो रहा है। और इन सब फिल्मों के साथ में एक और है रेलवे इंजीनियर, ये भी बड़ा अच्छा काम करते हैं, और इनका बर्निंग ट्रेन में विनोद खन्ना ने इस किरदार को निभाया, ऐसे हमारे श्रोता बता रहे हैं। पर देखिए कितनी सारी बात होती है ना, कितनी अच्छी बात होती है ना कि हमारे ये किरदार हमें कई लोगों से जोड़ देते हैं, कई किरदारों से जोड़ देते हैं। अब अगर हम तारे जमी पर की बात करें तो वहां पर एक शिक्षक है और एक बालक है, दो अलग अलग किरदार निभा रहे हैं, और दोनों किरदार हमें ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह से बच्चों को संभालना है। अगर हम सोनम कपूर की बात करें तो एयर हॉस्टेस बनती है नीरजा 2016 की इस फिल्म में, और क्या बढ़िया किरदार निभाती है। नासा के वैज्ञानिक के रूप में शाहरुख खान दिखाई देते हैं, ये हमारे श्रोताओं ने बताए, उन्हीं में से हम जिक्र कर रहे हैं कि शाहरुख खान नासा के वैज्ञानिक बनते हैं स्वदेश फिल्म में, और वह बताते हैं कि अपना देश कितना अच्छा है, कैसे आना है वापस, वो किसी तरह से वह वापस आ जाते हैं। नायक द रियल हीरो में अनिल कपूर एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं और वह बड़े अच्छे से उसके बारे में बताते हैं। एक और फिल्म का जिक्र हमारे श्रोता कर रहे हैं, अनुरोध, वह कहते हैं कि राजेश खन्ना ने पर्दे पर अपने असली नाम को छिपाकर छद्म नाम से अपने गायन को प्रदर्शित किया है और बहुत बढ़िया गीत गाए हैं। जी बिल्कुल, हिचकी फिल्म में रानी मुखर्जी ने उन लोगों की समस्या को भी बताया जो बराबर से लगातार बोल नहीं सकते, बीच बीच में अटकते हैं या कोई समस्या आती है, वो कई बार हम भी हंस देते हैं उनके ऊपर, तो हम भी गलत हो जाते हैं, है ना। कितनी सारी चीजें हमें फिल्मों से देखने और सीखने को मिलती हैं। वह एक श्रोता बताते हैं कि पिंक में अमिताभ बच्चन ने एडवोकेट दीपक की, और फिल्म जॉली एलएलबी में अरशद वारसी ने, फिल्म बंदा में मनोज बाजपेयी ने एडवोकेट सोलंकी, पीसी सोलंकी का किरदार, फिल्म मुल्क में ऋषि कपूर और तापसी पन्नू, फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू में अभिनेत्री यामी गौतम ने एडवोकेट की गुलजार रिजवी का, और फिल्म दामनी में अभिनेता सनी देओल ने एडवोकेट की गोविंद का, जो आइकॉनिक प्रसिद्ध किरदार निभाया था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्ती फिल्म का जिक्र किया जा रहा है कि नाना पलसी कक्कर ने इस एक शिक्षक का किरदार निभाया था शर्मा जी का, और किरदार रामनाथ गुप्ता, रामू का संरक्षक बनकर उसकी पढ़ाई में सहयोग किया था। हमारे लिए कितनी सारी शिक्षाएं इन सब से मिलती हैं, ऐसी कोई शिक्षा अगर किसी किरदार से आपको मिली है तो जरूर साझा कीजिएगा, और बताइए कि अगला जो गाना है वो अगले गाने में हमारा जो किरदार

व्यापार है, वो किस किरदार को निभा रहा है और उसके साथ साथ कौन सा व्यापार कर रहा है, दोनों चीजें आपको बतानी है। वो किरदार गायक, अभिनेता, कुछ भी हो सकता है उस फिल्म में, और उसके साथ साथ वो एक काम भी कर रहा है अपना पेट पालने के लिए, बताइएगा वो काम क्या है।

हम सुन रहे थे ये गीत आला फिल्म से यशुदास की आवाज़ में, और इसको संगीतबद्ध किया जयदेव ने। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म के कौन से किरदार को ये सभी बड़े अच्छे से निभा रहे थे, इसमें जो अभिनेता हैं, तो आप सबने बताया कि अमिताभ बच्चन ने कवि और गायक का किरदार निभाया, और हमारे श्रोता ने बताया कि अहीर भैरव राग है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से आप रागों के बारे में जानते हैं और आप जानकारी देते भी हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारी श्रोता बता रहे हैं कि इसमें बिजली मिस्त्री बने हैं और सौदागर में गुड़ बेचते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें उन्होंने तांगा यानी वो घोड़ा गाड़ी वाला जो तांगा है उसे भी चलाया है जब अपने खुद के पिता को अपने घर तक उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं। तो ये भी एक बढ़िया बात है कि एक पुत्र बगावत करता है लेकिन अपने संगीत के लिए बगावत करता है और संगीत के लिए जीता भी है। हमारे श्रोता ने बताया बनारस का गबरू जबान फिल्म घातक में सनी देओल मुंबई शहर पहुंचकर अजब की भूमिका निभाई है। दाग में राजेश खन्ना ने व्यक्ति दोहरी भूमिका निभाई है। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं देश की सेवा में फौजी का रोल करने वाले धर्मेंद्र फिल्म हकीकत में बेहतरीन अभिनय किया था। जी आखिरी रास्ता में दो अमिताभ थे, महान में तीन अमिताभ थे। बहुत सारी बातें आप जानकारी दे रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा के बारे में जानकारी भी आप दे रहे हैं। इसके साथ ही आपने नई फिल्मों पुरानी फिल्मों की जानकारी दी है। साल 1960 में आई फिल्म जमीन के तारे के बाल कलाकार हनी ईरानी और डेजी ईरानी को कैसे भुला सकते हैं। यह अमीर और गरीब बच्चे की कहानी है जो जिंदगी से निराश होकर हिमालय में भगवान का घर अपनी स्वर्गीय माँ को ढूंढने के लिए ट्रक में चढ़ जाते हैं। तो ड्राइवर पूछता है ओ मेरे प्यारो जमीन के तारों जाना तुम्हें कहाँ, तो बच्चे उत्तर देते हो गाड़ी वाले ले चलो हमें वहाँ, मैया हमारी है जहाँ। बिल्कुल सही बात है, सुंदर से गीत, सुंदर सी बातें यहीं से हमें सीखने के लिए मिलती हैं। इसके साथ ही चलिए हम अगला गीत आपको जल्दी से सौंप देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं ये गीत आप जरूर सुने। आपको कौन सी माँ यानी फिल्मों में, आपकी माँ तो आपको सबसे अच्छी लगती ही होगी, पर ऐसी कौन सी अभिनेत्री हैं जो माँ का किरदार निभाते हुए आपको सबसे अच्छी लगी हैं, ज़रूर से बताइएगा। हालांकि हमारे श्रोता ने पहले ही भेजा है कि उन्हें निरुपा रॉय और दुर्गा कोटे जी जो फिल्मों में अभिनय करती हैं माँ का, वो बहुत अच्छा है। और उन्होंने इस गीत की बारे में भी कहा है कि पिता के किरदार में बलराज साहनी हैं, उनके अभिनय का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। तो ये बहुत सुंदर सा गीत है, ये गीत आपके लिए, आपकी माँ के लिए, आपकी माँ के साथ आपके प्रेम के लिए। पर इसके साथ एक उत्तर देना है, कौन सी ऐसी महिला है जो माँ के रूप में आपको फिल्म के पर्दे पर अच्छी लगती हैं, बताइएगा। और बताइएगा इस गीत के

ये सुंदर सा गीत हम सुन रहे थे और याद कर रहे थे, इसके साथ साथ अपनी अपनी माँओं को भी। हर माँ ने कितना प्यार दिया है और आप सबने कई सारी माँओं को यहाँ पर पसंद किया है, और उन माँओं में से आप सबने बड़े प्यार से बताया हमें कि किसी को वहीदा रहमान पसंद हैं, अभी जो माँ का किरदार कर चुकी हैं राखी गुलजार आपको पसंद हैं, तो किसी ने कहा कामिनी कौशल का किरदार आपको बड़ा पसंद आया है माँ के रूप में, किसी को साधना जी, किसी को अलग अलग सुलोचना जी, दुर्गा कोटे जी, अलग अलग किरदार बड़े लोगों को पसंद आए हैं। और माँ का किरदार करना इतना आसान नहीं होता, माँ का किरदार करने के लिए माँ बनना पड़ता है और लोग बने हैं। और अंत में मैं आपको ये गीत सौंप रही हूँ वहीदा रहमान की फिल्म खामोशी से, जो नर्स का रोल उन्होंने निभाया है, उस नर्स के किरदार को याद करते हुए सुनिए ये गीत। अगर बता सके तो बताइए कि इसके गायक कलाकार कौन है।

कर अपने कार्यों और विचारों पर हमें विचार करना चाहिए। अपनी गलतियों को पहचानना और उसमें सुधार करना आत्मिक उन्नति की पहली शर्त है। हमारे सामने असंख्य समस्याएं हैं और उन असंख्य समस्याओं का समाधान केवल इस बात पर टिका हुआ है कि हमारी आंतरिक स्थिति सही हो। हमारा दृष्टिकोण गलत होगा तो हमारे क्रियाकलाप भी गलत होंगे और गलत क्रियाकलाप से जो परिणाम सामने आते हैं वे भयंकर दुखदायी होते हैं। इसलिए हमें आंतरिक उत्थान, आंतरिक उत्कर्ष और आत्मिक विकास के लिए कार्य करना चाहिए और इसके लिए जरूरी है हम उन चीजों की तलाश करें जिन पर हमारी आत्मिक उन्नति टिकी हुई हो। और ये चार आधार हैं: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये चारों आधार ऐसे हैं दोस्तों जिनमें से एक को भी आत्मोत्कर्ष के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके बिना हमारे जीवन का उत्थान हो सके। मसलन बीज एक, जमीन दो, खाद तीन और पानी चार। इन चारों को मिलाकर ही किसी पेड़ का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार ये चारों चीजें बेहद जरूरी हैं। इसलिए आत्मिक उन्नति अहंकार और विकारों को मिटाकर अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करने की प्रक्रिया है, यानी ये बाहरी दिखावे के बजाय भीतर की यात्रा है।

अपने व्यक्तिगत विकास, मानसिक शांति और गलतियों में सुधार के लिए आत्म मंथन बेहद जरूरी हो जाता है। ये हमें खुद का आकलन करके अपनी कमियों को दूर करने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। आत्म परीक्षण या आत्म निरीक्षण व्यक्तिगत विकास और कल्याण के लिए

एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। हमारा जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक अत्यंत अनमोल उपहार है। ये खुशियों, चुनौतियों और अनुभवों से भरा एक खूबसूरत सफर है। जीवन का असली उद्देश्य हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना और निरंतर आगे बढ़ना है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को जितना कोई बाहरी सिखा सकता है, उससे कहीं अधिक वो अपने आत्म अवलोकन या आत्म समीक्षा से सीख सकता है। आत्म समीक्षा यानी अपना मूल्यांकन करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई और नहीं जानता। इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए आत्म समीक्षा बेहद जरूरी है।

सवाल ये उठता है कि आत्मिक उन्नति के लिए आत्म समीक्षा कैसे की जाए। जब हम सुबह उठते हैं तो ये भावना प्रकट करनी चाहिए कि हमें अनमोल मनुष्य जीवन मिला है, तो सबसे पहले हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें, फिर उस ईश्वर के दिए गए इस दिन रूपी जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग करें। दिन भर मेहनत मशक्कत कर रात्रि को सोने जाएं तो अपने दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन करें। अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और जो कार्य गलत हुए हैं उनके लिए ईश्वर से क्षमा याचना करें। गलती हो जाने पर हमें खुद को माफ करना भी सीखना चाहिए। हालांकि खुद को माफ करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें आंतरिक शांति की जरूरत होगी, और जब तक आंतरिक शांति नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मन को शांत रखें। मन की सच्ची शांति ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बाहरी उपलब्धियां चाहे कितनी भी क्यों न हो जाए, अगर हमारा मन शांत और संतुष्ट नहीं है तो कोई भी सुख अधूरा लगता है। इसलिए नियमित ध्यान, सकारात्मक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में उतारना चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांभानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया क्वार्टर फाइनल।

0: ارجنٹینا سے مقابلہ ہوگا۔ اب سماچار وستار سے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے آج انڈونیشیا کے راشٹرپتی پربھو سوبیانتو کے ساتھ یوگیاکرتا استھت یونیسکو وشو دھروہر استھل پرامبنن مندر کا دورہ کیا۔ پردھان منتری کا پارمپرک وادیہ یانتروں کی مدھر دھن اور شاستریہ نرتیہ کے ساتھ سواگت کیا گیا۔ شری مودی نے مکھیہ شیو مندر میں پوجا ارچنا کی اور بھارت انڈونیشیا سہیوگ کے تحت چل رہے سنرکشن کاریوں کا جائزہ لیا۔ سنیکت بیان میں راشٹرپتی پربھو نے کہا کہ پرامبنن بھارت اور انڈونیشیا کے بیچ صدیوں پرانے سبھیتاگت بندھن کا پرتیک ہے۔ उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामबनन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और

0: छुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली NCR में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई EMI नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक VK बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री VD सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री VD सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान

0: हॉर्मुज़ गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के पांचवें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सम्पन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे आशिक फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज में शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत अपना बना के देखो फिल्म से, मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में, एसएच बिहारी के बोल और रवि के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे ये गीत हरियाली और रास्ता फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सदाबहार नगमे कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं बात एक रात की फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देवर्मन के संगीत के साथ यह गीत।

0: हम सुन रहे थे कैलाशपति फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। मदन ने इसे लिखा और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
3: जी।
2: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत आजाद फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण के हैं बोल और सी रामचंद्र का है संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था, जो स्वाभाविक

0: रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत। असली नकली फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। और इसी गीत के साथ आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को, नमस्कार।

0: ही सहेली
1: नमस्कार मंदाकिनी जी, आपको और सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को नमस्कार।
2: नमस्कार चंचल, आपको भी और सभी सुनने वालों को, सखी सहेली के हमारे सभी श्रोताओं को प्यार भरा मंदाकिनी जोशी की ओर से नमस्कार। क्या हाल है चंचल?
1: हाल बहुत अच्छे हैं। और देखिए ना, कितनी बार हमें ना शिकायतें बहुत करते हैं, बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो गई तो हम शिकायत करते हैं, अरे इतनी बारिश हो रही है। तो ये जो शिकायत करने का हमारा एक आदत जो बन चुकी है, अच्छा हो रहा है तो भी शिकायत, अच्छा ना हो
2: तो भी शिकायत। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और इन दिनों देखिए ना, हमारे मुंबई में तो मूसलाधार वर्षा हो रही है, हमें शिकायत है कि ओहो इतनी बारिश, कैसे जाए, कहाँ जाए, और आप ही की तरह चंचल हवाएं बह रही हैं। बड़ी मुश्किल में हैं हम लोग, और लगता है कि अरे कैसे क्या होगा। लेकिन बाहर कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर आश्वासन दिए गए कि भी बारिश आने वाली है, लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी है।
1: बिल्कुल, तो होता यही है कि शिकायतें भी हैं, आश्वासन है, और आश्वासन पूरे हो गए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, फिर कई बार हमारे मन से शुक्रिया भी निकलता है। लेकिन ना हो हमारी मनचाही बात पूरी तो झट से हम शिकायत करने लगते हैं, ये एक मानव स्वभाव ही कह लीजिए। लेकिन मेरे ख्याल में आपका या मेरे और सुनने वालों का ये मानना होगा कि शिकायतें जिंदगी में कम और शुक्रिया का भाव अगर ज्यादा ले आए तो जिंदगी कुछ आसान हो जाती है।
2: हाँ बिल्कुल सही कहा चंचल आपने, और इसलिए शायद आज का विषय ये रखा गया है कि शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा। बिल्कुल,
1: इसके अलावा शब्द जो हम देते हैं हमारे श्रोताओं को, जिसमें वो अपने विचार हमें लिख कर देते हैं, इसमें हम आश्वासन की बात करेंगे कि आश्वासन शब्द उनके लिए क्या मायने रखते हैं, और आश्वासन को लेकर उनकी जिंदगी किस तरह से शब्द से जुड़ी हुई है, उन्हें कौन से आश्वासन दिए गए जो कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए, और क्या शिकायतें उनके मन में रही।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे श्रोताओं के लिए है ये सेगमेंट, और शब्द हमारा विचार आपके इसलिए रखा जाता है ताकि आप अपनी बात, अपने जज्बात, अपने भाव, अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकें। तो आश्वासन जिंदगी में एक ऐसा शब्द है जो बहुत मायने रखता है। हमें कोई थोड़ा सा भी आश्वासन दे देता है ना, मैं हूं ना, तो ये बहुत बड़ा आश्वासन होता है हमारे लिए, और हम पूरी जिंदगी उसको याद रखते हैं। तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिए। जब हम किसी को आश्वासन देते हैं तो तभी दीजिए जब आप उसको पूरा कर सकते हैं।
1: बहुत सही बात कही।
2: बहुत सारे लोगों का दिल हम जाने अनजाने तोड़ देते हैं ये कहकर कि अरे मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, मुझसे उम्मीद करिए, मैं हूं ना, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। लेकिन जब किसी को साथ की आवश्यकता होती है तो हम उन्हें दोराहे पर, चौराहे पर छोड़कर अलग हो जाते हैं।
1: तो ऐसे समय पर पल्ला झाड़ने वाले इंसान को भी हम हमेशा याद रखते हैं कि इन्होंने कहा था साथ देंगे, लेकिन साथ देने का समय आने पर पल्ला झाड़ के अलग हो गए।
2: बिल्कुल, तो आज आश्वासन पर आप बताइए हमारे श्रोता लोग की किन किन को आपने आश्वासन दिया, या आपको दिए गए आश्वासन किसी ने पूरे किए या नहीं।
1: बिल्कुल, और साड़ियों का संसार, इसमें जब हम अंदर होंगे तो बात होगी कोटा की साड़ी जो बहुत फेमस है, कोटा डोरिया, उसके बारे में।
2: बिल्कुल, ऐसी साड़ी है ये जिसे हर माहौल में पहना जा सकता है, और राजस्थान में तो इसकी बहुत ही मतलब भरमार है साड़ी की, और हर लगभग औरत के पास कोटा डोरी की साड़ी तो मिलेगी आपको। बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें महिलाएं जो है कोटा डोरिया की साड़ी पहने भी मिलती है, और कुछ महिलाएं ऐसी है चंचल जो सिर्फ कोटा डोरिया ही पहनती है।
1: तो हमारी कौन सी सखियां हैं जिनके वार्डरोब में ये साड़ी जरूर है, और उन्होंने क्यों खरीदी या उन्हें ये क्यों पसंद है, और जिन्होंने नहीं खरीदी है वो अब चाहती हैं कि उनकी वार्डरोब में ये साड़ी आ जाए, तो वो क्यों चाहती हैं, ये जरूर हमें बताएं। इसके अलावा आज चावल के कुछ व्यंजन हम चाहेंगे कि हमारी सखियां हम तक भेजें।
2: अच्छा।
1: इसमें चावल की तो बहुत अच्छी चीजें होती है, नी डोसा होता है, अनार से जो है खास अवसरों पर बनाया जाता है, चावल के कई तरह के पापड़ भी बनाए जाते हैं, इसमें कुछ कच्चे चावल के होते हैं, कुछ पकाए हुए चावल के भी होते हैं। तो पके या कच्चे जिस भी तरह की चीजें आप चावल की बनाती हैं वो रेसिपीज हमारे साथ साझा करें। फिलहाल हम साझा करते हैं अपनी सखियों के साथ में एक खूबसूरत सा गीत।
2: बिल्कुल।

0: जी
1: तो
0: तो
1: गाना बड़ा
0: बहुत
1: अच्छा था, है ना?
0: बहुत सुंदर, इसलिए आपसे आज शिकायत कम करेंगे और चंचल आपको शुक्रिया अदा करूंगी मैं अच्छे गाने सुनवाने के लिए।
1: तो भाई एक बड़ा सुंदर सा संदेश है, इसमें किसी हमारे विषय से जुड़ी बात नहीं है, लेकिन यूं ही हमारी सखी ने लिखा है कि रेडियो की मधुर तरंगों पर जब शब्दों के फूल खिलते हैं, चंचल जी प्यारी बातों से मन के आंगन में रंग मिलते हैं,
0: क्या बात है।
1: मंदाकिनी जी की मुस्कान में अपनापन सा झलकता है,
0: अरे
1: उनकी मीठी आवाज सुनकर हर श्रोता का दिल महकता है।
0: आहा
1: सखी सहेली केवल कार्यक्रम नहीं, रिश्तों की एक सुंदर डोरी है, ज्ञान मनोरंजन का अपनापन, जिसकी हर बात बड़ी ही प्यारी है। यूं ही गूंजती रहे ये आवाजें, खुशियों का संदेश सुनाती रहें, चंचल जी और मंदाकिनी जी के संग सखी सहेली यूं ही मुस्कुराती रहें।
0: क्या बात है, क्या बात है, यानी हमारी सखियों को, हमारी सखाओं को हमारी मुस्कुराहट भी यहाँ से दिख जाती है ना?
1: बिल्कुल, ये जो और ये जो सुनकर जो देखना होता है ना, ये कई बार हम गानों में भी महसूस करते हैं कि किस तरह के जो भाव हैं और गायक जिस तरह से गाते हैं, हम उसे पूरा महसूस कर
0: कह
1: पाते हैं,
0: सकते।
1: हम देख पाते हैं, चाहे हमने वो चलचित्र ना देखा हो,
0: हाँ
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: वो भाव जिस तरह से चल रहे होंगे, अपने दिमाग में एक चित्र हम बना लेते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और उद्घोषक जो खास तौर से जब प्रोग्राम प्रेजेंट करता है तो
1: जी
0: हमारे श्रोता एक पिक्चर बना के चलते हैं
1: जी
0: कि भाई चंचल जो है कैसी दिखती होंगी, चंचल लगती है कि नहीं, और मंदाकिनी जी कैसी लगती है, मुस्कुराकर बात कर रही है कि नहीं, उनकी एक पिक्चर चलती है और वो उसी हिसाब से सोचते भी, और हमें भी अच्छा लगता है
1: जी
0: जब हमारे श्रोता उस पिक्चर में हमारी सूरत देखते हैं, बोलने
1: जी
0: का अंदाज देखते हैं, तरीका देखते हैं। तो चलिए अभी शिकायत करेंगे हमारे श्रोता की, दोनों सखियां अपनी अपनी
1: हाँ
0: तारीफों में उलझ गई है ना? तो अगर हम अपने जीवन में चंचल ये मूल मंत्र अपना लें कि बात बात पर हम शिकायत नहीं करें बल्कि हर बात के लिए शुक्रिया अदा करें, तो शायद कहते हैं जिंदगी बहुत आसान बन जाती है। और जिंदगी में हमें शिकायत नहीं, कहते हैं शुक्रिया ज्यादा अदा करना चाहिए, हमें दूसरों से तारीफ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, और संसार की 90% समस्याएं बातचीत के असंतोष

0: तुलित लहजे से ही पैदा होती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। हमने बात को जिस तरीके से कहा, अगर वो उसी तरह से सामने वाले तक पहुंची तब तो ठीक, अगर शब्दों का थोड़ा भी हेर फिर उन्होंने अपने तरह से सोच लिया तो बात का पूरे मायने ही बदल जाते हैं। और ये जो आपने कहा ना असंतुलित लहजा जो है,
0: बिल्कुल
1: इसी से फिर सारी शिकायतें पैदा हो जाती है। और किसी ने कहा भी है कि हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है, लहजे के फर्क से इसे तलवार ना बनाओ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। अगर आप गुलाब की तरह अपनी बात कहते हैं
1: जी
0: तो वो वैसे ही पहुंचेगी, और अगर उसे तलवार बना देते हैं तो
1: जी
0: फिर वो तलवार की तरह ही अगले को जो है कलम करने की।
1: तो हमारी जो श्रोता हैं उनके शब्दों के तलवार ना चले, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। उनका कहना है कि शिकायतों के दफ्तर में अब ताला लगा दिया है, जो मिला है झोली में उसे गले से लगा लिया है। गिले शिकवे करने से बस दिल भारी होता है, और शुकराना करने से हर लम्हा प्यारा होता है।
0: क्या बात
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम शुक्रिया ज्यादा, अब यही जीने का सीधा सा वादा। धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, प्यास अगर लगी है तो घड़े में पानी भी पास है। कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की महक से ही तो महकता है जमाना। क्या बात है, हमारे सभी सखियां और सखा तो कवि बन गए हैं, मुझे लगता है शायर बन गए हैं, है
1: और
0: ना।
1: इसी के आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं। छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और हम शुक्रिया तो अदा ही नहीं करते। हमारे पास जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं रहते। हालांकि मैं इस बात को मान रही हूँ, संतोष में रहना बहुत मुश्किल है। आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन हम अगर खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो भी है उसमें हम खुश रह सकते हैं। ये इतना मुश्किल भी नहीं होता। और ऐसा ही करें कि छोटी छोटी बातों में शिकायत करने की जो आदत है, उसके पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, उसकी वाली इतनी अच्छी है, हमारी वाली इतनी अच्छी नहीं है, ये चीजें हमारे जीवन को मुश्किल और तनाव से भरा हुआ बना देती हैं। इसीलिए हम खुद तो तनाव में इसे हम खुश तनाव में आते ही हैं, खुश नहीं रहते। लेकिन हम शिकायत करने से हमारा जो जीवन के प्रति नजरिया है वो भी खराब होता जा रहा है। तो जारी है कि शिकायतें ना करें, जो है उसमें खुश रहें, आपके पास जो मिला है उसका हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें, और भगवान ने जो आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद करें, शिकायत करना बंद कर दीजिए।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। हालांकि मैं मान रही हूँ कि संतोष रहना बहुत मुश्किल है, आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन अगर हम खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है हम उससे खुश रह सकते हैं, बस ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ऐसा ही करें, जो छोटी मोटी बातों में शिकायत करने की आदत है उसके पास ये है कि हमारे पास नहीं है, ये हमें खुद ही दुखदायी बना देता है। और बिल्कुल सही कहा कि जब हम किसी का अभिवादन करते हैं ना चंचल, जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारा अहंकार भी समाप्त हो जाता है। और इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति में बड़ों को प्रणाम करना सिखाया जाता है, और दूसरों का आभार व्यक्त करना बहुत जो है अच्छा होता है, और हमें दूसरों से आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं, और दुआओं के लेन देन से हमारी सफलता का जो है मार्ग प्रशस्त होता है।
1: अब हमारे श्रोता कहीं ये शिकायत ना करते कि भाई गाना नहीं सुनवा रही हैं सखी, सिर्फ बातें किए जा रही हैं, तो बातें भी करेंगे, संदेश भी पढ़ेंगे गाना सुनने के बाद।
0: चलिए

0: चल, भूलना तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर हमारा थोड़ा सा भी कोई काम कर देता है तो उसका शुक्रिया हमें हर हालत में अदा करना चाहिए, और किसी से थोड़ी सी मदद मिल गई तो उसका आभार व्यक्त कर दें। आभार और क्षमादान कहते हैं हमारे जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं। आभार या शुक्रिया करने का मतलब है उसकी कद्र करना, यानी
1: बिल्कुल
0: हम दूसरे का आदर तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर उनके प्रति स्वीकार्यता का भाव होगा। हम स्वीकार करेंगे उनकी सहायता को,
1: जी
0: उनको। तो जब जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच जागृत हो जाती है।
1: और इसी तरह से जो शिकायत का भाव है वो एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। नकारात्मक हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तभी तो शिकायत मन में आती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं कि भगवान या किसी भी उच्च शक्ति से शिकायत करने की बजाय शुक्रिया या कृतज्ञता व्यक्त करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। जैसा भी आप भी बता रही थी, कृतज्ञता का अभ्यास करने से जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण आता है, तनाव कम होता है। शुक्रिया अदा करने से आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो आपके पास है, ना कि उनके पास जो आपके पास नहीं है।
0: बिल्कुल
1: शिकायत उस आम आदमी से भी नहीं, क्योंकि शिकायत भगवान से होनी चाहिए। अच्छा हुआ ये पल आपने मुझे दिखाया और उससे भी अच्छा कुछ मिलने की उम्मीद जगी। यानी
0: बिल्कुल
1: कि हम उस भगवान से ही ये कहें कि भाई तुमने जो दिया है वही अच्छा है।
0: हाँ, यानी भगवान को भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा, ये हमारे जीवन का मोटो हो तो हम परेशान नहीं होते, लेकिन ऐसा हमसे हो नहीं पाता। हम समाज और परिवार से शिकायत ही रखते हैं, इसकी जड़ में नहीं जाते, जिसका कारण हम खुद ही हैं। हमें बचपन से शिकायत मिलती है, हम बड़े होकर भी वही करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। शिकायत की भावना की जगह सहयोग की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। जो मिला है उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया हमें अदा करना
1: इसी
0: चाहिए।
1: तरह से हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो शिकायत और शुक्रिया वाली बात है ये सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है। क्योंकि शिकायतें दर्ज करवाने की इस आदत अगर पड़ जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। और शुक्रिया अदा करने पर तो कोई लोग भी अगर शुक्रगुजार होते हैं तो उसे हम नेक और भला आदमी मानने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाले अपने आप में कमजोर होते जाते हैं, जबकि शुक्रिया अदा करने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा करना चाहिए। भाई, ये तो सुखमय जीवन का मूल मंत्र है और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है, क्योंकि शिकायत जो दर्ज करवाते हैं उनको आदत हो जाती है कि हर वक्त वो शिकायत ही करते रहते हैं, और शुक्रिया अदा करने वाले तो जो लोग हैं वो तो भाई शुक्रिया ही अदा करेंगे, और उसे नेक और भला आदमी हम मानते भी हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाला खुद ही जो है कमजोर होता जाता है।
1: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं कि अब यही है जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, अगर प्यास लगी है तो घड़े में पानी भी पास है। कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की से हो तो महकता है जमाना।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता ने लिखा है कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं और मेरी धर्म पत्नी हमेशा माता रानी और प्रभु परमेश्वर का शुक्राना ही अदा करते हैं, क्योंकि देने वाली तो माता रानी ही है, जो हमें देती है और जो हमें देना चाहिए जो भी वो उन्हें मालूम होता है। तो शिकायत किस बात की, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और हमारे जीवन में भी हम दोनों शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करते हैं, ये भी हमने बच्चों को सिखाया है हर बार लघु कथाओं के माध्यम से। ज्यादातर मेरी धर्मपत्नी और मुझे जब भी समय मिलता है बच्चों को बताकर और समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लगातार शिकायत करने से हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार घर कर जाते हैं, जिससे तनाव और मानसिक थकान बढ़ती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, जब हम शुक्रिया धन्यवाद भाव देते हैं तो हमारा दिमाग जीवन के सकारात्मक पहलुओं की ओर आकर्षित होने लगता है।
1: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि शिकायत दूरियां बढ़ाती है रिश्तों में, जबकि शुक्रिया का एक छोटा सा शब्द दिलों को करीब ले आता है। किसी की मदद के लिए धन्यवाद कहना, माता पिता के स्नेह के लिए आभार व्यक्त करना और मित्रों के लिए कृतज्ञ होना, ये छोटी छोटी बातें जीवन को सुंदर बना देती हैं।
0: बिल्कुल बता देती है, लेकिन एक श्रोता का मैं और विचार लेना चाहूंगी। ये लिखते हैं कि किसी बात पर निश्चित सकारात्मक भरोसा या तसल्ली देना, यानी आश्वासन। जीवन में आश्वासन मिलने पर मानसिक शांति और काम को प्रोत्साहन मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ये वचन चंदन सी शीतलता देता है। खोखले और झूठी बातें बिल्कुल करना गलत बात है, बार बार ऐसा करने से समाज में हमारी कीमत कम हो जाती है, इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए और अच्छे आश्वासन देने चाहिए।
1: तो अभी गीत सुन ले।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
0: जी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर से हाजिर हैं लेकर हमारे श्रोताओं के बहुत सारे संदेश और उनकी बातें।
0: बिल्कुल, और इस वक्त हम बात करने वाले हैं कोटा डोरिया साड़ी के बारे में, है ना। तो कोटा डोरिया साड़ी जो है चंचल राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक हथकरघा यानी हैंडलूम साड़ियों में से एक मानी जाती है। कोटा डोरिया छोटे बुने हुए वर्गों में बने हुए हल्के बुने हुए कपड़े का नाम है जो अपनी हल्की फुल्की बनावट, पारदर्शिता और चौकोर डिजाइन जिसे खट कहा जाता है उसके कारण देश भर में प्रसिद्ध है।
2: ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि भाई राजस्थान की तो बड़ी प्रसिद्ध साड़ी है और कोटा डोरिया का जो इतिहास है ना इस साड़ी का, ऐसा माना जाता है कि ये भी करीब करीब 300 साल पुराना रहा होगा। और ऐसा बताया जाता है मंदाकिनी जी कि 17वीं-18वीं जो शताब्दी थी उसमें राजस्थान राज्य के कोटा के महाराव ने दक्षिण भारत के जो खास जो मैसूर क्षेत्र है ना वहाँ के कुशल जो कारीगर थे, जो बुनकर थे, उनको कोटा बुलाया और इन बुनकरों ने वहाँ के जो स्थानीय कारीगर थे उनके साथ मिलकर एक नई बुनाई तकनीक का विकास किया जिसमें सूती और रेशमी धागों को मिला जुलाकर कुछ इस्तेमाल किया गया था। और हाथ से बुना गया जो आरामदायक कपड़ा था इसमें बहुत चमक भी होती है और इस विशेष बुनाई से बनने वाले जो चौकोर जाल जैसे पैटर्न बनते हैं जिन्हें खट कहा जाता है आपने बताया, और कोटा डोरिया की ये पहचान बन गया।
0: बिल्कुल सही कहा चंचल, और कोटा डोरिया नाम कैसे पड़ा ये भी एक बहुत ही रोचक बात है कि कोटा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ ये कला विकसित हुई और डोरिया का मतलब है डोरा यानी धागा जिसका मतलब है धागों से बुना हुआ महीन कपड़ा। तो शुरुआत में ये कपड़ा राजघरानों के लिए बनाया जाता था लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ये आम लोगों में भी लोकप्रिय होता चला गया
2: और सारी बातें हमारे श्रोता भी लिखकर हम तक पहुंचा रहे हैं। कोटा डोरिया जो साड़ी है इसे कोटा डोरी, कोटा साड़ी, कोटा मसूरिया ऐसे अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं और इन साड़ियों की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही हल्की फुल्की और आरामदायक होती हैं। सूती और रेशमी धागों का सुंदर मिश्रण होने के कारण वैसे तो किसी भी मौसम में इन्हें पहन सकते हैं लेकिन गर्मियों में खास तौर पर बड़ा उपयोगी माना जाता है इन्हें पहनने के लिए। और राजस्थान जहाँ की गर्मी बहुत चिलचिलाती हुई होती है तो वहाँ की महिलाएं सिले शायद इसे ज्यादा पसंद करती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, वहाँ जो लड़कियां हैं वो भी कोटा डोरिया के सूट भी पहनती हैं ताकि गर्मी का जो मौसम है वो आराम से निकल जाए।
2: और जब कोई साड़ी बहुत प्रचलित होती है ना उसके दुपट्टे भी चल जाते हैं।
0: हाँ, कोटा डोरिया के दुपट्टे भी बहुत प्रचलित हैं और बहुत सुंदर होते हैं लाइट शेड के सारे, जो हल्का रंग पसंद करते हैं ना उनके लिए तो बहुत खूबसूरत।
2: आजकल एक फैशन और भी है कि जब कोई खास समारोह होते हैं तो जब कुर्ता पायजामा पुरुष पहनते हैं तो उन पर भी दुपट्टा डालने का जो चलन है तो जैसे और जो चीजें हैं ना बांधनी के डाले जाते हैं तो वहाँ कोटा डोरिया का दुपट्टा भी
0: डाला जाता है और बहुत सुंदर लगता है पुरुषों के साथ में साइड में रखा हुआ ये जो कोटा डोरिया का दुपट्टा है ये भी चार चांद लगाता है उनकी खूबसूरती में। और जालीदार बुनाई होती है इसकी बहुत हल्की, लगभग 250 से लगभग 400 ग्राम और ये बहुत हवादार होता है जो हमारे अभी आपने कहा कि गर्मियों में पहनने के लिए सबसे आरामदायक माना जाता है। ताना और बाना की खास बुनाई के कारण इस पर छोटे छोटे चौकोर खाने बनाए जाते हैं जिसे खट अभी आपने बताया खट कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी पहचान भी यही है, हाथ से बुनी होने के कारण हर एक साड़ी अपनी अलग सुंदरता लिए होती है।
2: और जितनी भी हैंडलूम या हथकरघा की साड़ियां हैं ना वाकई में वो बड़ी प्यारी लगती हैं देखने में भी और पहनने में भी। और इस तरह से एक साड़ी को जब बनाया जाता है तो बनाने में डिजाइन के अनुसार करीब 10 दिन से लेकर 3 महीने भी लग जाते हैं। कई बार होता है ना बहुत
0: बारीक काम होता बारी है काम और होता। थोड़ा सा खास समारोह के लिए जब बनाई जाती है तो उसमें टाइम लगता ही है।
2: और अपनी शुद्धता और कारीगरी के कारण इनकी जो कीमत है वो भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपको कहीं 10,000 से शुरू होकर मिले और कहीं इसके 10 गुना तक भी कीमत पहुंच सकती है।
0: बिल्कुल, और इसे हल्के में भी मिलती है, आप आम स्त्री भी इसे खरीद सकती है और उसके बजट में ये साड़ी शामिल हो सकती है। और कोटा डोरिया साड़ी को उसकी विशिष्ट पहचान के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसकी क्षेत्रीय पहचान भी है। इससे असली कोटा डोरिया साड़ी की पहचान और बुनकरों के हितों की रक्षा में थोड़ा मदद भी मिलती है और हजारों बुनकर परिवारों की आजीविका इसी उद्योग से चलती भी है।
2: कोटा के पास एक जगह है, छोटी सी कस्बा है कैथून, जहां पर कोटा डोरिया साड़ियां ज्यादा बनाई जाती है, वहीं इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके अलावा कोटा के आसपास के कुछ और भी क्षेत्र हैं जहां पर ये साड़ियां बनाई जाती हैं। कोटा डोरिया साड़ी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और हथकरघा कला का महत्वपूर्ण प्रतीक है। देश विदेश में भी इसकी मांग बनी रहती है मंदाकिनी जी,
0: बिल्कुल,
2: और राजस्थान के हस्तशिल्प की कोई ये वैश्विक पहचान भी दिलवाती है।
0: बिल्कुल, और चंचल हमने तो ये भी देखा है बड़े बड़े पदों पर काम करने वाली जो महिलाएं ना कोटा डोरिया की साड़ी को पसंद करती है, बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी है ये, बहुत ही अच्छी लगती है पहने हुए। और कोटा डोरिया साड़ी केवल परिधान नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, पारंपरिक बुनाई की एक कला है और बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत का एक जीवंत प्रतीक भी है। और इसकी हल्की सी बनावट, आकर्षक इसकी डिजाइन और उत्कृष्ट हस्तशिल्प से इसे भारतीय वस्त्र परंपरा में एक खास स्थान भी मिल चुका है।
2: तो भाई क्योंकि गर्मियों में इसे खास पसंद किया जाता है, तो जहाँ बारिश नहीं है गर्मी है, वहाँ के लिए थोड़ी सी रिमझिम फुहार पहुँचा दी जाए।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो चंचल बात चल रही थी
3: कोटा डोरिया साड़ी के लिए और इस बारे में हमारी सखी लिखती हैं कि कोटा डोरिया साड़ी मैंने बहुत पहनी है, बहुत हल्की और गर्मियों में आरामदायक होती है और बहुत ही शानदार लगती है।
2: क्या बात है, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। जिन महिलाओं ने कोटा डोरिया को पहन लिया एक बार तो उनकी चॉइस में कोटा डोरिया साड़ी हर बार होती है।
3: और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी आश्वस्त हो गए हैं इस बात को लेकर कि कोटा डोरिया साड़ी अगर वो खरीदते हैं तो ये फैसला उनके लिए गलत साबित नहीं हो।
2: हाँ, यानी आपने आश्वासन दे दिया उनको।
3: और आश्वासन को लेकर बहुत सारे संदेश भी आ रहे हैं। आश्वासन की अगर हम बात करें जिसे अंग्रेजी में अश्योरेंस कहते हैं, इसका सरल अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना या भरोसा देना, ये कहना कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा या उसकी सहायता की जाएगी या किसी कार्य के पूर्ण होने के या परिणाम सही होने के विश्वास दिलाने के लिए भी हम आश्वासन शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, डरावा होता है या असमंजस में होता है तब उसे हिम्मत और भरोसा देने वाली बात को ही हम आश्वासन कहते हैं। और आश्वासन मतलब विश्वास पैदा करना होता है चंचल। डर और चिंता किसी की अगर हम कम कर देते हैं, मन में साहस और उम्मीद जगाते हैं, संबंधों को हम मजबूत बनाते हैं तो ये एक आश्वासन है।
3: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं हूं ना, आश्वासन के 3 शब्द हमारे जख्मों पर मरहम का काम करते हैं, हमारी परेशानियों को आधा कर देते हैं, किसी भी लड़ाई के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं।
2: बिल्कुल, और देखा आपने चंचल की जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे शिक्षक, वो अपने छात्रों को यानी हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों, पर आपको पढ़ना है और आपको पास होना है। और डॉक्टर भी जो है पेशेंट को, मरीज को एक आश्वासन देता है उसके परिवार को कि भाई ये ठीक हो जाएगा, बस हमारे कहे से आप दवाएं देते रहिए और इलाज करते रहिए। और हमारे माता पिता हमारे लिए हर वक्त हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं और वो हमें आश्वासन देते हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
3: ये जो आपने 3 उदाहरण अभी हमें दिए, एक शिक्षक का, एक चिकित्सक का और एक माता पिता का, सही बात है, ये आश्वासन अगर मैं ना दें तो लगता है कि बहुत कुछ अधूरापन सा या लगे हम हार गए हैं। अगर हमारा कोई प्रियजन अस्पताल में है और डॉक्टर हमें आश्वासन ही ना दे उनके सही होने का, तो वहीं हम चिंता में घुलते रहेंगे कि इनके स्वास्थ्य का क्या होगा
2: और जिंदगी बहुत अजीब सी हो जाती है अगर हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ दें तो सोचो क्या हो एक बच्चे की जिंदगी। लेकिन वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, जिंदगी के आखिरी पल तक वो अपने बच्चे का साथ देते हैं।
3: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आश्वासन भरोसा तसल्ली या पक्का विश्वास दिलाना है, किसी व्यक्ति को उसकी चिंता या शंका से मुक्त करने के लिए आश्वस्त करना कि सब ठीक हो जाएगा या तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा, विकट परिस्थितियों में अगर कोई ये सब कुछ कहता है तुम निश्चिंत रहो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा आश्वासन होता है उस पल के लिए।
2: बिल्कुल आपने सही कहा, हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या नौकरी करते हैं, हमारे साथी लोग हमें आश्वासन दे देते हैं भाई आपका ये काम मैं कर दूंगी तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो एक छोटा सा आश्वासन डूबती नैया को किनारा सा लगता है। क्यों दुखी हो, मैं हूं ना, ये शब्द दुखती रख को आराम देते हैं। आश्वासन अगर देकर निभाया जाए तो कुछ बात और है, नहीं तो ऐसे कहकर मुकर जाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं।
3: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं एक अन्य संदेश में कि आश्वासन विश्वास रूपी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके सेवन से सामने वाले को भरोसा बैठ जाता है और तसल्ली होती है कि उसके द्वारा होने वाला कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। जब परिस्थिति उनके पक्ष में होती है तब एक मजबूत व्यक्ति का आत्मविश्वास यानी मनोबल इससे मजबूत हो जाता है।
2: वही एक श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन इंसानियत की वो भाषा है जो बिना किसी लागत के किसी का जीवन बदल सकती है। हमें दूसरों को ढांढस बंधाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द सिर्फ होठों से नहीं निकले बल्कि वे सीधे हमारे दिल से आए और हमारे कर्म में बदल जाएं। ऐसे बहुत से कम लोग हैं चंचल
3: जी,
2: है ना, कथनी और करनी में फर्क हो जाता है।
3: लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो उसका साथ आप कभी ना छोड़ें। आगे एक संदेश में हमारे श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन शब्द की सार्थकता उसकी प्रामाणिकता में है। यदि इसके पीछे सच्ची सहानुभूति और प्रयास करने की नियत है तो ये संजीवनी की तरह काम करता है, लेकिन यदि ये केवल एक जिम्मेदारियों से बचने का जरिया मात्र बनकर रह जाए तो मानसिक चोट भी पहुंचाता है। यानी आश्वासन देने से पहले अपनी क्षमता और नियत को टटोलना बेहद ही जरूरी है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। और वही एक श्रोता लिखती हैं कि आत्ममंथन आत्मनिरीक्षण करते हुए ईश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए और साथ ही जो है ये भी देखना चाहिए कि हमने किसे आश्वासन दिया है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, ये जो कहावत है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
3: चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो रुकिए तो कहा है लता मंगेशकर जी ने, लेकिन हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि अब बात आ गई व्यंजन पर। चंचल
1: जी
0: क्या बनाने वाली हो?
1: देख, बहुत सारी रेसिपीज आई हैं।
0: देखिए बरसात के दिनों में एक रेसिपी हमें इतनी खास अच्छी मिली है कि बिहार झारखंड में अनरसे के साथ साथ ये व्यंजन खूब बनाया जाता है। ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, खिरौरी दुधौरी, क्या नाम है, खिरौरी दुधौरी। इस नाम के अनुसार ही चावल को दूध चीनी के साथ पका लेते हैं। चावल इतना पकाना है कि वो आपके हाथ से दब जाए और दूध भी सूख जाए, ठंडा हो जाए, और उसे किसी बर्तन की सहायता से खूब मसल के डो के रूप में कर लीजिए। हाथ में थोड़ा घी लगाने के बाद गुलाब जामुन जैसा शेप बना लीजिए और तेज आंच में घी या तेल में इसे सुनहरा तल लीजिए। अगर आपको इसे सूखा खाना है तो इसे आप डार्क ब्राउन तल लें, और अगर चाशनी में डालना है तो इसे हल्का गुलाबी सेक लें। गुलाब जामुन की तरह हल्के चाशनी में खिरौरी को कुछ देर डूबा रख दे, ये गुलाब जामुन की तरह ही स्वादिष्ट लगेगा और सूखा वाला भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से कुरकुरे और बेहद सॉफ्ट। ध्यान रहे इसे बहुत नहीं मसलना है, इसे हाथों से मसलें, उसमें चावल के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने चाहिए। सूखा वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें तो चाशनी वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा कम कर दें। आंच धीमा पर तलने में तेल पियेंगे और तेल में बिखर भी जाएंगे, इसका ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल। और एक बड़ी अच्छी रेसिपी हमारे पास आई है, और इसमें हमारे श्रोता ने बताया है कि कच्चे चावल से झटपट और स्वादिष्ट नाश्ता बनाने के लिए 1 कप चावल को धोकर 1 घंटा भिगोएं। पानी को निथार कर चावल, 2 चम्मच दही, स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इसे मिक्सी में पीस लें। इसमें आधा कप सूजी और कटी हुई सब्जियां, जिसमें प्याज, गाजर, अन्य सब्जियां भी आप डाल सकते हैं। तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर बैटर को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें। कच्चे चावल और आलू का चटपटा नाश्ता तैयार करने के लिए ये सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। और अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।
0: बिल्कुल।

0: जी, और अब तो ये आश्वासन हम भी अपने श्रोताओं को दे रहे हैं कि उनके लिए हम बहुत कुछ हैं और श्रोता हमारे लिए बहुत कुछ हैं।
1: बहुत बड़ा सहारा है हमारे प्रोग्राम को लोकप्रिय बनाने के लिए।
0: बिल्कुल। लेकिन अब वक्त जो है हमें इजाजत नहीं दे रहा कि इससे कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए और बातचीत की जाए, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विवेक भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विवेक भारती के स्टूडियो में बहुत

0: मिठास है जिसमें
1: जी,
0: तो इसकी भाषा बड़ी मृदु होती है, बड़ी कोमल होती है, ये हृदय स्पर्शी होता है, हृदय पक्ष को लेके चलता है, व्यंग मस्तिष्क पक्ष को लेके चलता है। तो ये दोनों विधाएं परस्पर विरोधी हैं, और मुझे भी लगता है कि अपने साहित्यिक यात्रा में हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, मैं किसी ऐसे साहित्यकार को नहीं जानता जिसने व्यंग और ललित निबंध दोनों एक साथ लिखा हो।
1: जी बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये खुद नहीं जान पाता हूँ कि मैं व्यंग से ललित निबंध में कब ट्रांसफर कर जाता हूँ, ये कायांतरण कब होता है। इस पर मैंने सोचा कुछ वस्तुएं मन को पीड़ा पहुंचाती हैं, जो विसंगतियां होती हैं उस पर व्यंग बनता है, और कुछ चीजें दिल को छू जाती हैं, बड़ा विस्तार मांगती हैं, बड़ी मिठास होती है
1: जी।
0: हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक हूँ, मुझे अपना बचपन और गांव बहुत याद आता है, वहां की मिट्टी मेरे साथ अभी भी चली आ रही है
1: जी।
0: तो परंपराएं जो पहले हुआ करती थी, मैं परंपराओं की बात कर रहा हूँ, रूढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ
1: जी, बिल्कुल
0: जो अच्छी परंपराएं थी उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो ललित निबंध में बड़ी मिठास होती है, जो पक्ष हृदय स्पर्शी लगता है मुझे लगता है मैं उस पर ललित निबंध लिखता हूं, और वहां पर मेरी भाषा, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर संस्कृत का, अंग्रेजी का और हिंदी का प्रभाव तो है ही, मुझे लगता है कि वहां मुझे संस्कृत का प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंग नहीं लिखे गए हैं, उसमें सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा ही लिखा गया है। इसे मैं एक तो संस्कृत साहित्य की देन मानता हूँ, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा हृदय पक्ष प्रबल है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं व्यंग लिखता हूँ, लेकिन हृदय पक्ष मेरा प्रबल है, और उस हृदय पक्ष के वश में जब होता हूँ मैं, तो मैं ललित निबंध लिखता हूँ। और मैंने ललित निबंध लिखना बड़े देर से शुरू किया, बहुत देर से, उसकी बड़ी रोचक कहानी है
1: जी, वो जानना चाहेंगे हम कहानी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्यंग्य का तीखापन ललित निबंध की मिठास को
0: जी
1: कैसे प्रभावित कर लेता है।
0: जी जी, ये जो है मेरे दो ललित निबंध संग्रह आ चुके हैं, एक तो है कुल्हड़ की चाय पहला, जो कि NBT से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से छपा है
1: जी,
0: और दूसरा है नयन अरुबानी, वो सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। तो मेरे पाठक, मेरे कुछ आलोचक और साहित्यकार मित्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपके ललित निबंधों में व्यंग मिल जाता है, ललित निबंध में व्यंग की आवाज आई है। यहाँ तक कि NBT की जो मेरी कुल्हड़ की चाय आई है, उसके संपादक ने भी इस बात को कहा था, शायद ही आपके किसी ललित निबंध में व्यंग मिलेंगे
1: जी।
0: लेकिन जो व्यंग मेरा मूल स्वभाव है, वह थोड़ा सा रूप बदल करके ललित निबंध में आ जाता है, और लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्या समझता हूं, मैं क्या कहूंगा, कि वह उसमें एक स्वाद में वृद्धि कर देता है, और वो उसमें एक तरह से व्यंग का तड़का, जैसा उसको कहते हैं, व्यंग का तड़का आपने दिया है, हालांकि मैं जानबूझ के नहीं देता हूं। मेरा मानना है कि जो लेखन अनायास होता है, बिना किसी परिश्रम के होता है, वही लेखन सफल होता है। अगर आप प्रयास करके लिखते हैं तो दुरूप हो जाता है, तो अपने आप वह व्यंग उसमें आ जाता है, और जहां भी संगतियां दिखती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो होती है वो बड़े मीठे व्यंग की होती है, तो ये आवाजाही दोनों में चलती रहती है, और कहीं कहीं मेरे व्यंग में भी मेरा ललित निबंध एक दो लाइन आ जाता है, वो आवाजाही हो जाती है
1: जी। तो व्यंग्य का तीखापन आ ही जाता है आपके ललित निबंधों में,
0: आ जाता
1: तो
0: है।
1: ललित निबंध की कोई निश्चित सीमा या ढांचा होता है क्या?
0: एक तो हमारे यहाँ ललित निबंध लिखने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी, बाद में कुबेरनाथ राय जी, विवेकी राय, श्याम सुंदर दुबे, और भी कई लोग लिख रहे हैं व्यंग, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे व्यंग में हम भीष पितामह परसाई जी को मानते हैं, उसी तरह से अगर ललित निबंध की बात करें, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ हूं, कुछ नहीं है, उतना अध्ययन उतना नहीं है मेरा, इनके निबंधों में अध्ययन बहुत ज्यादा होता था, लेकिन लोक से जुड़ा हो रहा है। जैसे आप विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको आप पढ़ें तो शुरू करने के बाद बिना समाप्त किए आप नहीं रह सकते
1: जी, जी।
0: हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज है, वो एक छोटे से पौधे को लेकर के न जाने कितने लोगों की यात्रा करवा देता है।
1: हाँ।
0: ये लोग मुझे लिखते रहे हैं, तो सीमा इनकी भी कोई नहीं रही है। एक इसका अगर आकार की बात करें तो ये लगभग 3,000-3,500 शब्दों का लिखते हैं, या थोड़ा उसे बड़ा भी हो सकता है। इसका जहां तक मैंने अध्ययन किया, लोक से जुड़ाव होना चाहिए, इसमें हृदय पक्ष भारी होता है, इसमें आप वैज्ञानिक तर्क नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क कड़वा होता है, वो साहित्य में नहीं, साहित्यिक सत्य

0: और होते हैं, वैज्ञानिक सत्य और होते
1: हाँ
0: हैं। तो ललित निबंध की सीमा कोई नहीं है, उसकी सीमा इतनी है कि वह लोक को, परंपरा को, आपके अतीत को, अच्छी परंपराओं को जोड़ करके कुछ ज्ञान दे सके और आपको सहज प्रवाह में ले चले, आपके हृदय को जोड़ता चले, तो वही उसकी सीमा है।
1: उराड़ी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी जरूर, उमराव जान फिल्म का एक गाना है, गजल है, गजल मुझे बहुत पसंद है, आशा भोसले की, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: जी जी जी,
1: आइए आपकी पसंद की ये गजल सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, यहाँ पर हम बात उस घुमक्कड़ी की भी कर लेते हैं
1: जी।
0: क्या घुमक्कड़ी का अनुभव निबंध में कल्पनाशीलता को बढ़ाता है?
1: जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो मानता हूँ कि घुमक्कड़ी का असर साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संगीत और किसी तरह की कला हो, और उसको छोड़िए व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत रचनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आपने भ्रमण किया है, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा को यात्रा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो चाहे आप ललित निबंध लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप व्यंग्य लिखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत नजर आता है। आप किस यात्रा में कहाँ कौन सा बिंदु पकड़ लेंगे और वह बिंदु किस रचना के रूप में पल्वित हो जाएगा, यह आप नहीं जानते हैं। बस आपके अंदर वो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, वो चिंतनशीलता होनी चाहिए कि उसको आप एक उचित आकार दे पाएं, उसको उस संबंधित भाषा से जोड़ करके जनता से जोड़ पाएं, पाठक से जोड़ पाएं। तो यायावरी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरा एक ललित निबंध है कालिदास की उज्जैनी। मैं उज्जैन की यात्रा पर गया था। उज्जैन की कई बार यात्राएं मैं कर चुका हूं। तो उज्जैन की यात्रा में मैं एक बार वहां के एक मंदिर के दर्शन के लिए एक जंगल में पहुंच गया। तो जब वहां मैं पहुंचा तो वहां से देखा मैं कि उस जंगल में मुझे तुरंत कालिदास याद आ गए। कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत। कालिदास मेरे बड़े प्रिय कवि रहे। कालिदास का मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं इसको अनपैरेलल मानता हूं, इसके बराबर कोई नहीं। तो कालिदास उसमें मेघ को उज्जैनी के रास्ते भेजते हैं यक्षिणी के पास। तो जिस प्रकार के वनों का वर्णन वो करते हैं, मुझे उस जगह पर दिखने लगा, और उसी को लेकर के मैंने अपना ललित निबंध लिखा कालिदास की उज्जैनी। वो मेरे ललित निबंध संग्रह में है। तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय उस घुमक्कड़ी को ही देता हूँ। ना मैं वहां जाता ना वो मेरा ललित निबंध मिलता
0: जी,
1: और
0: जी।
1: मेरे पाठकों ने, मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहां से यात्रा और कहां से पूरा कालिदास को लेकर चल पड़े। वो पूरा उसमें कालिदास आ जाते हैं, कालिदास की अक्षरी आ जाती है, कालिदास का उज्जैनी का वर्णन आ जाता है, उस वन में क्या क्या होता है, अभिसारिकाएं जाती हैं, कैसे जाती हैं, बादल से क्या कहते हैं। कालिदास विलक्षण व्यक्ति, उनकी कल्पनाशीलता का कोई जवाब नहीं है, और वो मुझे वहीं जाकर के मिला।
0: तो आपकी घुमक्कड़ी और आपकी जो अत्यधिक पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है, गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति, एक लेखक को बहुत समृद्धशाली बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
1: जी, जी।
0: आपका ललित निबंध संग्रह जो नयन अरुबानी है उनकी, उसकी समीक्षा में पढ़ रही थी
1: जी, जी।
0: और उसमें समीक्षक लिख रहे हैं कि ये संग्रह समकालीन हिंदी गद्य संवेदना और विवेक का दुर्लभ संतुलन है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
1: जी, ये तो आलोचक या समीक्षक की सदा सहायता है कि उन्होंने मेरे निबंध संग्रह के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। नयन और बाणी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक अर्धाली है। गिरा नयन नयन बिन उबानी, ये सीता स्वयंवर से पहले जनक वाटिका का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण वाटिका में घूम रहे हैं, सीता की सखियां देखती हैं और वो सीता से आकर के कहती हैं कि श्याम गौर किमि कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिन उबानी, कि उनकी सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं, क्योंकि आंखों के पास जुबान नहीं है, गिरा नहीं है, और जबान के पास, जीभ के पास नयन नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अचानक मुझे एक दिन लगा कि नहीं, नयनों की भाषा बड़ी तगड़ी होती है। मैं तुलसीदास का बड़ा सम्मान करता हूँ। वो भले करें कि गिरा अनयन नयन बिन उबानी, उनके हिसाब से गिरा जो है और नयन एक दूसरे से कटे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता कि नयन बिन उबानी नहीं है, नयन और उबानी है, और नयनों की भाषा के लिए शाब्दिक भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सीमा से परे है। तो उस प्रसंग को लेकर के मैंने उसको लिखा, उसमें और भी चीज़ें आई हुई हैं। अच्छा, मैं बताता लूँ कि ललित निबंध में श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। हम कितने भी आपाधापी कुछ कर लें, लेकिन श्रृंगार, या उसको आप सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्रेम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में प्रेम है उसको किसी भी तरह की कमी दुखी नहीं कर सकती है
0: जी।
1: तो नयन प्रेम के प्रतीक हैं, ललित निबंध में प्रेम आना चाहिए, उस चीज को लेकर मैंने लिखा था गिरा अनयन नयन बिन उबानी। और उसमें इस तरह के बहुत सारे निबंध हैं जो हमारी परंपरा को, हमारे संवेदना को, हमारी दृष्टि को, हमारी जड़ों को जोड़ते हैं, सींचते हैं। तो उससे प्रभावित होकर के समीक्षक ने ऐसा लिखा होगा।
0: प्रभाव होना एक अलग है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो समीक्षक को अपील करती है, तब क्या करें कि इतनी बड़ी बात कही जाती है। तो राडी साहब, अपनी पसंद का एक गीत और बताइए।
1: जी, मेरे पसंदीदा गायकों में किशोर कुमार जी भी रहे हैं। बड़ी मस्त आवाज उनकी है, बड़ा मस्त गाते हैं। उनका एक गाना है अजयराना फिल्म से, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
0: जी
1: यह गाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे सुनना चाहूंगा।
0: आइए सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, ये बताइए कि तेज रफ्तार और सोशल मीडिया के दौर में ललित निबंध लेखन के सामने क्या चुनौतियां आ गई होंगी, या क्या चुनौतियां रही होंगी या हैं आज भी?
1: ललित निबंध के सामने मुझे एक चीज, एक चुनौती लग रही है कि इसको कई लेखक और कई आलोचक भी मानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, विलुप्त विधा हो गई है, इसके लिखने वाले कम हैं
0: जी,
1: बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरा खुद ही कम से कम आप मान के चलिए कि 20 साल के लेखन के बाद मैं ललित निबंध में आया
0: जी।
1: तो ललित निबंध में लेखन कम हो रहा है, एक तो एक दौर ऐसा चल रहा है, ये संक्रमण का दौर है ये, जिसमें लोग प्रसिद्धि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, और वो प्रसिद्धि तरह तरह के राजनीतिक विमर्श, गुटबाजी और इन सब में है। तो साहित्य की और विधाओं में चीजें चल रही हैं, ललित निबंध में किसी तरह की गुटबाजी का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि यह हृदय पक्ष है, इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और जो धैर्यवान व्यक्ति होगा, बहुत पढ़ेगा, वही ललित निबंध लिख पाएगा। जो कम पढ़ता है, कम सोचता है, जिसके दिमाग में प्रेम पक्ष नहीं घुस पाता है, वो शायद ललित निबंध नहीं लिख पाएगा। तो ललित निबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके लेखक कम रह गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि पाठक इसका मुरीद आज भी है, पढ़ते हैं लोग।
0: अच्छा
1: जी, पढ़ते हैं लोग, मैं अपने बारे में नहीं कहता। मेरी कुल्हड़ की चाय
0: जी
1: का एक संस्करण खत्म हो गया और दूसरा संस्करण आ गया है, जबकि व्यंग दूसरे संस्करण कम आए हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ा तो जा रहा है ललित निबंध।
0: तो कुल्हड़ की चाय किस तरह से लिखी गई, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे।
1: जी, ये आप देखेंगे कि बहुत ही सामान्य विषय लिया गया है
0: जी,
1: शायद ऐसे विषयों पर, ऐसे शीर्षकों पर ललित निबंध नहीं लिखे गए हैं। सब इससे पहले जो मेरा पहला ललित निबंध था, क्या करते हो कालिदास, पहला निबंध मेरा वो था। इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी
0: जी
1: है। एक दिन मैं, एक सब्जी होती कुंदरू,
0: कुंदरू की,
1: उसे मैं लाया बाजार से और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं, और जब बिंब कहते हैं तो कालिदास मेरे प्रिय है। मैंने बताया आपको, कालिदास ने अपने मेघदूतम में एक छंद लिखा है, यक्षिणी का वर्णन करते हैं, वो बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और

0: और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती है पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं। तो वो उसका लक्षण बताते हैं उसके श्लोक की, वो छंद की पहली लाइन है,
1: जी
0: तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व बिंबा धरोष्ठी
1: जी
0: मध्य क्षामा चकित हरड़ी प्रेक्षणा निम्न नाभि। श्लोक लंबा है इसमें, तो पहले आता है पक्व बिंबा धरोष्ठी, पके हुए बिंब यानी कुंदरू के फल के समान।
1: जी
0: फिर वो सब्जी वहीं रह गई बनी हुई और मुझे वो पूरा कालिदास का मेघदूत दिखने लगा, उनकी पूरी यात्रा दिखने लगी। और मुझे हैरानी हुई कि जो लोग कालिदास के छंद को पढ़े होंगे वो पहले कुंदरू को जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जान जाएंगे। तो मेरे मन में यही वहां पर एक विचार का उदा, और मैंने कहा क्या करते हो कालिदास। अंतिम लाइन उसकी है कि तुम्हें प्रसिद्ध तो करना था यक्षिणी को और तुमने प्रसिद्ध कर दिया कुंदरू को।
1: जी
0: तो ये जब मैंने लिखा और मैंने किसी को दिया, बड़े साहित्यकार को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कोरोना काल में मैं कहीं कॉलोनी के बाहर जा रहा था, उस समय आना जाना बंद था। मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय पीता हूँ। तो कॉलोनी के बाहर एक कुम्हार की लड़की कुछ अपने मिट्टी के बर्तन बेचती थी, तो मेरा आना जाना बंद हो गया था, हर जगह सबका बंद हो गया था। तो वहां से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, तीन कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय के पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग्य मिलेगा, कई जगह मिलेगा कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग्य लिखा, उस व्यंग आया, लिखा नहीं व्यंग आया कि अब देसी और मिट्टी से जुड़ी चीजें खत्म हो रही हैं, उसको भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की मिट्टी का कुल्हड़ मिल जा रहा है, 10-20 साल बाद आयातित होगा, लोग पीकर फेंकेंगे, और सभ्यता के एक युग के बाद जब कभी जमीन की खुदाई होगी तो जब ये मृत भांडे निकलेंगे तो उस समय के लोग कहेंगे कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, कितने असभ्य थे। तो ये व्यंग जो है कितना मीठा व्यंग इसमें आया। यहाँ से फिर ये जो व्यंग मेरे अच्छे निकले, ललित मत अच्छे निकले, और फिर जो है वो देश की बड़ी पत्रिकाओं ने उसको प्रकाशित करना शुरू किया, अक्षरा, नवनीत, और वहां से फिर मैं ललित मत की लाइन में आ गया।
1: जी।
0: और आज मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे व्यंग ज्यादा प्रिय है या ललित मत।
1: जी तो आपको अपनी सभी विधाएं पसंद हैं, क्योंकि एक लेखक जिस जिस विधा में हस्तक्षेप रखता है, और फिर अक्षरा और नवनीत जैसी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अगर इस तरह के निबंध छपते हैं तो उसका पाठक वर्ग भी कितना विस्तृत होगा,
0: ये
1: हम समझ सकते हैं। जी तो एक गीत हो जाए पहले।
0: जी हाँ बिल्कुल, मुझे एक गीत बहुत पसंद है मोहम्मद रफी साहब का, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे पगला
1: कभी भी। क्या बात
0: जी,
1: है फिल्म पगला कहीं का
0: जी,
1: ये गीत हम सुनते हैं और उसके बाद हम आगे की आपकी यात्रा पर बात
0: जी,
1: कर
0: जी,
1: पाएंगे।
0: जी जी जी हाँ, मैं भी सुनना पसंद करूंगा।

0: सबसे बड़ी बात कि एक लेखक जब लिखता है तो उसकी विधाओं को भी भुलाना आसान नहीं होता है, है ना हरिशंकर जी? आप भी जिस तरह से लेखन कर रहे हैं उसे जिसने भी पढ़ लिया है तो भूलना असंभव ही है। अभी बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर चुके हैं, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदर्श मिश्र
1: जी
0: को लेकर
1: जी
0: आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो आपके और रामदर्श मिश्र जी के बीच जो साहित्यिक संवाद और वैचारिक आत्मीयता बढ़ी, ये कैसे शुरू हुई पहले हम ये जान लें, उसके बाद आपने उनके साथ क्या क्या कार्य किए हैं वो उसका जिक्र हम करेंगे।
1: जी जी जी मुंदागिरी जी, इसे मैं अपने जीवन का बड़ा सुखद पक्ष मानता हूँ।
0: जी एक महान पल होंगे मुझे तो लगता है आपके जीवन के।
1: जी जी बहुत बहुत सुखद पक्ष रहा है मेरा कि मैं आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में रहने का मुझे मौका मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उनका स्नेह मुझे बहुत मिला है। जैसा कि आपने पूछा तो मेरे अंदर का छात्र विद्यार्थी भी जिंदा है, मैं जब तक पढ़ ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलता है। मेरी सबसे प्रिय हॉबी पढ़ना है तो पढ़ता रहता। रामदर्श मिश्र जी को मैंने बहुत पढ़ा था लेकिन व्यंगकार कहिए आप जो भी कहिए, होने के बावजूद मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने में या मिलजुल करके कुछ काम निकलवाने में बड़ा संकोच होता है, कभी ऐसा नहीं कर पाता मैं। तो सन 2002 में हमने एक पत्रिका निकालना शुरू किया था, समकालीन अभिव्यक्ति, त्रैमासिक पत्रिका। आज इस पत्रिका की थोड़ी पहचान बनी हुई है, निकल रही लगातार 2002 से। तो उस पत्रिका के लिए मैंने रामदर्श मिश्र जी को एक पत्र लिखा। मुझसे कई लोगों ने कहा था कि मिश्र जी से मिलिए आप, संकोच बस मैं नहीं गया। तो बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े साहित्यकार, हम छोटे से तब नए तो संकोच होता था। तो उनको मैंने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के मेरे ख्याल से साधारण पत्रों का जमाना था वो, 10 दिन के अंदर मुझे उनकी रचना मिल गई। मैं बड़ा हैरान हुआ, एक अच्छी नई कहानी लिखी हुई
0: जी।
1: तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा और धन्यवाद दिया। और हमारे पास उनका कोई आज की तरह से इंटरनेट का जमाना था नहीं, नया फोटो और वो नहीं था, वो मांगा मैंने। तो उन्होंने लिखा कि राढ़ी जी वैसे परिचय की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन आप कह रहे तो दे रहा हूँ मैं। तो बड़े प्रभावित हुए कि एक नई सी पत्रिका जिसका कोई नाम इतना नहीं है उसके लिए इतना बड़ा साहित्यकार हमें ये तुरंत कहानी दे दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार। फिर कुछ दिनों बाद मैं और मेरी पत्रिका के साथ में जो संपादक जी हैं उपेंद्र कुमार मिश्र जी, हमने प्रोग्राम बनाया कि चला जाओ, उनसे बात की तो बोले आप आ जाइए। और जब उनके यहाँ गए, मिश्र जी समय के बड़े पाबंद थे और समय का पाबंद मैं भी हूँ, वहाँ जब पहुँचे तो उस समय उनकी उम्र करीब करीब 87-88 साल थी।
0: अच्छा,
1: वो अभी 101 वर्ष पूरा करके
0: जी
1: गोलोकवासी हुए अभी 31 अक्टूबर को
0: जी।
1: जब हम गए तो अपने दरवाजे के गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे हमारा
0: जी।
1: कहा दुनिया में कितने महान लोग होते हैं। और फिर ले गए, पहली ही मुलाकात में उन्होंने हमको इतना सहज बना दिया कि उनसे जुड़ते गए, उनकी बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा, उन पर बहुत सारी मैंने समीक्षाएं लिखी और उन समीक्षाओं को बड़ा पसंद करते थे। 2-3 साल बाद में उनसे एक साक्षात्कार लिया अपनी पत्रिका के लिए और उस साक्षात्कार के बारे में उनका कहना था, उनका लिखित मेरे पास है, कि मेरे जीवन के साक्षात्कारों में ये सर्वाधिक प्रिय साक्षात्कार है।
0: क्या बात है।
1: और उसके बाद उन पर तमाम विधाएं प्रकाशित हो चुकी थी, तमाम लोगों ने साक्षात्कार लिए थे। तो एक बार ऐसे बातचीत में, अब उनके पास मैं जब मन होता था फोन करता था, चला जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक विचार है इसका, तो मैंने कहा मैं इसको करूँगा, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो संवाद यात्रा नाम से उनके साक्षात्कारों का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका संपादन मैंने किया
0: जी।
1: उसके बाद सन 2020 में कोरोना काल में हमने अपनी पत्रिका का उनके ऊपर एक विशेषांक निकाला। और आपको मैं बता दूं मंदाकिनी जी कि हमारी पत्रिका ने पिछले लगभग 24 साल में व्यक्ति केंद्रित केवल एक विशेषांक निकाला है, रामदर्श मिश्र जी पर।
0: क्या बात है।
1: दूसरे पर हमने विशेषांक निकाला ही नहीं, और वो ऐसे महान व्यक्ति की जीवन में कभी उन्होंने एक बार हमसे संकेत भी नहीं किया कि हमारे ऊपर विशेषांक निकालिए। हमने उसको निकाला, कोरोना काल की दिक्कतें थी, उनकी उस समय उम्र हो गई थी और ज़्यादा, करीब करीब मान लीजिए 95-96 के थे, तब तक उनको साहित्य अकादमी और कई सम्मान मिल चुके थे। तो सारी तैयारी हमने फ़ोन पर की क्योंकि उनके यहाँ जा नहीं सकते थे और उनकी अवस्था का और ध्यान देना था
0: जी।
1: तो विशेषांक निकला 120 पेज का, तमाम रचनाकारों से मैंने बड़े सख्ती से कह करके मांगा कि आपको नया लेख देना है तो दीजिए, हम पुराने लेख नहीं छापेंगे। और उस अंक के वो बड़े प्रशंसक रहे। कुल मिलाकर के मैंने जितना सहज व्यक्ति, जितना महान व्यक्ति रामदर्श मिश्र जी को देखा, उतना मैंने किसी और को नहीं देखा। उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनकी तो एक गजल है जो बहुत ही वायरल है आजकल, शायद आपने भी सुना होगा, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे।
0: जी जी जी।
1: तो वो गजल नहीं है, एक जीवन दर्शन है।
0: जी बिल्कुल।
1: आप कहें तो उसको मैं दो लाइनें उसको
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
1: वो उनकी जो गजल है, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, ये उनका शेर सबसे मशहूर है, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे, पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, गिरा तो बहुत मैं अकेले में रोजा, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। और आखिर एक लाइन देखिए, किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे।
0: कितना बड़ा जीवन दर्शन उन्होंने अपना बता दिया है
1: जी,
0: कि लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ।
1: जी, 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले, नाटक छोड़ करके हर विधा में लिखने वाले। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था, उसको अपना बना लेते थे, कभी आभास होने ही नहीं दिया कि वो इतने बड़े हैं। और तब जाकर समझ में आया कि बड़प्पन इसको कहते हैं।
0: जी,
1: साहित्य ये होता है, साहित्य लोग लिखते हैं और रामदर्श मिश्र जी ने साहित्य जिया है।
0: बिल्कुल। तो रेड्डी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी गाने सुनने के काफी मुरीद हैं ना, शौक रखते हैं।
1: जी, जी।
0: कोई गीत बताएं, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: बैजू बावरा फिल्म का एक गीत है, दूर कोई गाए धुन सुनाए तेरे।

0: प्रोफेसर राम दर्श मिश्र का लेखन समझ लेना या देख मात्र भर लेना, 70 साल उनका साहित्यिक सफर रहा।
1: ज्यादा ही रहा।
0: और उनको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का भी एक सशक्त संवाहक माना जाता रहा है और प्रेमचंद परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते रहे हैं।
1: असल में मिश्र जी के साथ एक प्रश्न उठाया जाता है और हमने भी अपनी पत्रिका में जब विशेषांक निकाला था उन पर, तो प्रश्न हमने उठाया था कि आप एक परिचर्चा करवाई थी हमने कि आप मिश्र जी को बड़ा गद्यकार मानते हैं या कवि मानते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हालांकि मिश्र जी को जितने भी सम्मान मिले हैं बहुत ज्यादा उम्र बीत जाने के बाद मिले, लेकिन सब कविताओं पर मिले, चाहे वो उनको साहित्य अकादमी मिला आग की हंसी पर, आम के पत्ते पर उनको व्यास सम्मान मिला, मैं तो यहाँ हूँ ऐसे कई पर उनको अभी सरस्वती सम्मान मिला, पद्मश्री मिला जीवन के अंतिम वर्ष में
0: जी।
1: लेकिन उनका गद्य बहुत ही रोचक होता है और मंदाकिनी जी मेरा मानना है कि कवि का गद्य बहुत अच्छा होता है, इसीलिए शायद संस्कृत में कहा गया है कि गद्य कवि नाम निक्षम वदंती। संस्कृत में हर लेखक को कवि माना जाता है और गद्य ही कवि की कसौटी होता है। तो मिश्र जी की कहानियां, चाहे वह विषय की बात हो, विमर्श की बात हो, चाहे भाषा की बात हो, एकदम सहज होकर के चलती हैं। उनमें गांव का पूरा स्पर्श है। वो शहर में रह गए लेकिन उनकी मिट्टी कभी छूटी नहीं। अच्छा, दूसरी बात उनकी कहानियों में यह है कि वो अपनी कहानियों में कभी नारेबाजी नहीं करते, लाउड नहीं होते हैं। उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो चाहे दलित विमर्श की हों, चाहे नारी विमर्श की हों, या समाज की किसी और समस्या की हों, ज़्यादातर गांव पर आधारित हैं, शहरों के भी हैं, और वो गांव का जो चित्र खींचते हैं वो प्रेमचंद ही खींचते रहे हैं
0: जी।
1: और उनका एक उपन्यास है पानी के प्राचीर, संजोग से इसको प्रकाशित होने में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि अपने जमाने की उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, ये लेखन नहीं है, ये चित्र है।
0: बिल्कुल,
1: ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि वो प्रेमचंद की परंपरा के हैं और प्रेमचंद की परंपरा उनमें जीवित रही
0: जी,
1: है।
0: बिल्कुल। प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी जैसे महान साहित्यकार से आपने जो इस संवाद यात्रा शुरू की, एक लंबा स्वर्णिम सफर उनका जो साहित्यिक जीवन का पूरा हुआ, आपने एक अंक निकाला
1: जी।
0: तो इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे, क्या आपकी जिंदगी में ये विचार क्यों आया होगा, संवाद यात्रा का अनुभव क्या रहा होगा?
1: रामदर्श मिश्र जी बहुत बड़े वट वृक्ष थे। उनका ना होना हमें बहुत खलता है, खैर यह प्रकृति का नियम है, उनकी स्मृति को सादर नमन है। मिश्र जी ऐसे व्यक्ति थे कि मैं ही नहीं कोई भी व्यक्ति उनके पास खींचा चला जाता था। और मिश्र जी में भी खासियत थी कि सम्मान तो सबका करते थे, लेकिन कभी अपना कोई काम निकालने के लिए किसी की, क्या कहें, हमारी व्यंकारिक भाषा में चमचागिरी कहते हैं, ये शब्द रामदर्श मिश्र जी के प्रसंग में कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है
0: जी।
1: कभी उन्होंने कोई कवि से इच्छा नहीं रखी, महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाली और साहित्य उनका उच्च स्तरीय, तो ये हमारे मन में ही पैदा हुआ कि मिश्र जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला जाए। और उसके बाद जब उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था तब उनकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ था, तो मेरा उद्देश्य ये था उसमें कि मिश्र जी के जीवन के

0: साहित्य के जो पहलू हैं वो पाठकों के सामने ईमानदारी से रखे जाएं,
1: जी
0: कुछ नई चीज दी जाए, उन पर समीक्षाएं, उन पर संस्मरण, यहाँ तक कि हमने उनके परिवार के लोगों से उन पर लेख लिखवाए। उनकी पत्नी सरस्वती जी वो दिवंगत हो गई सन 2023 में, उन्हें माता जी कहते, तो वाकई वो माता की ही अवतार थी। कितने लोगों का आना जाना उनके यहाँ था, कोई भी व्यक्ति बिना उनके यहाँ से जलपान किए खाना पीना खाए नहीं आता था। उन्होंने मिश्र जी पर संस्मरण लिखा,
1: अच्छा
0: उनकी पुत्र वधु ने लिखा, उनकी बेटी स्मिता जी हैं वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सामग्री उपलब्ध करवाई, ये चीज भी देखना जरूरी था। और जिन लोगों ने रामदर्श मिश्र पर नहीं लिखा था उनका दृष्टिकोण हमें देखना था, उनसे मैंने कह के लिखवाया। तो ये कुल मिलाकर के ये संवाद यात्रा और समकालीन व्यक्ति का अंक रामदर्श मिश्र जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर, कृतित्व पर, उनकी महानता पर और उनकी अघोषित महानता में, शब्द आपके पास प्रयोग कर रहा हूँ,
1: जी
0: छोटा छोटा लोग लिख करके बड़े महान अपने आप को मान लेते
1: जी
0: हैं
1: जी
0: और वो इतने महान होकर के अपने आप को कुछ नहीं समझते थे। इस बात से प्रभावित हुए हम, इस चीज को दिखाने के लिए हमने इन अंकों पर इतनी मेहनत की और वो निकला।
1: और अब एक आपकी पसंद का गीत हम सुन लेते
0: जी
1: हैं,
0: जी हाँ जी
1: उसके बाद
0: जी
1: आपकी अगली विधा पर हम बात करने वाले हैं।
0: जी मंदाकिनी, मुझे गजलें बहुत अच्छी लगती हैं
1: जी
0: और जगदीश सिंह की एक गजल है प्रेम गीत फिल्म से, होठों से छू लो तुम
1: मेरा
0: मेरे
1: गीत
0: गीत
1: अमर
0: अमर
1: कर
0: कर
1: दो,
0: दो, ये मुझे बहुत पसंद
1: बहुत
0: है
1: सुंदर।
0: जी, इसे सुनना चाहूंगा मैं।
1: आई सुन
0: जी।
1: जी।

0: दूं। रेड्डी साहब, आज के दौर में जब डिजिटल माध्यमों से संवाद इतना आसान हो गया है, तो प्रत्यक्ष रूप से यात्रा करके संवाद करने की जो प्रासंगिकता है वो आपको कैसी लगी, मतलब क्या महसूस हुआ आपको?
1: जी, ये बात आप ठीक से जान रही हैं। जो डिजिटल क्रिएशंस होते हैं वो आंखों को लुभाते हैं। कहा भी जाता है कि जो दृश्य चीज़ें होती हैं, विजुअल्स होते हैं, वो ज़्यादा असर डालते हैं। साहित्य में भी इसीलिए सबसे पहले नाटक की कल्पना की गई थी। लेकिन जो डिजिटल माध्यम

0: मुझे लगता है कि अस्थाई नहीं है, पुस्तकें अस्थाई हैं। कोई कितनी भी निराशावादी बात कर ले, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से पुरजोर समर्थन करता हूं और पक्षधर हूं कि पुस्तकों का युग कभी अंत नहीं होगा।
1: जी,
0: पुस्तकें थीं, पुस्तकें हैं और पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकें मनुष्य के ज्ञान की पहली कृति हैं, पहले प्रमाण हैं।
1: जी,
0: ये हमेशा रहेंगी। तो डिजिटल चीजें हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करके, संवाद करके उनको पुस्तक के रूप में, पुस्तकाकार रूप में रखते हैं, तो एक अस्थायी चीज है। पढ़ने की आदत समाज में फैलेगी, रहेगी, कम हो रही है माना जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन और आएगा कि जब ये पुस्तकें अपना महत्व आज की तुलना में ज्यादा साबित करेंगी। ये हमेशा रहेंगी, उनको अक्षुण रखना, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते।
1: जी बिल्कुल कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा धन है ये।
0: जी
1: बिल्कुल सही कहा। और आपने प्रोफेसर रामदर्श मिश्र जी की नारी प्रधान कहानियों पर भी एक अंक निकाला है और लाल हथेलियां किताब के नाम के माध्यम से, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की कहानियां इस अंक में आपने एकत्रित की हैं।
0: जी, असल में इस तरह के मिश्र जी के संग्रह और लगभग सभी साहित्यकारों के साथ आते हैं जिनका लेखन प्रचुर होता है, ये लेखन की या उम्र की उत्तरावस्था में आते हैं कि अब उनको कैटेगराइज किया जाए, श्रेणीबद्ध किया जाए। पहले तो कहानी संग्रह आते गए। मिश्र जी की कहानियां नारियों पर और दलितों पर, वैसे बहुत सारा उन्होंने विषय उनका बड़ा व्यापक रहा है
1: जी।
0: इन दो तरह के विषयों का हमारे समाज को आवश्यकता थी, खास करके आजादी के बाद यह माना जाने लगा था और सच था कि जब तक समाज में स्त्री और दलित शोषित आगे नहीं आएंगे, हम विकास नहीं कर सकते। और ऐसा समाज, ऐसी सभ्यता जिसमें स्त्री पीछे हो, समाज का एक वर्ग पीछे हो, उसे हम विकसित सभ्यता कह ही नहीं सकते, उस संस्कृति की प्रशंसा हम कर ही नहीं सकते। तो जितने भी लेखक थे, उनका यह दायित्व था कि स्त्री विमर्श की कहानियां लिखें, स्त्री को आगे ले आएं, उनके प्रति हो रहे अत्याचारों को दिखाएं। यह दौर चला, नई कहानी का दौर चला। मिश्र जी बिना किसी गुट से जुड़े हुए स्त्री विमर्श के लिए संघर्ष करते रहे, स्त्री के पक्ष में लड़ते रहे। उनकी कहानियों में जो एक भिन्नता पाई जाती है, खासकर के स्त्री विमर्श की कहानियों में, वो यह है कि उनकी स्त्रियां वाकई नायिकाएं हैं, ये योद्धा हैं, और वो इस तरह की योद्धा हैं जो सकारात्मक युद्ध लड़ती हैं, जो गाली गलौज ना करके अपना रास्ता खुद बनाती है। जैसे उनकी कहानी है जिसमें एक उसकी पात्र भवानी, उसका पति मर जाता है, वो बड़े सवर्ण समाज से आती है और उस समय सवर्ण समाज स्त्रियों को बाहर आने की अनुमति नहीं देता है, उसकी खेती बाड़ी सब देखना है, तो वो खुद आती है, अपना खेती करती है, अपना हल चलाती है और उसकी बड़ी निंदा होती है, लेकिन वो भवानी निंदा से पीछे नहीं हटती है, लेखक उसको जाके समर्थन देता है। इससे एक बड़ा संदेश जाता है। क्या संदेश जाता है कि जो नायिका, जो स्त्री पढ़ेगी इसको, वो भी उस जैसा संघर्ष करना चाहेगी। और दूसरी बात देखिए कि वह उस कहानी की नायिका से खेतों में काम करवाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उनकी नायिकाएं आप देखेंगी, उनकी जो पात्र हैं, वो खेती के काम से लेकर के और बड़े समाज के काम, मतलब जो आज की आधुनिक नौकरियां हैं, उसको भी अपने लेवल पे करती हैं, वो पुरुषों के मोहताज नहीं है। इस चीज़ को उन्होंने ऐसे परोक्ष रूप से दिखाया है कि स्त्री प्रेरणा लेती है और पुरुष कहीं ना कहीं उसको स्वीकृति देता है और इस तरह से वो सकारात्मक युद्ध चलता रहता है। आज जो स्त्री इतनी आगे है, उसमें साहित्यकारों का योगदान है और ऐसे साहित्यकारों का तो मैं बड़ा योगदान मानता हूँ।
1: जी बहुत सुंदर।
0: तो ऐसी तमाम कहानियां उनकी हैं, उन कहानियों को लेकर के उनका एक विचार था, कैसा क्या क्या किया जाए। मैंने खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया क्योंकि मैं भी स्त्री समर्थक हूँ।
1: जी,
0: मैं मानता हूं कि जब तक मातृशक्ति, मातृसत्ता हमारे बराबर नहीं होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी, प्रकृति तो ऐसे ऊपर बना के भेजा उसे, हमने उसे डोमिनेट कर दिया, तो उसको उसकी जगह चाहिए। तो मेरा भी इसमें इंक्लिनेशन था, क्योंकि आपको बताया कि मैंने भी ऐसी कहानियां लिखी हैं, तो इस प्रस्ताव पर बड़े प्रसन्न हुए और फिर उनके तमाम संग्रह मैंने पढ़े हुए थे, उसमें से चयन किया मैंने अच्छी कहानियों का और उसका मैंने संपादन किया और वो कहानियां आज लाल हथेलियों के नाम से वो
1: बहुत सुंदर संकलन है। इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और बस चलते चलाते आखिरी सवाल यही कि आगे क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: जी मंदाके जी, मेरा लिखना तो निरंतर चलता रहता है और सायास नहीं चलता है, मतलब जब मेरे मन में कोई भाव ज़्यादा प्रबल होता है तब मैं लिखता हूँ।
1: जी,
0: मुझे नहीं याद आता कि मैंने कभी जबरदस्ती बैठ के कुछ लिखा हो, किसी

0: संपादक ने कोई समीक्षा या कोई और मांग दिया उसकी बात अलग हो सकती है। लेखन निरंतर चल रहा है और मैंने जितना लिखा है मुझे लगता है उसका मैंने आधा भी प्रकाशित नहीं करवाया है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं रहता हूँ, मेरा काम आराम आराम से होता है, धैर्य से रहता हूँ मैं। और अभी तो मेरे पास कम से कम 4-5 व्यंग संग्रह आ जाएंगे जिनका मैटर मेरे पास पड़ा है, ललित निबंध है और गजलें हैं, गीत कविताएं भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, गजलों का भी संग्रह आने वाला है। लेखन मेरा निरंतर चल रहा है और इस समय मैं खास करके व्यंग और ललित निबंध ही लिख रहा हूँ। बाकी गीत गजल हैं, ऐसी चीजें हैं जब भावुकता कभी आई तो वो तो कम समय में बन जाते हैं। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य आ कहें मेरी मुख्य प्रवृत्ति समय व्यंग और ललित निबंध पर ही है, उसी का लेखन मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। मेरे कई मित्र भी कहते हैं कि जब से आप गद्य में आए हैं तब से आपका पद्य बहुत पीछे रह गया है। मैंने कहा मैं किसी को खींचूंगा नहीं, जो मेरे साथ चलना चाहे चले, जो छूट जाएगा पीछे उसे मैं छोड़ दूंगा। मुझे आगे आगे चलना है, आगे देखना है, जो मिलेगा, जो मिल गया वो मेरा हो गया, जो नहीं मिला वो कोई बात नहीं है, आएगा फिर उसे साथ कर लेंगे। तो योजना यही है कि पढ़ता रहूं, लिखता रहूं और जब जब समय आए प्रकाशित होता रहूं, क्योंकि जनता के सामने, पाठक के सामने ये चीजें आए तो सोचता ये हूं कि अगर कुछ सकारात्मक दे गया, क्योंकि अब तो मैं भी वरिष्ठ नागरिक हो गया हूँ तो कुछ दे गया तो शायद वही जीवन की सार्थकता होगी।
1: तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और अनवरत लिखते रहें। चलते चलाते एक गीत आपका पसंद का और सुनना चाहेंगे हम।
0: हाँ, पहले मैं आपको अपनी पसंद का एक और गीत आपसे कह दूं। मेरे प्रिय गायकों में मुकेश भी रहे हैं, बहुत सुनता रहा हूं मैं। उनका एक गीत है, ओहरे ताल मिले नदी के जल,
1: क्या बात है,
0: नदी मिले सागर से। ये अनोखी रात फिल्म का गीत है, तो कृपया इसको सुनाएं।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

हरिशंकर राडी जी, हम आपका विविध भारती परिवार की ओर से ढेरों ढेरों धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। आप दिल्ली से यहाँ मुंबई आए, हम लोगों से मिले।

0: और हमारे से एक सार्थक बातचीत आपने की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने पाठकों से, आम जनता से रूबरू होने का एक मौका मिला, अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ थे वरिष्ठ कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक, अनुवादक, संपादक हरिशंकर राढ़ी साहब। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

स्वागत है आप सभी युवा दोस्तों का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। और आज का अंक प्रस्तुत कर रही है आपकी रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होंगे और इस गला काट प्रतियोगिता के दौर में खुद को सुरक्षित रख रहे होंगे और तनाव से दूर रह रहे होंगे। दोस्तों, ये प्रतियोगिता जो है, या तो ये प्रेरणा है या फिर दबाव। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि प्रतियोगिता को प्रेरणा कैसे बनाना है और इसे दबाव से कैसे बचाना है। दोस्तों, प्रतियोगिता यानी कंपटीशन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये व्यक्ति को आगे बढ़ने, बेहतर प्रदर्शन करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। जब ये प्रतियोगिता अत्यधिक हो जाती है या जीतने का अनावश्यक दबाव बढ़ जाता है तो ये चिंता तनाव का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि प्रतियोगिता यानी कंपटीशन को प्रेरणा कैसे बनाना है या प्रतियोगिता प्रेरणा कैसे बनती है। दोस्तों, जब आप अपनी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है, आत्मविश्वास और मेहनत बढ़ाती है, नए कौशल सीखने का अवसर देती है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्साहित करती है।

को सीखने का अवसर माने। सकारात्मक सोच बनाए रखें और निगेटिव थॉट से दूर रहें। दोस्तों, प्रतियोगिता तब प्रेरणा बनती है जब हम उसे सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर मानते हैं। लेकिन यदि हम केवल जीतने का दबाव महसूस करें तो वही प्रतियोगिता यानी कंपटीशन तनाव का कारण बन जाती है। इसीलिए स्वस्थ और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा ही सफलता का सही मार्ग है। तो दोस्तों, आज के इस कंपटीशन को प्रेरणा समझें, दबाव नहीं, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: स्वागत है आप सभी युवा दोस्तों का एक बार फिर से आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, जिसे आप सुनते हैं प्रतिदिन शाम 5 बजे 102.7 FM पर आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं अपने अगले क्रम की ओर और जानते हैं क्या है खास आज के इस अंक में। दोस्तों आइए अब आपको सुनवाते हैं ये वार्ता। विषय है नशा मुक्त राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं शिवम।
3: नमस्कार दोस्तों, किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा पीढ़ी होती है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि युवा वह है जो लोहे की मांसपेशियों और फौलाद की नसें रखता हो। लेकिन क्या होगा अगर यही फौलादी नसें की जहर से खोखली होने लगें? दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं नशा मुक्त राष्ट्र निर्माण में हम युवाओं की भूमिका इस विषय पर, और मैं हूँ आज आपके साथ शिवम। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें वैश्विक शक्ति बना सकता है, लेकिन इसके सामने नशा एक ऐसा दीमक बनकर खड़ा है जो हमारे भविष्य के नींव को कमजोर कर रहा है। नशा मुक्त राष्ट्र का निर्माण कोई सरकारी योजना मात्र नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक आंदोलन है जिसका नेतृत्व युवाओं को ही करना होगा। नशे की समस्या पर अक्सर यह सवाल उठता है कि युवा नशे की ओर कदम क्यों बढ़ाता है। इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण हैं, जैसे दोस्तों के बीच कूल दिखने की चाहत अर्थात मित्रों का दबाव, तनाव और अवसाद, करियर प्रतिस्पर्धा और टूटते संयुक्त परिवारों के कारण पैदा हुआ अकेलापन, और फिल्मों और सोशल मीडिया पर नशे को एक स्टाइल स्टेटमेंट के रूप में पेश करना जिसका युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन युवाओं को यह समझना होगा कि नशा समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि समस्याओं का अनंत द्वार है। यह न केवल शरीर को नष्ट करता है बल्कि सोचने समझने की शक्ति और आत्मसम्मान को भी खत्म कर देता है। नशा मुक्त राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका को हम 3 स्तरों पर देख सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत स्तर पर सबसे पहले बदलाव खुद से शुरू करें। युवा नशे से दूर रहें और ना कहने की क्षमता विकसित करें और अपने लक्ष्य जैसे करियर, हेल्थ, फैमिली को प्राथमिकता दें। जब एक युवा खुद नशा नहीं करता तो वह अपने आसपास के लोगों के लिए उदाहरण बन जाता है और लोग उससे प्रभावित होते हैं, जिसका हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। जब सामाजिक स्तर पर देखें तो युवा समाज के भीतर जागरूकता फैलाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। दोस्तों और परिवारों को नशे के नुकसान समझाना, नशा करने वाले व्यक्ति को मजाक या तिरस्कार नहीं बल्कि सहयोग देना, स्कूल कॉलेज गांव में जागरूकता अभियान चलाना, समाज में सकारात्मक माहौल बनाना ही सबसे बड़ा योगदान है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो

युवा देश की ऋण है, इसलिए उनका योगदान राष्ट्र निर्माण में सीधे जुड़ा है। सरकार की नशा मुक्ति योजनाओं में भाग लेना, सामाजिक संगठनों जैसे एनजीओस के साथ जुड़ना, नशे के खिलाफ आवाज उठाना जैसे रैलियां, सोशल मीडिया कार्यक्रम के माध्यमों द्वारा, क्योंकि जब युवा जागरूक होते हैं तो पूरा देश मजबूत होता है। ऐसी स्थिति में युवाओं को क्या करना चाहिए? पहली चीज है, सही दिशा में ऊर्जा लगाएं। खेल, योग, जिम, संगीत, कला और अन्य कार्यों में रुचि बढ़ाएं और खाली समय को प्रोडक्टिव बनाएं। ध्यान देने वाली बात है कि व्यस्त और लक्ष्य केंद्रित युवा नशे से दूर ही रहते हैं। वहीं शिक्षा और जागरूकता के प्रसार द्वारा नशे के दुष्प्रभाव जैसे शारीरिक दुष्प्रभाव, मानसिक और आर्थिक को समझें और दूसरे को जानकारी भी दें, क्योंकि जानकारी ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। आजकल की युवा सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग भी कर सकते हैं। नशा विरोधी संदेश, वीडियो, पोस्ट साझा करें। आज के समय में सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है। दोस्तों के दबाव में आकर गलत आदत न अपनाएं। ऐसे में सही दोस्तों का चयन करें, क्योंकि सही संगत ही सही रंगत लाती है। वहीं जरूरतमंदों की मदद भी करना। जो युवा नशे में फंसे हैं उन्हें रिहैब या काउंसलिंग के लिए प्रेरित करें। उन्हें अकेला महसूस न होने दें, क्योंकि सहानुभूति और समर्थन बहुत जरूरी होती है। सामुदायिक पहल करना भी चाहिए युवाओं को, जैसे नशा मुक्ति अभियान, रैली, सेमिनार आयोजित करें और गांव शहर में क्लब या समूह बनाएं। सामूहिक प्रयास से असर कई गुना बढ़ता है। हम कुछ प्रभावशाली नारे का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे नशे को ना, जिंदगी को हाँ, युवा जागे देश आगे, स्वस्थ युवा सशक्त राष्ट्र, नशा छोड़ो समर्थन जोड़ो। कुल मिलाकर नशा मुक्त राष्ट्र का निर्माण केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी का सबसे बड़ा भार युवाओं के कंधों पर ही है। यदि युवा अपने जीवन में अनुशासन, जागरूकता और सकारात्मक सोच अपनाएं, तो नशे जैसी बुराई को जड़ से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि एक जागरूक युवा एक सुरक्षित समाज का निर्माण करता है और एक सुरक्षित समाज एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए भारत का एक मजबूत, सशक्त और प्रभावशाली बने रहना अत्यंत आवश्यक है, और इसकी जिम्मेदारी आज की युवा पीढ़ी के ऊपर है। दोस्तों, नशा वह दीमक है जो हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ देता है और राष्ट्र की जड़ों को खोखला कर देता है, लेकिन जहां समस्या गहरी है वहीं समाधान हमारी युवा शक्ति के पास है। मेरे ऊर्जावान युवा साथियों, किसी भी राष्ट्र की असली पूंजी युवा शक्ति होती है। यदि यह युवा शक्ति नशे के अंधेरे गलियारों में खो जाए तो देश का भविष्य कैसा होगा? यह भारत के विकास की गति को प्रभावित करेगा। इसलिए आज यह चर्चा अनिवार्य है कि हम कैसे इस अभिशाप से मुक्त होकर विकसित भारत का सपना साकार करें। युवाओं के पास वह जुनून है, वह ताकत है जो समाज की दिशा बदल सकता है। जब हम नशा मुक्त भारत की बात करते हैं तो हमारा अर्थ एक ऐसे समाज से है जहां अस्पताल बीमारियों से कम और खेल के मैदान युवाओं से ज्यादा भरे हों, जहां कलम की ताकत नशे की पुड़िया से बड़ी हो। श्रोताओं, नशा मुक्त भारत का निर्माण केवल सरकारी नीतियों या कानूनों से संभव नहीं है। इसके लिए एक जन आंदोलन की आवश्यकता है, और हर जन आंदोलन की रीढ़ युवा ही होते हैं। युवाओं को यह समझना होगा कि स्वतंत्रता का अर्थ व्यसनों की गुलामी नहीं बल्कि एक स्वस्थ और सजग जीवन जीना है। आज के इस दौर में जहां चुनौतियां बहुत हैं, वहीं युवाओं के पास असीम संभावनाएं भी हैं। नशे के विकल्प के रूप में नवाचार और कौशल को चुनना होगा। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह एक चुनौती जरूर है, लेकिन हमारे युवा इस चुनौती से अच्छी तरह से निपट सकते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्र निर्माण की ईंटें हमारी युवाओं के चरित्र से बनती हैं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि न तो हम स्वयं नशे की जाल में फंसेंगे और न ही अपने समाज को इसमें धंसने देंगे। एक सशक्त, समृद्ध और नशा मुक्त भारत की नींव रखना हम सभी की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी का निर्वहन हम ईमानदारी पूर्वक करेंगे। इसी के साथ हम आपसे
विदा लेते हैं।

0: आप स्वस्थ और अच्छे रहें। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, विषय था नशा मुक्त राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। वार्ताकार थे शिवम, प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा।

एक बार फिर से स्वागत है आप सभी युवा दोस्तों का आपके अपने कार्यक्रम युवावाणी में। और आज का अंक प्रस्तुत कर रही है आपकी रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दूसरों की मदद करना क्यों है जरूरी? नहीं तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि दूसरों की मदद करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, दूसरों की मदद करना एक मानवीय और सामाजिक गुण है। यह न केवल जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है बल्कि समाज में प्रेम, सहयोग और सद्भावना को भी बढ़ावा देता है। इसके महत्व की बात करें तो ये मानवता का विकास करता है, समाज में प्रेम, सहयोग और भाईचारे को भी बढ़ाता है। जरूरतमंद लोगों को सहायता मिलती है, दूसरों की मदद करने में आत्मसंतोष और खुशी मिलती है, अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों का विकास होता है, आपसी विश्वास और सम्मान बढ़ता है। मुश्किल समय में लोग भी हमारी मदद के लिए आगे आते हैं। दोस्तों, दूसरों की मदद करने के कई सारे उपाय हैं, जिसमें आप सबसे पहले जरूरतमंद लोगों की सहायता करके उनकी मदद कर सकते हैं। गरीब और असहाय लोगों को भोजन, कपड़ा या शिक्षा में उनका सहयोग देकर, रक्तदान और अंग दान के प्रति जागरूकता फैलाकर, बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों की सहायता करके, प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्यों में सहयोग करके, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान में भाग लेकर। तो दोस्तों, इसके अलावा भी और कई सारे उपाय हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरों की मदद करना एक महान कार्य है। इससे न केवल दूसरों का जीवन बेहतर बनता है बल्कि हमें भी खुशी, संतोष और सम्मान मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की सहायता करनी चाहिए।

दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये युववाणी का अंक अब यही समाप्त होता है। अब दीजिए अपने रेडियो वाले साथी प्रीति सिन्हा को अनुमति कार्यक्रम युववाणी समाप्त करने की। फिर मिलेंगे किसी अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: बाल संग कार्यक्रम में सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज आपसे बातचीत करेंगी आपकी प्रीति दीदी। बच्चों जैसे आप इंतजार करते हैं ना अपने पसंद का कार्यक्रम को सुनने के लिए, बस वैसे भी हमें भी इंतजार रहता है आपसे बातें करने का। कभी कहानी तो कभी थोड़ी जानकारी तो थोड़ा मनोरंजन कराने का, है ना बच्चों? बच्चों बातों बातों में देखिए हम तो भूल ही गए क्या आपसे हाल चाल पूछना। अच्छा बताइए बच्चों आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? अरे भाई मेरे प्यारे बच्चे तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं। हाँ ये देख के लग रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, अपने छोटे भाई बहन के साथ, अपने पापा मम्मी के साथ, अपने घर में खुश हैं और मस्त हैं। बच्चों देखिए यही होना भी चाहिए, है ना? हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़िए। बच्चों देखिए अब हम आपसे एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसका सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अरे भाई घबराइए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस छोटी सी बात है। बच्चों जानते हैं क्या हिंदी भाषा का सही ज्ञान होना है ना? है ना आपके ज्ञान की बात? बच्चों चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, हिंदी सभी को बिल्कुल शुद्ध आनी चाहिए, है ना? बच्चों आप सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। यह केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि हम सभी की पहचान भी है। मेरे प्यारे बच्चों क्या आप जानते हैं कि हम लोग अपने मन की बात सबसे अच्छी तरह किसके माध्यम से करते हैं? वह है हमारी भाषा, है ना? बच्चों हम अपनी बोलचाल की भाषा में हिंदी ही यूज करते हैं, है ना? बच्चों भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं लेकिन हिंदी हमारे सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक है। बच्चों हिंदी बोलना, पढ़ना और लिखना सीखना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, है ना? हिंदी का सही ज्ञान होने से हम लोग अपनी कोई भी बात या अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं, आपसे साझा कर सकते हैं ना, दूसरे की बातों को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। बच्चों इतना तो होना चाहिए ना कि हम सब जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों आप लोगों को बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि पापा बोलिए। आप छोटे रहते तो आपको क्या सिखाया जाता? मम्मी यही बोलती है ना, बच्चों पापा बोलिए, भैया बोलिए, बिल्कुल बोलते हैं ना कि शुद्ध बोलिए और साफ बोलिए। बच्चों कहते हैं कि बच्चों को जैसा ढालेंगे बच्चे वैसा ही ढलेंगे, वो बिल्कुल मिट्टी के घड़े के समान होते हैं। अगर हम उनको सही ज्ञान देंगे, सही शिक्षा देंगे तो वो वही सीखेंगे। तो बच्चों आप लोग भी सही बोलिए, सही बोलने की कोशिश करिए, है ना? बच्चों साफ और शुद्ध बोलें, बच्चे जैसा सीखते हैं वैसा ही करते हैं। बच्चों हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और हमारी पहचान भी है, वह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चों आइए इसी बातचीत के बीच में आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय है बच्चे मात्राएं कैसे सीखें। भेंट वार्ताकार हैं विजय शंकर उपाध्याय, रिटायर शिक्षक रेनीकोट, और उनसे बातचीत कर रही हैं साजिदा बेगम। तो आइए सुनते हैं बच्चों।
2: बच्चों आज हम बातचीत करेंगे विजय शंकर उपाध्याय जी से, जो रेनूकोट स्कूल में शिक्षक थे, अब रिटायर हो चुके हैं। विजय शंकर उपाध्याय जी आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। तो देखिए सर जी, आज हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ें, और बच्चे भी देखिए हिंदी पढ़ना नहीं चाहते हैं, इस वजह से हिंदी में कमजोर हो जाते हैं, मात्राएं सही नहीं लिखते हैं, उच्चारण सही नहीं करते। तो आप बताइए कि बच्चे कैसे मात्राएं सीखें?
3: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है
2: जी।
3: प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक आसपास के परिवेश से संबंधित उदाहरणों को यथा स्थान प्रस्तुत करते रहना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक गुरु माता पिता होते हैं। खेल खेल में मात्रा उन बच्चों को सिखाया जा सकता है, खेल खेल में मात्रा उनको बतलाया जा सकता है। जिस तरह से हम छोटे छोटे बच्चों को मात्रा आसानी से उनके दिमाग में डाल सकते हैं।
2: जी, तो ये आलेख और सुलेख की प्रैक्टिस बच्चे किस तरह से करें जिससे वे सही सही और सुंदर अक्षरों में लिख सकें?
3: आलेख को सरल भाषा में श्रुति लेख कहा जाता है, श्रुति लेख कहा जाता है, अर्थात सुनकर लिखने को ही आलेख कहा जाता है और सुनकर लिखने को ही श्रुति लेख कहा जाता है। आवश्यकता है बोलने वाले की कला पर, आवश्यकता है बोलने वाले की उच्चारण कितना स्पष्ट एवं सही है, आवश्यकता है बोलने वाले के ऊपर वह जितना सही बोलेगा उतना ही बच्चा सही एवं शुद्ध लिख सकता है। जहाँ तक सुलेख की बात है, सुलेख में सरल भाषा में है सु माने सुंदर और लेख माने लिखावट, अर्थात सुंदर लिखावट को ही सुलेख कहते हैं। बच्चों को प्रतिदिन सुलेख एक ही पैराग्राफ लिखवाने, उसका प्रत्येक अक्षर अनुपात में होना चाहिए, यह देखना टीचर से ज्यादा हर माता पिता या यूं कहे कि अभिभावक का कर्तव्य होना चाहिए। सुलेख हम बात बात में बच्चों को घर पे एक लाइन ही बोले, दो लाइन ही बोले, एक पैराग्राफ ही बोले, लेकिन बोलने की कला जो होनी चाहिए वो स्पष्ट और सही होनी चाहिए, तो निश्चित तौर से बच्चा सुलेख अर्थात आलेख लिख सकता है। और सुलेख डेली अगर प्रैक्टिस करे तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि प्रैक्टिस के आगे बच्चा पिछड़ जाए, अर्थात वो सही लिखना शुरू कर देगा।
2: जी जी, यानी कि टीचरों के साथ साथ माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को होमवर्क के साथ साथ सुलेख भी लिखने की लिखवाने की कोशिश करनी चाहिए।
3: करनी चाहिए।

0: केवल विद्यालय में और केवल शिक्षकों के ऊपर, शिक्षिकाओं के ऊपर जो माता पिता छोड़ देते हैं वही बच्चा देखा गया है कि कमजोर होते हैं।
1: जी जी सर, अक्सर ये भी देखा जाता है कि बच्चे छोटी की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, या फिर छोटे ऊ की मात्रा की जगह बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो बच्चे इन गलतियों को कैसे सुधारें?
0: इस पर हम बोलने के पहले थोड़ा सा ऊपर जाना चाहेंगे कि दूसरे की बात को समझने और समझाने का जो साधन होता है वह भाषा कहलाता है। और भाषा के तीन रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। आज हम लोग केवल मौखिक पर यहाँ थोड़ा बात करने जा रहे हैं। मात्राएं ओ को छोड़कर सभी स्वर के कुछ कुछ चिन्ह होते हैं, इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अब हम छोटी ई जहाँ तक सवाल है या बड़ी ई की जहाँ तक सवाल है तो हम बच्चों को यही बताना चाहेंगे कि जिस मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण जल्दी बोला जाता है उसमें छोटी ई की ही मात्रा लगाई जाती है। जैसे हिरण, अब किला, इसमें क्या है, हमने अपने उच्चारण में हिरण में हौ में जब छोटी ई की मात्रा लगाया तो इस पर मैंने जोर दे करके नहीं बोला चिड़िया, तो बहुत आसान तरीके से और अपना उच्चारण मैंने जो बोला वो थोड़ा जल्दी बोला
1: जी।
0: तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि इसमें छोटी ई की मात्रा लगनी है। तो जब हम बच्चों को श्रुतिलेख या सुलेख लिखवाते हैं तो निश्चित तौर से इसी तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मतलब अपने मुंह से जो उच्चारण निकले इसी तरह का उच्चारण निकले कि बच्चा केवल मेरे उच्चारण को सुन करके मात्रा सही लगा सके। जिस शब्दों का उच्चारण पर जोर दिया जाता है, जैसे बड़ी चीज है, बोलने पर हम जोर दे करके बोलते हैं, जहाँ जोर देकर बोलेंगे वहाँ बड़ी ई की मात्रा लगती है। जैसे हाथी, तो हाथी मैंने थ में बड़ी की मात्रा लग गई, तीर तो तीर में ओ में बड़ी की मात्रा लग गई, मछली तो लौ में बड़ी की मात्रा लग गई। इस तरह से जोर दे करके बोलने वाले पर बड़ी ई की मात्रा लगाई जाती है। इसी तरह से शीघ्र बोलने वाले शब्दों में, जहाँ तक छोटा ऊ का सवाल है, जोर देकर के शीघ्र बोलने वाले शब्दों में छोटा ऊ लगता है, जैसे पुल, जैसे बुलबुल, जैसे गुड़िया इत्यादि। और जोर देकर बोलने वाले शब्दों में बड़ा ऊ लगता है, जैसे झूला, फूल, सूरज। तो ऑटोमेटिक बच्चे को अगर इस तरह की बात समझा करके शुरू में ही हम उनको बताएं तो निश्चित तौर से बच्चा जो है मात्रा सही सही लिखना शुरू कर देगा।
1: जी जी बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, और उस पे अगर बच्चे ध्यान देंगे तो अपनी मात्राओं को सही तरीके से लगाएंगे भी। और इसी तरह से देखिए, अक्सर बच्चे बोलचाल में या फिर पढ़ने में शब्दों का सही उच्चारण नहीं करते हैं, तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है?
0: बार बार प्रैक्टिस करने से सही सही भाषा का प्रयोग टीचर एवं घर के सदस्यों को भी करना चाहिए। अगर हम खुद गलत बोले तो निश्चित तौर से बच्चा गलत बोलेगा।
1: जी,
0: वाक्यों पर हमें ध्यान देना होगा।
1: जी,
0: चाहे गार्जियन हो, माता पिता हो, भाई बहन हो या अध्यापक भी क्यों न हो, देखा गया है कि वो वाक्यों पर उस तरह का ध्यान नहीं देते हैं जिस तरह से बच्चे का मनोविज्ञान कहता है कि बच्चे क्या चीज खोजते हैं। वाक्यों को धीरे धीरे पढ़ना या बच्चों को पढ़वाना, समझना, ये हमें प्रैक्टिस के माध्यम से ही बच्चों के ऊपर इस चीज का बोझ डालना चाहिए। हम जितना उन्हें प्रैक्टिस कराएंगे उनके अंदर उच्चारण संबंधित सुधार होता रहे।
1: बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बताया। और देखिए सर, अक्सर कहा जाता है कि बच्चे तो मिट्टी के घड़े के समान होते हैं, उनको जैसा आकार दिया जाएगा और जैसा परिवेश दिया जाएगा, जो कुछ सिखाया जाएगा, बच्चे उसको बहुत जल्दी से सीख लेते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो आज आपसे बातचीत हुई कि बच्चे सही उच्चारण कैसे सीखें, और आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया और बच्चे भी इसका लाभ जरूर उठाएंगे। तो आपने बातचीत की, अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बच्चों, अभी आपने सुना ये भेंटवार्ता।

विषय था बच्चे मात्राएं कैसे सीखें। वार्ताकार थे विजय शंकर उपाध्याय, रिटायर्ड शिक्षक रेणीकूट, और उनसे बातचीत कर रही थी साजिदा बेगम। बच्चों, तो आप लोग भी बिल्कुल ध्यान दीजिए कि अपनी पढ़ाई को, अपनी मात्राओं को, अपने बोलने के तरीकों को बिल्कुल सही से करके बोलिए। और ये तो सबसे ज़रूरी बात है कि हिंदी सही से आनी चाहिए। बच्चों, कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा तो हम हिंदी ही आपसे बातचीत करते हैं। अभी थोड़ी सी कल की बात है, एक बच्चा आया, उसे बोला गया कि 30 रुपये, तो बच्चा एकदम शांत हो गया। 30 रुपये का मतलब वो जाना ही नहीं। जब उसे बोला 30 रुपये तो वो बिल्कुल जान गया। तो बच्चों, इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम जहाँ हैं वहाँ की भाषा बिल्कुल ना समझें। बच्चों, आप लोग इसको रूटीन में रखिए, डेली पढ़िए, डेली एक पेज लिखिए, जरूर से अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों, अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि झूठ बोलना बिल्कुल गलत बात है। जी हाँ बच्चों, बच्चों क्या आप भी अपने पेरेंट्स से अगर झूठ बोलते हैं तो आपके मन को संतुष्टि मिलती है? नहीं ना। तो बच्चों, ऐसा ही बिल्कुल मत करिए। जो भी बात हो आप बिल्कुल खोल के करिए। आप जब बिल्कुल छोटे होते तो यही मम्मी क्या कहते हैं, बच्चे आप जहाँ भी जाइए हमको बता के जाइए। स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल ही जाइए, अन्यथा कहीं मत जाइए। क्योंकि आपको इतना तो होना चाहिए ना कि मेरे मम्मी पापा कितना शौक से, कितना लाड़ से मेरे लिए सुबह टिफ़िन बनाती हैं, स्कूल भेजती हैं, आने के बाद आपका बैग, आपके शूज, आपके कपड़े सभी का देखरेख बिल्कुल सही तरीके से, अगर वो अपने चीज़ में नहीं कमी करती हैं तो आप लोग को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़रा सोचिए बच्चों, क्या आप झूठ बोल के खुशी पाएंगे? नहीं। तो ऐसी कोई बात मत करिए जिससे कि आपके माता पिता को कष्ट हो। बच्चों, कोशिश यही होनी चाहिए कि हमेशा सच बोलना, सच का साथ देना। सच बोलने से बच्चों जानते क्या होता, विश्वास बढ़ता है। आप कहीं भी जाइए, अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन या किसी को भी बता के जाइए। जानते बच्चों, अगर सच बोलेंगे ना तो लोग आप पे भरोसा भी करते हैं, है ना। बच्चों, अब देखिए परिवार में कई तरह के लोग रहते हैं, है ना। कोई बहुत ज़्यादा बोलता है तो कोई बिल्कुल कम बोलता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल नहीं बोलता है तो वो बिल्कुल सच ही बोल रहा है या झूठी। बहुत से लोग होते बहुत सारी बातें कर जाते हैं एक मिनट में, तो क्या सच ही नहीं होता? तो कहते हैं ना, कम बोलिए सही बोलिए। बच्चों, झूठ बोलना बिल्कुल गलत है। झूठ बोलने के साथ साथ झूठ का साथ देना तो उससे ज़्यादा गलत है, है ना। और आप पे लोग विश्वास नहीं करते, आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। बच्चों, कहते हैं ना कि सच की बुनियाद जितनी मजबूत होती है, झूठ की उतनी ही कमज़ोर। और जानते हैं बच्चों, जब लगता है ना कि देखो अब झूठ बोलने पकड़े जाएंगे तो अंदर से डर लगता है ना, तो ऐसा मत करिए कि आपको डर लगे, है ना। बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का होना देखिए ज़रूरी तो है ही। बचपन से सिखाई हुई बातें बच्चों हमेशा साथ रहती है ना। अगर आप सोचिए कहीं भी रहते हैं, अरे मम्मी ये हमसे कही थी, काम आता है ना। तो अगर बच्चों कोई भी बात, बच्चों छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने लगते हैं तो यह आदत धीरे धीरे एक बड़ी समस्या बन जाती है बच्चों। इसलिए मम्मी पापा या घर का कोई भी सदस्य यही सिखाता है कि हमेशा सच बोलिए, सच का साथ दीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों से भाई गलती हो जाती है, छोटा बच्चा है ना। तो बच्चों बिल्कुल झूठ बोल लिए, बच्चे डर के कारण भी झूठ बोल देते हैं, है ना, कि अब तो मम्मी से डांट पड़ेगी, अब कैसे बचेंगे, है ना। बच्चों अपनी गलती छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों अगर कोई भी गलती हो जाए तो ना छुपाना नहीं, अपनी गलती मान लेना झूठ बोलने से बेहतर होता है। अगर एक बार में गलती मान ली तो वो सब सही हो जाएगा, है ना। बच्चों आप सब इतना तो जानते हैं ना कि एक झूठ छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर पेन ही खो जाए, बोतल खो जाए, तो मम्मी वहाँ खेल रहे थे, वहाँ बैग छूटा था, तमाम तरह की बातें अपने मन में लाते हैं और मम्मी से कहते हैं,
हम लोग जानते हैं कि बच्चा भाई वो खोया है, लेकिन वो डर के कारण, तो बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलना बिल्कुल गलत बात होता है और समस्या बढ़ती ही है, घटती नहीं है बच्चों। इसलिए हमेशा अपने अंदर ईमानदारी अपनानी चाहिए, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने टीचर से सच्ची बातें करनी चाहिए। और बच्चों सच बोलने से मन को शांति तो मिलती है ना, अंदर से अच्छा महसूस होता है। अब बच्चों आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बच्चों एक चरवाहे ने मजाक में कई बार झूठ बोला कि गांव में भेड़िया आया, गांव में भेड़िया आया। वो चिल्लाने लगा, मदद करो मदद करो, लेकिन हर बार उसे झूठा पाया जाता था। जब भी कोई आया तो कोई भेड़िया नहीं। बच्चों सच में एक दिन भेड़िया आया तो वो फिर चिल्लाया कि भेड़िया आया भेड़िया आया, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आया, है ना। तो बच्चों गलत बात है ना, झूठ का सहायता कोई नहीं करता, साथ का सब लोग करता है। तो ऐसा कुछ मत करिए कि एक दिन मेरे साथ हकीकत हो और कोई बचाने भी ना आए, है ना बच्चों। तो बच्चों आप लोग हमेशा पढ़िए, आगे बढ़िए। बच्चों इस कहानी से क्या सीख मिली कि झूठ बोलने से हमारा विश्वास खत्म होता है बच्चों। इसलिए झूठ जैसी गंदी आदत से दूर रहना चाहिए बच्चों। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने वाले व्यक्ति जीवन में हमेशा सम्मान और सफलता प्राप्त करते हैं। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो ईमानदारी और सच्चे होते हैं। बच्चों इसी बातचीत के साथ आइए सुनते हैं ये वार्ता। जाने स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी के बारे में। वार्ताकार है ऋतु सिंह, शिक्षिका।

0: रितु सिंह है। मैं प्राथमिक विद्यालय धौरावा में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हर साल 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती क्यों मनाते हैं? यह दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सत्य, अहिंसा और ईमानदारी का पालन किया, इसलिए पूरा देश उन्हें बहुत सम्मान देता है। बच्चों, गांधी जी को प्यार से बापू और राष्ट्रपिता कहा जाता है। बच्चों, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। गांधी जी ने पोरबंदर और राजकोट में पढ़ाई की। बाद में वे इंग्लैंड गए और कानून की शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के बाद वे वकील बने। वकालत के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। वहां भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव को देखकर उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया। बच्चों, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब गांधी जी भारत वापस लौट कर आए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई शुरू। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए बहुत संघर्ष किया। उन्होंने लोगों को सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने बिना हिंसा किए अंग्रेजों का विरोध किया। उनके समय में अनेकों आंदोलन हुए, जिनसे लोगों में आजादी की भावना मजबूत हुई। उनके प्रयासों से हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ। बच्चों, गांधी जयंती पूरे भारत में बड़े उत्साह से मनाई जाती है। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बच्चे गांधी जी के जीवन पर भाषण, कविता और नाटक प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, उनके प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम गाए जाते हैं। उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। लोग स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। गांधी जी हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और सभी के साथ प्रेम और सम्मान से रहना चाहिए। हमें मेहनत करनी चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए और अपने देश से प्रेम करना चाहिए। हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और अच्छे नागरिक बनना चाहिए। बच्चों, गांधी जयंती केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि हमें अच्छे संस्कार अपनाने की प्रेरणा देने वाला दिन है। यदि हम गांधी जी के बताए सत्य, अहिंसा, ईमानदारी और स्वच्छता के मार्ग पर चलें, तो हम अच्छे इंसान और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। आइए, इस गांधी जयंती पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम हमेशा सच बोलेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, अपने देश से प्रेम करेंगे और गांधी जी के आदर्शों का पालन करेंगे। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस साल और आने वाले सालों में हमेशा सच का, ईमानदारी का, दूसरों की हेल्प करने का और स्वच्छता जैसे आदर्शों का पालन करेंगे। बच्चों, जय हिंद, जय भारत।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बच्चों, अभी आपने इस संदेश से पहले सुन रहे थे स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी के बारे में। वार्ताकार थी रितु सिंह, शिक्षिका। बच्चों, आप कुछ सोच रहे होंगे ना, अच्छा ये सोच रहे हैं कि दीदी तो कहीं कि गीत संगीत से मनोरंजन होगा, लेकिन गाना सुना ही नहीं रही, केवल बातें की जा रही, मज़ा नहीं आ रहा ना। चलिए बच्चों, तो आइए अपने इस भाषण कार्यक्रम में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: बच्चों देखिए, अब हमारे बाल संग कार्यक्रम का समय भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा और आपका गाना भी पूरा हो गया। तो बच्चों जाते जाते एक बार फिर आप लोग खुश रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अपने कार्यक्रम को सुनते रहिए बाल संग, और अपने अप्रीति दीदी को दीजिए इजाजत। बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल संग 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी के उपरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम को 6 बजे को है, अब आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।
3: नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ कैलें। यह योजना में मिले वाले 5 लाख रुपया तक का कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा से प्रदेश के 12 लाख शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी आ उनकर आश्रित लाभ पाई हैं। यह मौका पर मुख्यमंत्री कहने की विद्यार्थियों के सही राह दिखावल शिक्षक लोगिन का कर्तव्य भैले के साथ ही राष्ट्रीय दायित्व हवे।
4: आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें पहले तो ईश्वर करे कि कोई ऐसी घटना दुर्घटना न हो, लेकिन अगर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है, उन स्थितियों में जिसमें अस्थाई शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है, उन्हें 10 लाख का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ का स्थाई दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा।
3: मुख्यमंत्री अजुय चित्रकूट में 951 करोड़ रुपया के लागत के कई गो विकास परियोजन के लोकार्पण आ शिलान्यास कार्यक्रमों में शामिल भइल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय अलनीनो के कई गो क्षेत्रन पर संभावित प्रभाव आ तैयारियन की समीक्षा बदे काल एगो उच्च स्तरीय बैठकी कैलस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्र के अध्यक्षता में ई बैठकी नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में भइल। बैठकी में 15 से बेसी मंत्रालयन का सचिव आ सीनियर अधिकारी लोग हिस्सा लेने। एको रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए, राज्यों के साथ मिलकर उन जिलों पर मानसून या देर से आए मानसून के असर का आकलन किया जाए जो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए कदम उठाए जा सकें। यह भी निर्देश दिया गया कि चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाए, साथ ही चारे के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाए और राज्यों के साथ मिलकर इस बारे में नियमित निगरानी की जाए। संवेदनशील जिलों में पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान निकालने के लिए मंत्रालयों को राज्यों के साथ मिलकर आपसी तालमेल से काम करना चाहिए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
3: कृषि या किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानों अजुए अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा बदे उच्च स्तरीय

0: पुलिस लाइंस ले आवल गईल। श्री अमरनाथ जत्रा बदे आज एगो नया परामर्श जारी कर गईल बा। एगो रिपोर्ट।
1: जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जारी परामर्श के अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। यात्रा के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मौसम विभाग प्रदेश के पूर्वी जिलन में आज व बिहने कई जगह पर बरखा और गरज चमक के साथ बौछार पड़ने का संभावना जतौले हो। विभाग की ओर से दौरान कहीं कहीं बिजली गिरले या भारी बरखों का येलो अलर्ट जारी कर गई बा। पीछे गोरखपुर के सतही पूर्वी जिलन में अजुओ सवेरे से आसमान में बादल छवले रहल आ रुक रुक के हल्का है बुन्नी परत रहल। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
2: एक सौ दो दशमलव सात एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम। भोला भैया देखे हम लोगन अपने कार्यक्रम में समय से जुट गई जा, और देखे धीरे धीरे अपन पंच भैया बहन लोगन भी जुटत हुए। आप सुनावे कुछ अपन हालचाल।
1: हालचाल सब चलत है, समय देखते हो पानी बुनी कुछ पड़ल हो। ऐसने में घर घर ठहित आदमी पहले तैयारी कर ले हो, लेकिन एक साथ साथ इसमें भगवानी के उद्देश्य जौन पौध रोपण हो रहा है, एक भी जौन बाकी बहुत बृहद रूप में लगावल जा रहा है। और सबसे बड़ा इसमें लोग संकल्प भी ले बा कि लगाए जितना बहादुरी नहीं खे बढ़ के बचावे, संरक्षण बहुत जरूरी है
0: बिल्कुल। और एक साथ साथ भोला भैया देखे अपने गाँव गिराव में जोन भी आसपास जगह बाटे बरोबर, तो इसे साफ सफाई होते रहा, लेकिन बरखा बुन्नी के दिन में खास तौर से साफ सफाई रखल बहुत जरूरी बा। तो देखे अपन घर से लेके बाहर भी आसपास के जोन जगह बा, हम लोगन खुद भी साफ सुथरा रखें। काहे के दिन जोन भी अपन सफाई कर्मी भैया बहन लोगन हुआ वो तो देखा प्रतिदिन लगले रहलन, तो हम लोगन के भी कुछ जिम्मेदारी बनेला भैया कि हम लोगन भी अपन जोन जिम्मेदारी के बा बखूबी निभावल जाए।
1: सबसे महत्वपूर्ण बात की जहाँ एक जगह पर लगातार 7 दिन तक जौन पानी इकट्ठा रह जाता है, वही में जौन बाकी मच्छर के लार्वा बढ़े के ज्यादा संभावना रहला।
0: बिल्कुल,
1: जैसे ओके जौन बाकी देख रेख के दरमियान जैसे टायर हो गए या और कोई चीज ऐसा हो, थाली भी जब पुरान उरान हो, चाहे कोई चीज
0: कूलर का टूटल उटल जैसे
1: छप्पर आदमी रख देलक चाहे अगल बगल, ओमे इकट्ठा पानी हो तो ओके ध्यान दे करके पलट दे ले की जरूरत है, या तो पलट कर रखे ही कि पानी इकट्ठा ना हो।
0: बिल्कुल भैया, काहे की देखा वो सब चीज मतलब इसे कबाड़ हो गल बात है भैया, इकट्ठा रखल जाए कि जब कबाड़ वालन के देवे की जरूरत पड़े तो के बेच दिया जाए पानी ने इकट्ठा होके में। और देखा एक चीज कहल जाला कि जहाँ रही साफ सफाई भैया वहाँ न कोनो बीमारी न परेशानी आई।
1: बिल्कुल।
0: और एक साथ साथ भी यही कहब कि देखा असली बीमारी तो अपना दिमाग के सोच में होला, जे लोगन के जीवन से खिलवाड़ करके सबका जीवन के दबाह करेला।
1: पहलवा जो है कि पतई के बना के लोग कन्या पुत्री खेले।
0: हाँ, बचपन में अपन जो हम लोगन भैया अपन कहा है बचपन भुलात है।
1: बिल्कुल,
0: हम लोगन तो ऐसे देखे खेलत नहीं, बिया शादी बा छोट छोट दियरी के खाना बनावल जाए चूल्हा चौका पर बना करके, लेकिन वो देखे कुछ लोगन ना ओके जीवन में सार्थक कर ले हूँ अपने जीवन में कि नहीं बचपन की छोट उम्र में कम उम्र में ब्याह कर दे तो अपन जिम्मेवारी से मुक्त हो जाए, अपन जांग पवित्र हो जाए।
1: बहुत अज्ञानता है बतासा बहन, एक ही लेकर के जौन बाकी आज जच्चा बच्चा दोनों की स्थिति खराब हो, यहाँ तक कि जौन बाकी जौन पुरुष हो वह के स्थिति खराब हो, एमे समझदारी की बात हो। जब तक शरीर प्रौढ़ न हो तब तक न तो जौन बाकी लड़की की शादी करें न लड़का के।
0: बिल्कुल भोला भैया, आपके सुचान बिल्कुल सही बा, लेकिन बाकी लोगन के जौन भी कुछ लोगन के जौन मानसिकता बा देखा, बाल विवाह हो चाहे मानव तस्करी हो, मानव अधिकार का

0: देखा घोर उल्लंघन करे वाला एगो, मतलब एक तरह से कहला है कि दोनों ऐसा बुराई है जौन कि एक दूसरा से जुड़ल बा कहीं ना कहीं।
1: आज जौन छोट छोट बच्चा लोग हम प्राइमरी जूनियर तक तो पढ़ लेते बाहर लोग, लेकिन एकरे बाद जौन बाकी बहुत लोग आवत बन बाहर से, जैसे कोई होटल चला रहल हो चाहे तो कोई और कल कारखाना
0: बाल
1: हो,
0: मजदूरी के रूप में
1: तो
0: भैया।
1: वो लोग आ करके कहत बा कि जो कि तुमके इतना पैसा मिली चल यही करके का हो, कितना पढ़ लिख करके यहाँ घूमल चलत बा लोग, तो वो
0: बिल्कुल
1: अलग विषय बा। घूमत बा तो अपन जौन बा कि उम्र पूरा
0: स्वच्छंद
1: कई
0: अपन स्वतंत्रता बा ओकर
1: उम्र
0: अपन अपने
1: पूरा
0: हिसाब
1: कैला के
0: से बा।
1: बाद
0: बिल्कुल
1: उम्र
0: बिल्कुल।
1: पूरा कैला के बाद अब बचपने में आप लगभग घूमे और जोन बाकी जा करके मजदूरी करे, तो यहाँ पर आपके जोन बाकी शोषण हो रहा बा। एक तो
0: बिल्कुल
1: पूरा
0: बेहद
1: मजदूरी नहीं मिली और
0: बिल्कुल।
1: दूसरी बात में जोन बाकी आपकी जो शक्ति है वो छीण हुई, समय से भोजन ना करे पाई है, आप स्वतंत्र होकर के जहाँ पठन पाठन करे के वो नहीं कर पाई है।
0: बिल्कुल सही कहला भैया। देखा जैसे अब ये तो घूमे फिरे जो अपन बतौला कि वो हिसाब से बा, लेकिन देखा जब कम उम्र में बच्चों लोगों का ब्याह हो जाला तो देखा उनका शिक्षा हा, स्वास्थ्य हा, उनका स्वतंत्रता सबसे देखा बचपन के वंचित कर दिया जाला। और जैसे कि आगे चल के उनका शोषण और तस्करी का आसानी से शिकार होके लगे बचवा लोगन।
1: बिल्कुल
0: और देखे मानव तस्करी में मनई लोगन के कभी कभी मने बचवा लोगन के बात हम करत हई कि उनके बहला फुसला के चाहे डरा धमका के अपहरण करके उनके एक जगह से दूसरा जगह ले जाने जेकर के उद्देश्य उनकर और लक्ष्य ये होला खाली उनका शोषण कैल। और
1: बिल्कुल
0: जिनमें जैसे भैया अगर कहल जाए कि जबरन मजदूरी करावल बा, भीख मंगवावल बा, अंग के निकलवावल जैसन बा भैया उनकर, जैसे अलग अलग अंग होला किडनी होला कबो कबो
1: बिल्कुल
0: बेच
1: बिल्कुल
0: देना तो
1: बिल्कुल
0: उसे भी
1: बिल्कुल
0: पैसा चाटे मुकर। मतलब ये घिनौना कृत्य में जो शामिल मामिला आवेला भैया, तो ये बाल तस्करी के ही एगो माध्यम भी लोग बना लेला कि मतलब एक इस्तेमाल करके जबरन ब्याह में ब्याह करके उनके धकेल दिया जाला
1: बहुत
0: जो उनकी
1: लोग,
0: यौन शोषण भी होला,
1: हाँ,
0: घरेलू हिंसा भी होखे लगेला भैया।
1: बहुत लोग तो जोन बाकी मेन चीज हमें होला कि किशोरावस्था में लोगों के समझ तो कम रहला, ऐसे में लड़कियन के बहला फुसला करके भी लोग ले जाला जोन बाकी
0: उहे कहते
1: कि तोके
0: भैया
1: जोन बाकी हम
0: नौकरी का
1: इतना
0: लालच
1: नौकरी के
0: देके,
1: लालच दे
0: उज्ज्वल
1: करके।
0: भविष्य
1: बिल्कुल
0: के लालच
1: बिल्कुल
0: दे
1: बिल्कुल
0: करके कि हम तो के इतना बढ़िया व्यवस्था दे, हर चीज के नौकरी दे। तो भाई सही बात बा कि जैसे जे भी मध्यम परिवार के लोग हुआ, गरीब परिवार के लोग हुआ, तो सोचे ना भैया कि भाई ऐसा बात बात तनी देखल जाए करल जाए, भेज देना अपने बचपन के कौनो न कौनो लोभ में पड़
1: जे
0: करके
1: सरल स्वभाव के होला
0: सरल
1: ना,
0: स्वभाव
1: ईमानदार जो
0: के।
1: रहला, तो वो
0: बिल्कुल।
1: समझला कि अगलका भी जो सामने बात करत बा वो भी हमरे जैसा ईमानदार होई, वही में प्रलोभन में पड़ करके लोग चल जाला।
0: बिल्कुल भैया। तो देखे वो भाई जो स्वास्थ्य बा, शिक्षा बा, सब कर तहनन होबे करेला, साथे साथ बच्चवा लोगन के चाहे बच्चिया लोगन के शारीरिक मानसिक विकास में भी क्षति होला। और देखे कम उम्र मने भैया कि जैसे 18 साल से कम उम्र हो, 21 साल
1: लड़की
0: से
1: का,
0: कम उम्र हो, तो ये देखा कहीं ना कहीं कहल जाए कि कच्चा माटी के जैसन बच्चों
1: बिल्कुल
0: लोगन के या
1: बिल्कुल
0: बच्चिया
1: बिल्कुल
0: लोगन के उम्र होला। तो भैया देखा है कि कैले के बाद देखा उनकर बचपन भी हनन हो जाला
1: हाँ
0: एक तरह से। जो
1: हाँ
0: अभी
1: हाँ
0: हम लोगन बात कर ले कि हम लोगन गुड्डा गुड़िया बना करके कपड़ा का
1: बिल्कुल
0: चाहे
1: बिल्कुल
0: खिलौना कैसे खेलत नहीं, तो ये सब चीज से वो बिल्कुल दूर हो जाले। भोला भैया देखे ये गैर कानूनी कृत्य तो है ये बा, कानून के देखा जब पता चलेला तो कठोर दंड और सजा के प्रावधान बनौले ही हवन, लेकिन अपराधी लोगन के सजा तो देला, लेकिन हम लोगन का भी आपन जिम्मेवारी बनेला भैया कि ये कुप्रथा चाहे दहेज प्रथा हो या फिर बाल विवाह हो या कोनो तरह का जो सामाजिक कुप्रति प्रवृत्तियां हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ओकरे प्रति हम लोगन के खुद भी आवाज उठावे के जरूरत बा, अपने परिवार से ही अपने घर से ही शुरुआत करे के
1: बिल्कुल
0: जरूरत
1: बता
0: बा।
1: सा बहन, दरअसल दंड मिले हो के चाहे अपराध के सजा मिले वो तो बात के बात हो, लेकिन अपन जो जीवन है वो तो जोन बाकी छीड़ हो जाए तो फिर वो चीज नहीं मिल पाई। ऐसे
0: बिल्कुल
1: जोन बाकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समझदारी, अपने जागरूक बने, केहू प्रलोभन में आकर के कहीं जाए की जरूरत नहीं है।
0: बिल्कुल। और कुप्रथा के प्रति आवाज बुलंद करे के जरूरत बा भैया। देखा बाल विवाह हो चाहे मानव तस्करी हो, एक खिलाफ जोन बाकी लड़ाई सरकार चाहे पुलिस विभाग कहीं देखा जिम्मेदारी नहीं है। हम लोगन का प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है कि अपना आसपास अगर कहीं ऐसा अपराध हो रहल बा तो
1: बिल्कुल
0: एकर विरोध करल जाए। काहे कि देखा भैया होला ना कबो कबो कि अरे हमार लड़का नहीं है, हमार लड़की नहीं है, तो हम काहे के बीचे में पड़े जाए, काहे समस्या मोल लही। लेकिन भैया हो सकेला कि अगर मान ला कि कहीं ऐसा परिस्थिति आ गई कि आपका लड़का लड़की भी ऐसा अपराध में फंस गए मजबूरी में, तब वो स्थिति में का हुई, तो वो बचपन के भी अपन ही समाज का अपन गांव का बेटी बेटा समझ करके हमारा कर्तव्य बनेला, जिम्मेदारी बनेला कि हम लोगन ए तरह का जौन भी कुकृत हो रहा बा ओकरे प्रति हम लोगन अपन सहयोग करी समाज के साथ मिल करके, और ऐसा अपराधी लोगन के सजा दिवावे में अपन योगदान देवल जाए।

0: तो भैया देखा, हम लोगन तो अपन राय अपन बातचीत एक दूसरे से साझा कैबे कैली। आज देखा अपने पंचायती में भी कुछ ऐसे ही जानकारी बा, गुड़ जानकारी बा, जैसे कि बाल विवाह एगो दंडनीय
1: दंडनीय अपराध
0: अपराध
1: है,
0: बा।
1: बिल्कुल।
0: ए बारे में साधना मिश्रा से जो उनकी जिला समन्वयक महिला कल्याण विभाग सोनभद्र के है, उनसे सचिन कुमार वर्मा भैया बातचीत कैले हुवन। तो हम तो कहते अपने पंचायती में जौन जौन भी हुई बारी बारी से बतावल जाई, लेकिन ये जानकारी जौन बा कहता
1: ओके,
0: तो सुन
1: सुनो
0: लेल
1: सुनो,
0: जात।
1: बिल्कुल। विवाह एक ऐसी परंपरा है जो हमें समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है, और जब बात बाल विवाह की होती है तो आप जानते हैं कि ये एक अभिशाप से कम नहीं है, क्योंकि कम उम्र में विवाह होना मतलब बचपन को खत्म करने के बराबर है। और इस कुप्रथा के खिलाफ लंबे समय से आवाज उठाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप ये कम तो हो गया है परंतु समाप्त नहीं हुआ है। बाल विवाह एक दंडनीय अपराध भी है, जिसमें दंड के प्रावधान किए गए हैं। आइए इसी विषय पर बात करते हैं हम महिला कल्याण विभाग सोनभद्र की जिला समन्वयक साधना मिश्रा जी से, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। साधना मिश्रा जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: साधना जी, सबसे पहले हमें ये बताएं आप, हमारे श्रोताओं को, कि बाल विवाह होता क्या है?
2: जब 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की या 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह किया जाता है तो इसे बाल विवाह कहा जाता है। याद रखें, कोई वयस्क पुरुष 21 वर्ष से अधिक आयु का 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को बाल विवाह कहा जाता है।
1: अच्छा, मतलब विवाह की एक उम्र निर्धारित की गई है, जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
2: जी
1: अगर इससे कम है तो वो बाल विवाह हो गया।
2: जी
1: तो क्या ऐसा भी है कि अगर किसी महिला की उम्र मान लीजिए कि 18 वर्ष से ज्यादा है और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है, तो क्या ये भी बाल विवाह में होगा?
2: तो भी सर ये बाल विवाह की श्रेणी में आएगा।
1: बिल्कुल, बाल विवाह की श्रेणी में, बस एज से डिफरेंस होगा तो आएगा, कम होगा तो आएगा।
2: जी हाँ
1: तो बाल विवाह से संबंधित कोई कानून भी है हमारे यहाँ?
2: जी हाँ, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत सजा का प्रावधान है।
1: जी,
2: बाल विवाह से संबंधित कानून को बाल विवाह निषेध अधिनियम PCMA 2006 कहा जाता है,
1: जी,
2: जिसके अंतर्गत जो भी परिवादी या परिवादिनी शादी करते हैं बाल विवाह, वो इस सजा का दंड उनको दिया जाएगा।
1: मतलब जिसका विवाह हो रहा है उन्हें, या जो विवाह करवा रहे हैं?
2: सर जिनका विवाह हो रहा है उनको भी, और जो विवाह करवा रहे हैं उनको भी।
1: जी, तो ये जो सजा मिलती है, मतलब सजा का प्रावधान जो है, किन्हें दिया जाता है? मतलब लड़के लड़की को तो आपने बताया कि वो भी, उन्हें भी सजा दी जा सकती है,
2: जी।
1: तो क्या माता पिता इसमें आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, क्या वो भी आते हैं इसमें?
2: जी हाँ, जो बाल विवाह के लिए जो क्राइटेरिया बनाई गई है
1: जी,
2: उसमें लड़की और लड़के दोनों पक्ष के माता पिता और जो शादी को तय कराते हैं, जो शादी तय होने के जो बीच के माध्यम होते हैं, वो उस दंड के भुक्तभोगी होते हैं,
1: जिन्हें हम अगुआ भी बोलते हैं,
2: अगुआ बोलते हैं। और उसके बाद फिर जिस शादी कराने का जो माध्यम होते हैं पुजारी पंडित जी, वो होते हैं शादी का जो संचालन कार्यकर्ता होता है, वो होते हैं घराती बराती बैंड बाजा पार्टी, जितने लोग इस शादी में सम्मिलित होते हैं
1: जी,
2: सब लोग इस सजा के भुक्तभोगी होते हैं।
1: मतलब उन्हें सजा दी जाएगी
2: जी हाँ,
1: क्योंकि उनकी उपस्थिति में ये सारी चीजें हो रही हैं,
2: इसलिए
1: वो
2: हाँ,
1: सजा उन्हें
2: जी हाँ,
1: मिलेगी। बाल विवाह कुप्रथा तो है ही
2: जी हाँ।
1: अगर किसी नागरिक के सामने ये बाल विवाह हो रहा है, उसके संज्ञान में है और वो उस बाल विवाह को रुकवाना चाहता है,
2: जी हाँ।
1: तो इसके लिए उसे कहाँ इसकी शिकायत करनी चाहिए? क्या कोई ऐसा टोल फ्री नंबर है जिस पर त्वरित कार्रवाई हो सके फोन करने पर?
2: जी हाँ, अगर कहीं हमारे जनपद में सुदूरवर्ती क्षेत्रों से
1: जी,
2: अगर आदिवासी ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ,
1: जी,
2: अगर कहीं भी बाल विवाह की सूचना आती है तो सबसे पहले या तो पीड़िता स्वयं 1098 चाइल्ड लाइन नंबर है जो हमारी प्रदेश सरकार द्वारा ये संचालित की गई है,
1: जी,
2: इस पे पीड़िता जो होती है वो तत्काल शिकायत करती है या संबंधित थाने पे शिकायत कर देगी, या मानव तस्कर रोधी इकाई एक यूनिट है पुलिस विभाग की टीम, उस पे शिकायत करे, या अपने जिले पे जिला प्रोबेशन कार्यालय है, जिला बाल संरक्षण इकाई है, महिला शक्ति केंद्र है, वन स्टॉप सेंटर है, आप इन जगहों पे आप शिकायत कर सकते हैं जिनमें शिकायतकर्ता का नाम और पता गोपनीय रखा जाता है।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि शिकायतकर्ता को हम लोग शो नहीं करते हैं, उनको गुप्त ही रखा जाता है। मसलन अगर आपके सामने बाल विवाह हो रही हो, तो सबसे पहला काम हमें लगता है कि वही करना चाहिए, निकटतम थाने पर सूचित कर देना चाहिए।

0: अन्यथा 1098 पे कॉल करके आपको सूचित करें।
1: जी हाँ
0: अगर किसी ने इसकी शिकायत कर दी 1098 पे, तो ये कितनी देर में वहाँ पे आप लोग पहुँच जाते हैं या प्रशासन पहुँच जाता है जिससे बाल विवाह रुक जाता है, लगभग कितना टाइम?
1: सबसे पहले तो अगर चाइल्ड लाइन से सूचना आती है तो वो सूचना कॉल ट्रांसफर हो करके हमारे जनपद में आती है
0: जी।
1: जो जिला बाल कल्याण समिति होती है, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक समिति होती है, उनके पास ये सूचना आती है या हमारे जिला प्रोबेशन कार्यालय में आती है। तो हम लोग को सूचना प्राप्त होने के बाद तो सबसे पहले हम लोग थाने संपर्क करते हैं ये त्वरित कार्रवाई के लिए, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जैसे डिस्टेंस होती है, हम लोग तत्काल मतलब रेडी होते हैं और तुरंत उस स्पॉट पे पहुंचते हैं,
0: मिनिमम जितना पॉसिबल टाइम हो
1: पॉसिबल टाइम जितना लग जाए।
0: बिल्कुल, तो बाल विवाह ना हो इसके लिए समाज को जागरूक तो करता ही होगा सरकार।
1: जी हाँ,
0: आप किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं?
1: बाल विवाह ना होने के लिए हम लोग सबसे पहले तो जगह जगह जैसे कैंप लगता है, कैंप के माध्यम से ये टोल फ्री नंबर, भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा जितनी सारी योजनाएं चली हैं, पंपलेट्स हैं, उनके माध्यम से जागरूकता रैली के माध्यम से स्लोगन के माध्यम से विद्यालयों में जाकर के जागरूक करने का अथक प्रयास करते हैं और मंच से ये अपील भी करते हैं कि जितने भी ग्रामीण वासी हैं, जनपद वासी हैं, उनसे ये अनुरोध करते हैं कि अगर आपके निकटतम या रिश्तेदार में या कहीं भी शादी अगर होती है तो तत्काल अपना पर्सनल नंबर भी देके आते हैं कि इस पे भी आप सूचना दीजिए और जिससे कि उस बच्ची को हम लोग न्याय दिला सके।
0: बिल्कुल, मतलब समाज को जागरूक तो किया ही जाता है लेकिन फिर भी बाल विवाह तो कुछ हो जाते हैं
1: जी।
0: तो ऐसी क्या मजबूरी होती है, पेरेंट्स की मजबूरी होती है या जिनका विवाह हो रहा है उन्हीं की कुछ मजबूरी है? जैसे आपके सामने तो सारे केस आते होंगे, जब आप रुकवाते होंगे तो उसके कारण भी मालूम चलते होंगे, तो ऐसे क्या कारण होते हैं, क्या मजबूरी होती है कि बाल विवाह करने को लोग विवश होते हैं?
1: बाल विवाह में सबसे पहले तो हमने देखा शिक्षा की कमी
0: जी।
1: हम लोग यहाँ से कम डिबुलगंज, बीजपुर, पवनी, मचबंधवा, ऐसे ऐसे बहुत सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके हमने देखे हैं जहाँ पे जानकारी का अभाव है, जागरूकता की कमी है, अशिक्षा है, कभी कभी लालच भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन बनता है।
0: अच्छा, लालच कैसे?
1: लालच का मतलब ये है कि आज के आधुनिक युग में आजकल की जो लड़कियां हैं या लड़के हैं वो आधुनिक युग में जीना चाहते हैं
0: जी।
1: और उतना पैसा व आय का स्रोत उनके गार्जियंस के पास, पेरेंट्स के पास ना होने की वजह से वो उनकी जो इच्छा है, जो इतने आधुनिक उपकरण है वो अपने यहाँ उपलब्ध ना करा पाने के कारण अगल बगल पड़ोसी या कहीं इधर उधर के लोग जो भी जिनके पास थोड़ा प्रॉपर्टी अधिक है, जिनके पास थोड़ी जानकारी
0: मतलब
1: है,
0: कोई प्रलोभन दे।
1: हाँ, प्रलोभन दे करके इस चीज को बढ़ावा देते हैं
0: जी। मतलब ऐसे लोग जो आधुनिकता में ज्यादा विश्वास करते हैं, अगर उन्हें प्रलोभन दिया जाता है
1: जी हाँ।
0: और वो उस संसाधनों का उपयोग ना कर रहे हो तो उस प्रलोभन के शिकार हो जाते हैं
1: जी हाँ।
0: अच्छा साधना जी, इस वित्तीय वर्ष में
1: जी।
0: अभी तक आपने कितने बाल विवाह को रुकवाया है?
1: सर अप्रैल 2023, मई और जून में 29
0: अच्छा 29
1: 29 बाल विवाह हमने रोक रखा है
0: जी। तो बाल विवाह जब रुकवा दिए तो क्या इसमें जितनी बाल विवाह हम लोग रुकवाते हैं सब में सजा होती है या कुछ मतलब उसका समाधान और निकाला जाता है?
1: नहीं, सब में सजा नहीं होती है
0: जी।
1: वो देखा जाता है स्पॉट पे ही
0: जी,
1: उसी समय वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है और फिर बच्ची को रेस्क्यू करके बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद फिर वहाँ से उनके आदेश पे, मजिस्ट्रेट के आदेश पे इसको बाल गृह बालिका, अगर बालिका है तो बालिका गृह में और अगर बालक है तो बाल गृह बालक में उसको आवासित करा दिया जाता है। उसके बाद उनकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चेक वेक करने के बाद जो समझ में आता है उसके अनुसार सर कार्रवाई की जाती है।
0: बिल्कुल, मतलब सरकार तो प्रयास कर ही रही है लेकिन समाज की भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी कुप्रथा समाज की भागीदारी के बिना खत्म नहीं की जा सकती है
1: जी।
0: चलते चलते साधना जी, आपका श्रोताओं को कोई संदेश?
1: मैं आकाशवाणी के माध्यम से अपने जनपद वासियों से ये अपील करती हूँ कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध है और अगर कहीं भी आपके अरिशर परिसर में कहीं भी अगर बाल विवाह की सूचना पाई जाती है तो तत्काल आप जिला प्रोबेशन कार्यालय या संबंधित थाना या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में संपर्क कर सूचना दे दें, जिससे कि एक बच्ची को हम लोग एक न्याय दिला सके, सही मार्ग दे सके। सबसे विशेष बात यह है कि हमारे प्रदेश सरकार की एक टोल फ्री नंबर है 1098 चाइल्ड लाइन की नंबर है, इस पे आप कहीं भी अगर बाल विवाह करता हुआ कोई भी पाया जाता है तो आप इसकी सूचना तत्काल दें और बताने वाले का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा।
0: साधना जी, आप हमारे

0: स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं को इस कुप्रथा के बारे में इतनी अच्छी जानकारी से अवगत कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: क्या आप भी चाहते हैं आपका बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े?
3: तो चुनिए अपने क्षेत्र रामगढ़ सोनभद्र के प्रतिष्ठित संगम इंटरमीडिएट कॉलेज की शाखा संगम एकेडमी।
2: यहाँ LKG से 11वीं तक की शिक्षा इंग्लिश मीडियम में अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से दी जाती है।
3: नए सत्र हेतु प्रवेश प्रारंभ, आज ही संपर्क करें संगम एकेडमी रामगढ़ सोनभद्र।
2: ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम, संगम एकेडमी।

0: डेंगू चिकन गुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: तो बोला भैया
3: बता समय
2: देखे अभी हम लोगन संदेश सुन ली है जा और उसे पहले जो हम लोगन जानकारी लेते रही है जा बाल विवाह एक दंडनीय अपराध और ये विषय पर देखा साधना मिश्रा से जो उनकी जिला समन्वयक महिला कल्याण विभाग सोनभद्र के है उनसे सचिन कुमार वर्मा जी के कितना फरिया फरिया के बातचीत भयल है। देखा बातचीत तो बढ़िया भयल है लेकिन बस जरूरत बा हम लोगन के अमल करे
3: अमल करे के
2: और अमल कल ऐसे जरूरत बा भैया जरूरी बा भैया की देखा अगर हम लोगन जब खुद भी आत्मसात करल जाए ना तबे देखा हम चार लोगन के बता सकीला जागरूक कर सकीला और जागरूकता सबसे बड़ी चीज बा भैया की चाहे बाल विवाह के प्रति हो चाहे मानव तस्करी के प्रति हो कोनो भी सामाजिक कुरीति हो ओकरे प्रति अगर जागरूकता बा तो निश्चित तौर पर देखा वो गलत काम ज्यादा समय तक ना टिक सकेला।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो इतना बढ़िया जानकारी के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देवल जाए।
3: तो लेकिन विनोद लाल यादव उनकर संगतिया भैया लोग एक मन मनसान के साथ

0: तो भोला भैया,
1: विनोद लाल यादव उनकर संघतिया भैया कितना बढ़िया मनमन सहन करवाउन देशभक्ति गीत के माध्यम से।
0: बिल्कुल भैया, देखा
1: अभी
0: जे तरह से सीमा पर जमान और वही तरह से अपने खेते के मेड़ पर, चाहे खेती में किसान भैया लोगन का अपन अलग ही महत्व होला।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: अपने किसान भैया लोगन भी देखा अपने खेती में तरह तरह का प्रयोग करत रहेला, एक नया अनुभव उनके साथ जुड़त रहेला और बाकी लोग वो अनुभव से सीख लेते रहेला भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ खेत के मेड़ पर किसान के बात है, आजकल बरसात के मौसम में किसान भाई लोग भी जोन बा थोड़ा थोड़ा के लेकर के जो है तुतु में भी लोग करला, तो
0: कैसन भैया?
1: ऐसे मतलब संदेश बा उनके कि थोड़ा कमी बेसी हुए तो के आपस में बैठ मिल के समझ लो एक जरूरत है, लाठी चटके तो ये अच्छी बात नहीं हो।
0: भैया बिल्कुल बात सही कहल है कि देखा कोनो समस्या का समाधान अगर बैठ, जैसे अपन पंचायती का अपन मंच बा या फिर अपन सामूहिक रूप से बैठ करके कोनो भी सुख दुख हो के बांट लेहल जाला, कोनो भी समस्या बातों के निवारण हो जाला,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: भैया मन मुटाव देखा कोनो विकल्प नहीं है। और हर
1: हाँ
0: हर मन
1: बिल्कुल
0: मिटाव का देखा है कहीं ना कहीं वो गांठ पैदा करेला मन में, एक दूसरा के प्रति द्वेष खड़ा करेला, क्रोध पैदा करेला, तो ऐसा ना होके के चाहिए। तो भैया देखा अपने जन भी माटी बा हम लोगन के, वो अगर ओकरे तरफ हम लोगन ध्यान देते ही तो निश्चित तौर पे हम लोगन के जन भी हम लोगन के सोना चांदी के, मतलब अन्न के रूप में सोना चांदी मिल रहा बा,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: ओपर ज्यादा ध्यान देवे के चाहिए और ये तरह का नकारात्मक सोच से दूर रहे के चाहिए।
1: जहाँ समझ हो बतासा बहन वहीं जन बाकी सब कुछ हो।
0: बिल्कुल
1: अब जैसे आज हम लोग के खेत में खेत के मलाई बहे की स्थिति में हो जाला, एक ही आदमी जन बाकी जल्दी से नहीं विचार कर पाए, बल्कि ऊपरे खाद दवा रासायनिक वगैरह सब डाल करके जबरिया पैदा करे के सोचाला। लेकिन हम लोग के अधिकतम जन बाकी उपयोग कृषि के भूमि जौन है, जीवांश के मात्रा युक्त जौन उपजाऊ मिट्टी है, ओके संरक्षण हम कैसे करी, यह पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है हम लोग
0: बिल्कुल
1: के।
0: भैया, और संरक्षण करे के और अधिक सही उपयोग करे के खातिर सबसे पहले तो भैया हर खेते पर मेड़ होके के चाहिए और हर मेड़ पर पेड़ होके के
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: बिल्कुल। और साथ साथ फसल चक्र भी अगर होए और जैविक खाद के प्रयोग करें और सूक्ष्म सिंचाई के प्रयोग करें, जैसे ड्रिप सिंचाई या तो जो बौछारी सिंचाई स्प्रिंकलर के माध्यम से, तब भी जोन बाकी मिट्टी के कटान नहीं हो पावे।
0: बिल्कुल और सही। एक साथ साथ भैया देखा जौन भी हम लोगन का जैविक खाद बा, जैसे कि प्राकृतिक रूप से जौन पेड़ पौधा का पत्ती गिरल बा,
1: बिल्कुल।
0: ओकर भी देखा हम लोगन जैविक खाद बना सकेला वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से, नाडिप कंपोस्ट के माध्यम से। तो ऐसे का हो कि देखा प्रकृति से मिलल चीज अगर प्रकृति में ही मिल जाए तो
1: बिल्कुल
0: देखा यह एगो कहल जाए कि जीवन चक्र है,
1: हाँ।
0: और जब ये जीवन चक्र ऐसे ही चलत रही तो देखें निश्चित तौर पर जन बापन कृषि योग्य जन भूमि बा वो अनवरत जन बा बनल रही।
1: आज कहीं न कहीं जानवा कि हम लोग ओकर जो क्रम है ओके भूल जाती, जैसे मवेशी पालन बहुत जरूरी है।

0: अब
1: बिल्कुल
0: एमे होला का कि जितना भी फसल अवशेष निकल रहा बा ओके आदमी जुगा के रखे पहले, जेकरे पास जो 10 मोड़ मवेशी हवन,
1: बिल्कुल
0: ताकि वो खाएं। गर्मी के मौसम में अगर सूखल पाकल मकई के डंठल मिल जाता, चाहे गेहूं के डंठल मिल जाता, या तो जन बाकी जिनोरा के डंठल मिल जाता,
1: बिल्कुल
0: सामा के पुआल मिल जाता धान के, तो अगर ओके काट के नहीं खियावत हन तब वो थोड़ा थोड़ा चबा करके ऐसी जन बाकी खा के बिल्कुल साफ कर देता हन, और वो जन बाकी फिर गोबर में परिवर्तन होकर के खेत में डला जाता, और अच्छा खासा जीवांश के मात्रा बढ़ जात बा, ओके जन बाकी लोग फसल अच्छा उत्पादन करे में सक्षम होत रहे।
1: बिल्कुल
0: आज
1: भैया
0: ओकर कहीं न कहीं जन बाकी कमी हो रहा है, जेकरे वजह से जन बाकी आज पराली प्रबंधन के लिए भी सोचे पड़त वालों उनके, कहीं जलावे के बात आवला तो ऊपर जन बाकी नियंत्रण के खातिर जुगत अपनावे के पड़त है। और सबसे महत्वपूर्ण जितना भी कुरीति हो रहा है खेत के
1: प्रति
0: ऊपर प्रति, तो ओके मृदा के ही क्षरण हो रहा है, और मृदा क्षरण मृदा में कौन कौन पोषक तत्व की कमी है एकर तब जानकारी हो पाई जब हम लोग मृदा परीक्षण करें,
1: जांच करवाई ला बिल्कुल। और देखे जोन कह रहे अपन विशेषज्ञ लोग बतावल कि माटी के जोन 6 इंच परत होला भैया,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उहे देखा उपजाऊ होला, और ओही के हम लोगन के संरक्षण बचावे का खातिन के जौन भी जुगत सही तरीका अपनावे के जरूरत बा ओके बहुत जरूरी बा, जैसन की जैविक खेती करल जाए और प्राकृतिक, हाँ बिल्कुल प्राकृतिक जोन भी अपन तरीका बा खाद के माध्यम से ओमे खेते में माटी में पहुंचे समय समय पर, फसल चक्र अपनावल जाए। ऐसे का हुई कि भैया देखा जब हम लोग माटी में होला का कि धान गेहूं खाली होते रहला, ऐसे माटी के जो उर्वरा शक्ति होला भैया देखा वो धीरे धीरे खत्म होते रहे।
0: आप शुरू में कहले कि जो बाकी पेड़ लगावे के बाद,
1: बिल्कुल
0: तो पेड़ अगर जो की रही है अपने खेत के मेड़ पर,
1: तो माटी
0: ओकर पतई जोन बाकी झड़ के गिरी नीचे,
1: बिल्कुल
0: और वो खेत में मिल जाये और जोन बाकी सड़ करके जीवांश की मात्रा खुदे बढ़ाई,
1: बिल्कुल। और ओकरे साथ साथ पेड़ लगोला से भैया जो पेड़ की जो जड़ होला भैया वो देखा माटी के कस के पकड़ के रखे रहेला, और जब बरसात होला तो माटी का कटान नहीं हो पावे, और माटी की जो मलाई की असली बात भइल जो 6 इंच की बात होला माटी का, तो देखा ओके जब बचा के रखी तो निश्चित तौर पे माटी का उर्वरा हमेशा बनल रही। लेकिन समय समय पर हम लोगन के जब भी खेती करनी तो कम से कम 3 साल पर अपने माटी के जांच भी अवश्य करवा लेवल जाए, ताकि अपन कृषि के खातिर के जोन भी हम अनाज लगावत थी साग सब्जी लगावत थी वो हमेशा हमके अच्छा उत्पादन दे सके।
0: और लगभग जितने ऊपर पेड़ जाला फैलाला उतने जड़ भी फैलाला,
1: बिल्कुल,
0: तो जितने नीचे के पानी है ओके भी शोषित करके ऊपर लाने काम करला, ऐसे जन बाकी नमी भी बनल
1: भैया पेड़ के तो जौन कितना गुण गिनावल जाए कि अंगुरी कम पड़ जाए गिनत गिनत, पेड़ के तो इतना गुण बा भैया, बस ये कहेगा बा कि देखे पेड़ गर्मी जाड़ा मौसम जोन भी बरसात बा समय समय पर बिल्कुल बरखा लियावे ने, और बरखा ते देखा अपन कृषि आधारित अपन बहुत ऐसा किसान भैया बहन लोगन हो जे की वर्षा आधारित ही खेती करला, तो भैया देखा जब सब कुछ पेड़ से बात तो काहे नहीं हम लोगन पेड़ लगाओ, पेड़ भी ऐसा लगावल जाए बहुउद्देशीय पौधा लगावल जाए, जैसे चाहे इमारती लकड़ी बा फलदार पौधा बा कि एक पंथ और कई काज हो जाए।
0: अच्छा यो बात नहीं है कि पेड़ के नीचे जोन बाकी कोई फसल उत्पादन नहीं हो पा बा, अभी अगर अदरक आप लगा दें
1: अदरक बा हल्दी बा सूरन बा
0: तो एक जोन बाकी नीचे लगा दें तो पर्याप्त मात्रा में वो पैदा हो जाए,
1: बिल्कुल,
0: और जोन पेड़ से फल मिली तो मिले ही, अगर फर्नीचर खातिर आदमी रोपड़ के लिए बात वो मिली,
1: बिल्कुल,
0: और साथ साथ जोन पत्ती झड़ करके खाद बनी वो मिलबे करी,
1: बिल्कुल, मतलब हर तरीके से हम लोगों के सकारात्मक बा हर तरीके से लाभकारी बा भैया। और जैसे की अदरक के बात आप कहला जो अदरक और अरहर का सह फसली खेती अपन रमेश कुमार भैया से बतियौले हुए बोला भैया, तो हम तो कहते हैं ना कि आप ही बतिया करके अपने जानकारी मत गठिया में अपने
0: सार्वजनिक कर,
1: हाँ सार्वजनिक करें ताकि लोग भी उसे कुछ सीख लें, सुनल जाए आपकी जानकारी जोन बा।
0: किसान भाइयों बहनों वैसे हम लोग जीविकोपार्जन के लिए तरह तरह की युक्ति अपनाते हैं, फसल उत्पादन करते हैं, दलहनी फसल तिलहनी फसल और उसके साथ जो है कि जो खाद्य पदार्थ हैं खाने के लिए गेहूं या हो गया धान हो गया, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो औषधीय गुण से भरपूर जो कुछ फसलें हैं उसका उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमाने की युक्ति भी हम लोग अपनाते हैं। साथ साथ साग सब्जी भी बहुत बृहद रूप में किसान भाई लोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फसल हैं जहाँ वृक्ष लगे हों बड़े बड़े पेड़ हों उसके नीचे जो अन्य फसल उत्पादित नहीं हो पाते हैं जिसमें हरित लवण की आवश्यकता होती है, तो वैसे में जो छाया में फसल उत्पादन होते हैं वो कुछ ऐसे हैं कि पेड़ के भी हम फायदा ले लें और उनके छाया का भी फायदा ले लें, ऐसे ही फसल उत्पादन जैसे अदरक हो गया।

0: हल्दी हो गया, इसका भी हम लोग जो है कि यदि करें तो बहुत अच्छा मुनाफा हो जाती है। आज इन्हीं विषयों पे बातचीत करने के लिए सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी ब्लॉक के घ्यूही में हैं और यहाँ हमारी मुलाकात रमेश कुमार जी से हो रही है। आप विभिन्न प्रकार के फसल से लगायत मसालों के भी खेती करते हैं और औषधि गुण से भरपूर जो अदरक की खेती है या हल्दी की खेती है, तमाम जो मूल होते हैं वो इसे खेती करते हैं। तो रमेश कुमार जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: इसमें जो हम लोग अदरक की खेती की बात करते हैं, अधिकतर गर्मी के मौसम में लोग बो देता है
1: जी।
0: और इस बार के पानी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी भी अदरक की रोपाई की जा सकती है।
1: हाँ,
0: तो कैसा है अदरक की खेती करने, क्या अनुभव है आप?
1: अदरक की खेती के बुआई का एकदम लास्ट समय चल रहा है। अदरक की खेती जून में खेत में लगा देना चाहिए।
0: हम्म।
1: जितने गर्मी मौसम में गर्मी रहेगी और सिंचाई किए रहेंगे तो उस समय पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा से चलता है, अंकुरण अच्छा होता है।
0: हम्म।
1: तो अगर अभी भी समय है,
0: जैसे जुलाई में भी,
1: जुलाई में भी अभी मौसम साफ है, तो ऐसे दशा में अभी भी लगाया जा सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें तो बताते हैं लोग कि छाये में भी लगा सकते हैं इसको।
1: जी जी,
0: जो छहल कहते हैं कि फसल गेहूं बो दो तो छहल मार देगा, अरहर तिली जो भी बोइएगा छहल मार देगा, जहाँ पेड़ पौधे हैं
1: जी।
0: क्या अदरक ऐसे इसमें भी उत्पादित हो कर सकते हैं उत्पादन?
1: अदरक ऐसी फसल है जिसमें अंतरास्त्र फसलें की जा सकती है। जैसे कोई बाग है वो जहाँ पे कुछ छाए हैं वहाँ पे दूसरी फसल नहीं उतना ग्रोथ कर पाएगी, लेकिन अदरक की फसल और सूरन की फसल,
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: और हल्दी, ये तीन फसलें ऐसे हैं जो अंतरास्त्र में बाग बगीचे, पपीते की फसल लगी है उसके नीचे, यहाँ तक कि अरहर की फसल लगी है उसके बीच में, ये आसानी से उत्पादन दे देगी। और जो पौधे से मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन अदरक की खेती करके भी लाभ लिया जा सकता है। अदरक की खेती में सबसे है कि खेत की तैयारी।
0: हाँ बिल्कुल,
1: खेत की तैयारी, पहले खेत का ऐसा खेत का चुनाव करें कहाँ, जहाँ की, जहाँ उस खेत में बरसात में पानी निकल जाए, पानी न रुके, ऐसे खेत का चुनाव करना है। मिट्टी हल्की होनी चाहिए, बहुत भारी मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए
0: कि एक पानी बरसे मजबूत हो जाए,
1: मजबूत हो जाए ऐसा नहीं। और खेत की तैयारी करते समय खेत में बर्मी कंपोस्ट या नाडेप कंपोस्ट, अब कुछ नहीं होगा तो सड़ी गोबर की खाद जो भी है उस खेत में मिला करके खेत की जुताई करके, पलेवा करके जुताई कर दे। इसके बाद जब खेत तैयार हो जाए तो उसमें मेड़ बना करके, आलू की फसल जैसे लगाई जाती है, बोई जाती है, उसी तरह से मेड़ बना करके अदरक की फसल लगाए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो उससे मतलब अच्छा बैठने की संभावना होता है,
1: जमाव भी अच्छा होता है और जो कंद बैठता है वो कंद भी अच्छा उसमें ग्रोथ करता है।
0: तो ये पानी कैसा इसमें चाहिए?
1: पानी इसमें जैसे ये तो 8-9 महीने की फसल है और ये इसका जो लगाने का समय है जून और जुलाई, इसके बाद बरसात का समय आ जाता है, तो बरसात में सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, ना के बराबर
0: जी।
1: जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है उस समय, और बीच में तो बरसात होते रहती है।
0: बिल्कुल, आप शुरुआत में ही बता दिए कि जो है कि इसमें पानी की निकास होनी चाहिए।
1: हाँ।
0: अर्थात बहुत पानी इसमें जमाव नहीं चाहिए, नहीं उसमें आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता है
1: जी।
0: और इसमें क्या देख रेख करना पड़ता है?
1: देख रेख में खेत तैयारी होने के बाद बीज का चयन, बीज रोग मुक्त हो
0: जी,
1: बीज लगाने से पहले बीज शोधन, फफूंदी नाशक से बीज शोधन कर लें
0: जी,
1: कि बाद में जड़ गलन या पौधे, अदरक में सबसे बड़ी समस्या होती है कि पौधे बरसात में गल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी बीमारी से बचने के लिए शुरुआत में ही बीज का शोधन करके तब उसकी बुआई करें।
0: बीज शोधन कैसे करें?
1: बीज शोधन के लिए कार्बेंडाजिम बाबस्टीन से पानी में घोल करके थोड़ी देर उसमें डुबा करके रख दें।
0: अच्छा,
1: इसके बाद निकाल करके वही तुरंत रोपाई कर दें।
0: अच्छा अच्छा, अच्छा।
1: तो बीज शोधन हो जाएगा तो उससे पौधे की बीमारी नहीं लगेगी।
0: हाँ, जो पौध में लगने वाली होगी, तो ये चीज हो गई। तो बीमारी मन लगेगी ही नहीं, फिर बाद में उसका करना कोई मतलब ही नहीं है
1: जी जी।
0: तो जिस जमाव के बाद

0: जो है कि जो बढ़वार होने लगता है तो उस समय कोई बीमारी नहीं लगती है?
1: बीमारी लगती है तो उसका भी देख रेख, उसके बाद भी उसमें कीटनाशक का कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि कंद की फसल है, फल पत्ती ऊपर केवल पत्तियाँ रहती हैं, पत्तियाँ पर अगर कीड़े हल्का बहुत थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, इसके अलावा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होते, वही केवल फफूंद की वजह से जड़ गलन उसमें है, उसी की वजह से तो फिर से अगर समस्या आ रही है तो फफूंदी नाशक, कोई भी फफूंदी नाशक से तो छिड़काव कर दें तो राहत हो जाती है।
0: इसमें कितना दिन में निकलने लगेगा फिर?
1: अदरक की फसल तो 9-10 महीने में तैयार होती है, लेकिन अदरक में मेन है कि जैसे अब लगा दिए तो उसके अदरक को ढकना है, मल्चिंग।
0: अच्छा,
1: मल्चिंग सबसे पहले ध्यान रहे कि मल्चिंग खरपतवार ना हो।
0: हाँ, ये बात हो गई।
1: तो खरपतवार के लिए अब पहले तो परास के पति था, पुआल उतना नहीं था, लेकिन अब परास की संख्या कम होते जा रही है और पुआल पर्याप्त मात्रा में, तो ऐसी दशा में लगाने के बाद पहली सिंचाई के बाद जब पैर सहने लायक हो तो उसमें पुआल से मल्चिंग कर दें तो उससे खरपतवार भी नहीं आएगी, मिट्टी भी सख्त नहीं होगी और सिंचाई की भी आवश्यकता कम से कम पड़ेगी।
0: किसान भाई लोग के पास तो भाई पुआल है ही है।
1: जी जी।
0: और उससे कई चीजें होंगे, कुछ तो जो है कि उसमें खाद का भी निर्माण होगा, हवा बयार भी आते रहेगा।
1: जी। और अदरक जब लगा दिए और जब मल्चिंग कर दिए तो मल्चिंग के बाद उसमें दो दो दाने एक एक मीटर की दूरी पर अरहर की पौधे लगा दीजिए।
0: अच्छा।
1: जो पिछले साल हमने किया था 10 बिस्वा में 2 क्विंटल अरहर बोनस के रूप में प्राप्त हो गया।
0: क्या बात, मतलब अदरक
1: और
0: तो...
1: अदरक की फसल भी प्राप्त हुई, अदरक का उत्पादन हुआ, लेकिन उसके अतिरिक्त उसी समय में उतना ही खाद बीज में उतना ही देख रेख में केवल अरहर की रोपाई कर दिए, मल्चिंग के बाद अरहर की रोपाई कर दी, तो अरहर से भी उत्पादन मिला और अदरक से तो मिला ही। और जो कहते हैं कि छाया में होता है तो अरहर ऊपर हो गया, तो उसको छाया भी मिल गया, पौधा भी कोई बीमारी नहीं अदरक पर आया। अरहर जो भी आता है अरहर पर केवल कीटनाशक का फूल के समय उसमें कीड़े या लगते थे उसी पर छिड़काव कर दिए, दोनों लग काम हो जा रहा है।
0: मल्चिंग से क्या फायदा होता है?
1: मल्चिंग से खरपतवार नहीं उगते, मिट्टी जैसे बरसात हुई तो मिट्टी सख्त हो जाएगी, बैठ जाएगी। और जब उसके पुआल रहेगा, मल्चिंग दिया करे रखेंगे तो मिट्टी सख्त नहीं होगी, अदरक का ग्रोथ और उसके जड़ के विकास अच्छा होगा।
0: मैंने सीधे जो पानी पड़ करके जो मजबूत हो जाता है मिट्टी, वो सीधे उस पर पुआल पर पानी पड़ेगा और केवल नमी उसमें नमी अंदर जाएगा और साथ साथ जो है कि खरपतवार नहीं उगेगा, पहली बात
1: जी।
0: और दूसरी बात नमी भी बची,
1: नमी भी बची रहेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। इसमें फिर कुड़ाई वगैरह में क्या सावधानी बरतते हैं?
1: अगर समय मिल गया बरसात में, मौसम खाली रहा तो रोपाई के 2-3 में मल्चिंग किया हुआ रहेगा, वो पुआल सड़ जाएगा। इसके बाद अगर समय अच्छा रहा, गुड़ाई करने का लायक हुआ तो गुड़ाई कर सकते हैं, नहीं तो केवल घास जो कहीं जही थोड़ा बहुत हो वो तो घास के भी निराई कर दिए,
0: निराई कर देंगे, ऐसे उखाड़ देंगे।
1: इसके बाद मेड़ में है वो कोई दिक्कत नहीं होता है, पहले क्योंकि पहले से ही मेड़ में है तो मिट्टी अगर चढ़ा दिए तो और अच्छी बात है, नहीं चढ़ा पाए तो भी उत्पादन होगा, अच्छा होगा।
0: तो ये कितने क्षेत्रफल में उत्पादन करते हैं इसका?
1: हम 1 बीघे में अदरक की खेती करते हैं।
0: कितना लगभग बीज लग जाता है इसमें?
1: बीज प्रति बिस्वा 20 से 25 किलो।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ
0: तो वही हो गया मान लीजिए, इसके बाद उत्पादन लगभग?
1: उत्पादन लगभग 25 से 30 क्विंटल बीघे में।
0: बीघे में
1: हाँ मिल जाती है।
0: बिल्कुल। तो ये बिक्री तो अच्छा होता होगा इसका?
1: बिक्री रेट इसका इस बार अभी का जो वर्तमान है 100 से 120 रुपए बिक जा रही है। और जो सीजन में था तो 50 रुपए
0: अच्छा
1: अदरक बिक गया।
0: मतलब
1: और अदरक का रेट 50 रुपए से नीचे कभी यहाँ पे कम नहीं मिलता है, अदरक बाजार भाव उतार चढ़ाव में 50 से ऊपर कभी 100, 150, 200 मतलब बिक जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब अदरक की उपयोगिता तो बहुत है, चाहे तो जो बाकी चाय से लेकर के और साग सब्जी जो भी स्वादिष्ट बनाना हो, सलाद बनाना हो,
1: जी
0: सब में। और सबसे महत्वपूर्ण जो ठंड के मौसम में चाहे कभी भी सर्दी जुखाम होता है
1: जी,
0: उसमें भी सलाह दी जाती है कि अदरक का सेवन करें, अकस्मात कभी खांसी आने लगे
1: तो
0: भी अगर अदरक चूसें तो जो है खांसी भी ठीक कर देता है।
1: जी।
0: तो निश्चित रूप से बहुत ही इसका अच्छा उपयोग भी है और हमको तो लगता है कि अन्य फसल उत्पादन साग सब्जी उत्पादन से इसमें आसानी भी है।
1: बिल्कुल, अन्य साग सब्जी की खेती करेंगे तो मार्केट, हर मार्केट जाएंगे तो पैसा मिलेगा
0: जी।
1: लेकिन जैसे गोभी की फसल है, मूली की फसल है, तो फसल तैयार हो गई तो मार्केट रेट मिले या न मिले आपको बेचना,
0: बेचना है, बेचना
1: लेकिन
0: है।
1: अदरक की फसल है उसको हम रोक सकते हैं, दो महीने बाद जब मंडी आएगी तब बेच
0: तब
1: लेंगे,
0: बिल्कुल अच्छा मुनाफा ले लेंगे,
1: अच्छा मुनाफा मिल जाएगा।
0: तो चूंकि रेडियो के माध्यम से बहुत किसान भाई लोग सुन रहे हैं, उनका भी मन बन रहा होगा कि इस बार खेती करें अदरक के, तो आप बताएं कि खाद भी कुछ कम ही लगता है अन्य फसलों के सापेक्ष?
1: हाँ, अन्य फसलों के सापेक्ष कम खाद लगेगा।
0: तो चलते चलाते का कुछ और कहना चाहेंगे लोगों को कि इसका लाभ ले सकें लोग?
1: चलते चलाते ये कहेंगे कि जहाँ पे किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, छाए हैं, ऐसे जगह पर दो तीन फसलें अपने खाने के लिए, हल्दी का हो गया, अदरक का हो गया, सूरन की खेती
0: जी,
1: अपने खाने के लिए और बेचने के लिए भी कर सकते हैं, उससे अच्छा लाभ भी मिलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाई लोग देखें, ये दुधि बल्ला के घ्यूही से रमेश कुमार जी थे, और आप बहुत ही बृहद रूप में विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन करने के अनुभव रखते हैं, करते भी हैं, लेकिन आज जो हम लोग औषधि फसल अदरक पर बातचीत किए, इसको भी आप बहुत ही बृहद रूप में करते हैं, अच्छा मुनाफा कमाते हैं, इतने अच्छी जानकारी देने के लिए और शायद हम लोग के लिए भी सीख दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बोला भैया।
0: हाँ बता सब है।
2: देखा जो आप बातचीत कैलन है रमेश कुमार भैया से अदरक और अरहर का सब फसली खेती के बारे में, निश्चित तौर पे देखा इतना अपन फायदा के जानत हूँ और करत हूँ और कमात भी हवन। बाकी जोन भी अपन किसान भैया लोगन हुआ, चाहे बहन लोगन है, चाहे जे नौधा किसान भैया बहन लोगन, उनके खातिर एक बड़ा ही अच्छा मार्गदर्शक के रूप में जानकारी मिलल, उनके सीख मिलल, तो जरूर एक अपनावे और माटी के जो उर्वरता शक्ति बा, उर्वरता जो बाय ओकर ताकत बा, ओके बरकरार रखे में ये देखा अहम भूमिका निभावेला। तो बहुत बहुत धन्यवाद बा। और देखे जब अच्छा पैदावार होला, अच्छा उत्पादन होला, तो निश्चित तौर पर सोचल आदमी की घर के खैला से बचल बा, तो चला तनी बाजार भेज दिया जाए, तो भाई अच्छा भाव मिले तो भाई चेहरा मोरा पे खुशहाली अलग ही हो जाएगा।
0: दूधी के पाती भी आई बाजार भाव
2: के कर भैया,
0: ये दूधी मंडी के कुंतल में है, अजय कुशवाहा भैया भेजले हुआ,
2: तो जान लिया जाए वहाँ
0: के भाव के बात आज चलत रहल।
2: बिल्कुल,
0: रमेश जी के कहना रहल की जो बाकी कम से कम 50 से कम तो नहीं है खला कर भाव।
2: अरे भैया अदरक तो बारह महीना एकर चानी चानी भाव मिले लगा।
0: आज जौन बा की दूधी मंडी में 10,000 से 11,000 रुपया कुंतल अदरक बिकल, और जौन बा की वही आलू लाल वाला 1300 से 1400 रुपया कुंतल, सफेद आलू 1100 से 1200 रुपया, और गोल बैगन 2000 से 2200 रुपया कुंतल, और लंबा वाला बैगन 1200 से 1400 रुपया कुंतल बिकल।
2: अच्छा,
0: लौकी 1000 से 1200, कोहड़ा 700 से 800, और नेनुआ रहल 1500 से 1600 रुपया कुंतल, करेला 3000 से 3500, वही भिंडी रहल 700 से 1000 रुपया कुंतल, मिर्च हरा 4000 से 5000 रुपया कुंतल, और टमाटर 2500 से 2700 रुपया कुंतल। मूली रहल आज दूधी मंडी में 2000 से 2500, वही धनिया रहल 6000 से 700 रुपया कुंतल, पेक्ची 1800 से 2200 रुपया कुंतल, और खेक्सा 3500 से 4000 रुपया कुंतल।
2: अच्छा,
0: फूल गोभी 5000 से 6000 रुपया कुंतल, और पत्ता गोभी 2500 से 3000, चुकंदर रहल 1500 से 1600 रुपया कुंतल, और हरा बैगन 1500 से 1600
2: हरका बैगन कलौजी वाला।
0: हाँ हाँ, और लहसुन रहल 10000 से 12000 रुपया कुंतल, प्याज 3000 से 3200 रुपया, और शिमला मिर्च रहल 6000 से 7000 रुपया कुंतल, जमुना की कलौजी भी आप आज जनबा की इस्तेमाल के लिए रहें, और मशरूम 35 से 40 रुपया प्रति पैकेट 200 ग्राम।
2: अच्छा,
0: और चुकंदर रहल 2800 से 3000 रुपया कुंतल, बोधी 2500 से 3000 रुपया कुंतल, और कटहल रहल 800 से 1000 रुपया कुंतल, वहीं पपीता कच्चा 800 से 1000 रुपया कुंतल, पक्का पपीता 1800 से 2000 रुपया कुंतल, और पक्का आम 2500 से 3000 रुपया कुंतल, और नींबू रहल 150 से 200 रुपया प्रति सैकड़ा। ई रहल दूधी मंडी के बाजार भाव कुंतल में। अजय कुशवाहा भैया भेज रहे हैं, उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद बा।
2: बिल्कुल धन्यवाद, तो हम लोगन देबे कैली, लेकिन सोना पे सुहागा के तौर पे हम तक आपकी विनोद लाल यादव उनके संगतिया लोगन के गावल एगो विकास गीत के माध्यम से धन्यवाद हो जाओ
0: सुनाओ।
2: बिल्कुल।

0: तो भोला भैया,
1: हाँ बता सब बहन।
0: देखा भाई, जवान हो चाहे किसान हो, सबके जगावे और जागे की जरूरत है भैया। कि भैया देखा, पेड़ पालो के बात तो जौन हम लोग शुरू में भी कर ली हजा कि पेड़ का कितना महत्व बा, कितना ओकर जरूरत बा हम लोगन के जीवन में।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ओके, महत्व हम लोगन के देवल जरूरी बा, और लोगन के भी जागरूक कैल जरूरी बा भैया।
1: आज
0: और
1: पेड़
0: एकरे
1: पालो पर
0: साथ
1: भी संकट आयल हो बता सा बहन, जो चूंकि जंगल में पेड़ होला, अब जनसंख्या वृद्धि हो रहा हो, और वही के चक्कर में कि हम थोड़ा आओ खेत बढ़ाने करके जोन बाकी वो जंगल के भी कटान लोग कर रहा था,
0: बिल्कुल। तो
1: जो
0: देखिए,
1: सीमित जन
0: जनसंख्या
1: हाँ सीमित जो
0: जोन भी,
1: संसाधन हो
0: बिल्कुल
1: उनमें चूंकि जमीन एक निर्धारित हो कितने हो
0: भैया, उतर अबड़ बा नहीं कि बढ़ी हो।
1: हाँ, अब वो कर घर परिवार से जोन

0: बाकी बेटा होयलक नाती होयलक करके संख्या बढ़ल जाता
1: बढ़त जाता
0: तो यही के वजह से जन बाकी सीमित संसाधन में अधिक दबाव पड़ रहा है।
1: चाहे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, जरूरत का चीज है, सब चीज देखा कहीं ना कहीं वो अवरोध पैदा करे लागे ला, बढ़त जनसंख्या जब हो लागी तो भैया तो ये पर भी जागरूक होकर बहुत जरूरी बा भैया कि हम दू और हमार एक वाला ही जन बाकी नियम अपन अपनावल जाए। तो भैया यही मंशा के साथ कि अपन पंच भैया लोगन आज के जानकारी और मन फिर से बिल्कुल आनंदित और सीख ले हैं, तो का कहतु चलल जाए
0: चल जाए, फिर अगले दिन नया जानकारी के साथ मुलाकात हो सब पंचन के।
1: राम राम, राम भैया।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: क्या आप भी चाहते हैं आपका बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े?
1: तो चुनिए अपने क्षेत्र रामगढ़ सोनभद्र के प्रतिष्ठित संगम इंटरमीडिएट कॉलेज की शाखा संगम एकेडमी।
0: यहाँ LKG से 11वीं तक की शिक्षा इंग्लिश मीडियम में अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से दी जाती है।
1: नए सत्र हेतु प्रवेश प्रारंभ, आज ही संपर्क करें संगम एकेडमी रामगढ़ सोनभद्र।
0: ज्ञान संस्कार और सफलता का संगम, संगम एकेडमी।

अभी आप सुन रहे थे पद्मावत के इस गीत को नीति मोहन की आवाज में। आकाशवाणी उपरा से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

अभी आप सुन रहे थे फलक शब्बीर के लिखे इस गीत को आयुष्मान खुराना की आवाज़ में। संगीत माइकल माइकलरी का था और फिल्म का नाम था नौटंकीसाला। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

102.7 एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:15 हो रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। उससे पहले खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार बॉबी पत्नी इंद्रेश कुमार निवासी ग्राम पटना पोस्ट सिलथम थाना रामपुर बरकोनिया जनपद सोनभद्र जो दिनांक 11 जून 2026 से लापता हैं। हुलिया इस प्रकार है। उम्र 22 वर्ष, लंबाई 150 सेंटीमीटर, गेहुआ रंग, गोल चेहरा, एक हरा बदन, पहनावा नीला सूट सलवार तथा पैर में चप्पल। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में यानी शाम 7:31 पर हमारे लखनऊ केंद्र से आज आप सुनेंगे कानून की बात। शाम 7:45 पर कार्यक्रम होगा सबरस का और रात्रि 8:30 पर गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। पर फिल्म संगीत और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से आज आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात्रि 10:00 कार्यक्रम होगा रसधारा का और रात्रि 10:30 पर फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी बात। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है। 102.7 एफएम पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। अब से कुछ देर में यानी शाम 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है जनपद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से आज कई साधु संतों ने की मुलाकात। महंत राजकुमार दास ने कहा, आगामी दिनों में ट्रस्ट में होंगे बड़े परिवर्तन। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में प्रदेश के 12 लाख शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1,10,00,000 विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए 1,200 रुपए प्रति विद्यार्थी के हिसाब से उनके अभिभावकों के खाते में करीब 1,320 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण किया। इस अवसर पर 10,00,000 शिक्षकों और संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा समाज की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU कर हर शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इस योजना को लागू किया गया है।
1: हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें अस्थायी शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है उन्हें 10,00,000 का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा। यह एक नई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है।
0: मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आभार जताते हुए जौनपुर के शिक्षक राजेश पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए समस्त शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना की जो शुरुआत की है, यह बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके लिए पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यह योजना लाखों लाख शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी समस्याओं और उनकी चिंताओं का समाधान करेगा।
0: वाराणसी के बाद मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर में पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया और विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। श्री योगी ने विंध्य मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रस्ताव 15 जुलाई तक शासन को भेज दिए जाएं और 15 अगस्त तक स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की लागत वाली 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में अब निवेश आ रहा है, जिससे जनपद के विकास को गति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट को इको टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम शुरू किया गया है। श्री योगी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश भी सहभागी बन रहा है।
3: अब निवेश यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। 4 लेन की सड़क

0: के एक सुंदर चित्रकूट हम सबके सामने है और वह आज हम सबको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज तो यहाँ पे हम लोग एक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहाँ पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है।
1: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने आज तीन आरोपियों अनुकल मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पहुंची। इससे पहले रिमांड पर लिए गए आरोपी अविनाश शुक्ल से पूछताछ में मिली जानकारियों के आधार पर जांच टीम तीनों आरोपियों से बयानों का मिलान करवा रही है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से आज कई साधु संतों ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद महंत राजकुमार दास ने कहा कि आगामी दिनों में ट्रस्ट में बड़े परिवर्तन होंगे, जिसकी जानकारी जल्द ही ट्रस्ट द्वारा साझा की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि 450 मीटर लंबा यह अंडरपास देश की अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जहां ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आगरा के पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के लखनऊ स्थित आवास पर छापेमारी की। लखनऊ में उनके आवास पर 2 दिन चली छापेमारी में लगभग 1,62,00,000 रुपए कैश, करीब 20 करोड़ रुपए के जेवरात और 13 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात बरामद हुए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 1,246 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने छात्रों से अपने ज्ञान, प्रतिभा और क्षमता का इस्तेमाल विकसित भारत के निर्माण के लिए करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाषा विश्वविद्यालय में अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी कई भाषाओं के कोर्स की शुरुआत होने जा रही है, जो यहां के विद्यार्थियों को वैश्विक अवसरों से जोड़ेंगे।
2: ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित भाषाओं के साथ साथ अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। यह पहल विद्यार्थियों के लिए विश्व के ज्ञान द्वार खोलने के साथ साथ उन्हें वैश्विक अवसरों से भी जोड़ेगी। इसके साथ ही अवधि भाषा में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रयास विशेष रूप से अभिनंदनीय है।
1: प्रदेश में 12 जुलाई को होने वाले पौधरोपण महाभियान को लेकर वन विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए प्रदेश की 2600 से अधिक नर्सरियों में 57,62,00,000 पौधे तैयार किए गए हैं। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश के वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।
3: पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही और इस बार 35 करोड़ जब हमारे यहाँ पेड़ लग जाएंगे, जब से 9 साल में हम लोग 275 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड, 35 करोड़ का इस बार का लक्ष्य है, उससे ज्यादा ही लगते हैं जितना लक्ष्य होता है, तो यह हम लगाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वन आच्छादन का जो क्षेत्र है वो घटा नहीं, वो बढ़ा है।
1: राजधानी लखनऊ समेत कई अन्य जनपदों में आज हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। पीलीभीत में कल रात से हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है जनपद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से आज कई साधु संतों ने की मुलाकात। महंत राजकुमार दास ने कहा, आगामी दिनों में ट्रस्ट में होंगे बड़े परिवर्तन। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: मीडियम वेव 46.1 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:31 हो गए हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं आपराधिक कानूनों में बदलाव इस विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे हैं एडवोकेट देवेश गोस्वामी और भेंटकर्ता हैं अतिश कुमार श्रीवास्तव।
2: श्रोताओं नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, आपने पहले सुना होगा आईपीसी इंडियन पीनल कोड, जिसको बदला गया है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। इसी तरह एक सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीडर कोड था, अब जिसको अप कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसी पर मैं आज बात करने वाला हूँ। मेरे साथ हैं देवेश गोस्वामी, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में। देवेश, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
3: धन्यवाद सर।
2: आपराधिक कानूनों में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि आईपीसी से बीएनएस हुआ या सीआरपीसी से बीएनएसएस हुआ, तो ये बदलाव क्यों और कैसे हुआ? देवेश
3: जी, चूंकि इंडियन पिनाल कोड 1860 का था और सीआरपीसी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो 1973 का, यह 1800 के दशकों का बनाया हुआ कानून है। चूंकि जो कानून ये बनाए गए थे, यह ब्रिटिश सरकार जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए बनाई थी। वो कहीं ना कहीं नागरिकों को सजा देने के लिए, पनिशमेंट सेंट्रिक हुआ करता था इससे जो है। लेकिन जो ये नया हमारा बीएनएस कानून बन के आया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस बनकर आया है, यह कहीं ना कहीं पनिशमेंट सेंट्रिक से हट करके जस्टिस सेंट्रिक पर ध्यान दिया गया है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, तो जैसे अब हमारा जो बीएनएसएस में प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई भी कोई व्यक्ति अपराध करता है, अपराध करने के अगर उसका चार्जशीट पुलिस 90 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट को दे देती है, तो मजिस्ट्रेट पहली सुनवाई, जो कोर्ट की पहली सुनवाई होती है, सुनवाई के 60 दिन के अंदर अंदर ही आरोप तय कर लेगा। आरोप तय करने के बाद बहस समाप्त होने के या तो तुरंत या 45 डेज के अंदर अंदर ही उस पर निर्णय सुना देगी। तो यह पुराना जो हमारा कानून था, जो तारीख पे तारीख वाला सिस्टम था, उस पर यह बहुत बड़ा प्रहार है।
2: फिर और क्या बदलाव बता सकते हैं आप हमारे श्रोताओं?
3: इसमें अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बदलाव हुआ है पनिशमेंट को लेकर के। जो हमारी सजाएं दी जाती थी आईपीसी में, सजाएं 5 प्रकार की दी जाती थी, यानी कि आपको डेथ सेंटेंसेस, मृत्यु दंडादेश, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता था, और साधारण कारावास, कठोर कारावास, और जो है आपको फाइन की सजाएं दी जाती थी फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन अब एक नया जो सेक्शन नंबर 4 है बीएनएस का, उसमें जोड़ा गया है आपका कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए आप छोटा मोटा कोई अपराध करते हैं, तो आपको तुरंत 1 महीना या 4 महीना, 2 महीने सजा नहीं दी जा सकता।
2: देवेश, आपने बताया कि पनिशमेंट 5 तरह के हैं, 5 तरह की सजाएं दी जाती थी आईपीसी में।
3: जी सर,
2: तो इसमें नया क्या बदलाव आया है?
3: जी, नया बदलाव जो छठा पनिशमेंट जोड़ा गया है, सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा तब आपको उसका सजा दिया जाएगा जैसे आप छोटे मोटे अपराध करते हैं। छोटे मोटे अपराध लाइक आप नशा करके रास्ते पब्लिक में, आप पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हो, या फिर आप 5

0: मूल्य की कोई भी चोरी कर दो, यानी 5,000 से नीचे का जो उसका वैल्यू है मूल्य का, वो 5,000 से नीचे का, आप छोटी मोटी चोरी करते हो या आप किसी का डिफामेशन कर देते हो, तो वहां पे आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस या फिर कोई साधारण कारावास वो नहीं दे करके आपको कम्युनिटी सर्विस। अब कम्युनिटी सर्विस है क्या, जैसे कि आपको जेल में, आप अगर जेल में है तो उसमें सेवा करने, किसी को खाना खिलाने के लिए, एनजीओ जो होती है एनजीओ में आपको सेवा करने के लिए, आपको सड़क पर क्लीनिंग करने के लिए लगा दिया जाएगा, मतलब
1: अच्छा,
0: सामाजिक जो कार्य होने उसको आपको बिना पेमेंट के लगा दिया जाएगा।
1: सामाजिक हित के काम जो होंगे वो
0: जी
1: आपको सजा दी जाएगी उस तरह की।
0: हाँ, उस तरीके से सजा
1: तो
0: देगी।
1: ये प्रसंगवश क्या सार्थक हुआ है, क्या होने लगा है भारतीय न्याय में?
0: जी 1 जुलाई 2024 से जब से कानून लागू हुआ है तब से कई सारे अपराधों में जो है सजाएं दी जा रही हैं। इससे क्या हो रहा है, जेलों में भीड़ कम हो रही है।
1: अच्छा,
0: हाँ, इससे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है कि जेलों में भीड़ पड़ रही है, कि छोटे मोटे अपराध होते थे लोग सबको जेल में बंद कर दो, क्योंकि इतनी जेलें नहीं है आपके पास, तो भीड़ कहीं ना कहीं कम हो रही है।
1: निवेश, हमने FIR शब्द ऐसा होता था कि एक बार अगर कोई सुन ले तो उसको डर लगता था, तो FIR में भी कोई बदलाव है?
0: जी सर, FIR में नया बदलाव ये आया है, आपका EFIR वर्ड आया है। EFIR जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए अभी आप मोबाइल से बात कर रहे हैं और रास्ते से जा रहे हैं, और रास्ते में आपने कोई अपराध देखा, आपने अपराध देखा, तो क्या आप अपराध देख करके तुरंत भागते हुए पुलिस स्टेशन जाएंगे? मान लीजिए आपका मन नहीं है पुलिस स्टेशन भागने की, तो अगर आपको पुलिस स्टेशन भागने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे, अगर घर पे ही आप जहां पर भी हैं तो घर से ही आप ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से, वेबसाइट है जैसे कि uppolice.gov.in के माध्यम से, या फिर UPCOP कॉप का एक ऐप है अपना,
1: अच्छा
0: उसके थ्रू आप जो है EFIR दर्ज करवा सकते हैं।
1: अच्छा उसमें आपका जिक्र होगा?
0: जी, आप अपना आइडेंटिटी बताएंगे कि मैं फला मेरा नाम है और ये हमने देखा है यहाँ पर एक घटना घटी है, तो आप वहां पर EFIR दर्ज करवा देंगे।
1: अच्छा, इससे ये मेरे ख्याल से ये फायदा होगा कि अगर कोई अपराध हो रहा है तो उसकी जानकारी तुरंत मिल सकती है।
0: हाँ, तुरंत मिल सकती है, लेकिन सर इसमें एक कि झूठा केस ना हो सके, इसमें एक चीज और एड ऑन किया गया है, कि जैसे कि जिस दिन आपने EFIR दर्ज करवाया उसके 3 दिन के अंदर अंदर ही आपको फिजिकली पुलिस स्टेशन पे जाना पड़ेगा।
1: जिसने FIR की है।
0: हाँ, इन्फॉर्मेंट जो सूचना देने वाला है उसको विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर फिजिकली पुलिस स्टेशन में जाके सिग्नेचर करना पड़ेगा,
1: ओके,
0: ताकि इससे लोग कई सारे झूठे एफआईआर
1: आइडेंटिटी
0: ना,
1: आइडेंटिटी हो
0: हाँ,
1: जाए।
0: आइडेंटिफाई कर देगा कि हाँ ऐसा घटना हुआ था, मैं हूँ।
1: EFIR का नोटेशन पुलिस के पास होता है।
0: जी, पुलिस जो है जब जैसे ही वो सिग्नेचर आके कर देगा तो पुलिस आगे की कार्यवाही अपने स्टार्ट करेगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, यानी कि तब फॉर्मली, अब जो फॉर्मली उसका जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टार्ट कर
1: FIR
0: देगी।
1: दर्ज हो गई इसका मतलब।
0: हाँ, FIR दर्ज हो जाएगा।
1: और देवेश, एक 0 FIR क्या होता है?
0: जी, 0 FIR का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए आप कहीं भी रास्ते में जा रहे हो, या फिर आपके रिलेटिव हो, आपके रिलेटिव आपसे फोन करके कह रहे हैं कि आज मैं, रिलेटिव आपके गोरखपुर में है मान लीजिए, आप हैं दिल्ली में रह रहे हैं, और दिल्ली में आप फोन से आपसे बात हो रही है, वो गोरखपुर में बताएं कि मेरे साथ किसी ने मारपीट की है, ये मेरे साथ घटना घट गई है, तो आपको जरूरी नहीं कि आप जो दिल्ली में रह रहे हो गोरखपुर जाकर के FIR दर्ज करो, आप भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में आप तुरंत जो है FIR दर्ज करवा सकते हैं, और जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा वह FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है, वह मना नहीं कर सकता कि यह मेरे एरिया का, मेरे क्षेत्र का यह घटना नहीं है। तो यह 0 FIR कॉन्सेप्ट पहले जो हमारा CRPC हुआ करता था उसमें यह प्रोविजन नहीं था, यह नया कॉन्सेप्ट जो है 173 BNSS में दे दिया गया है, तो यहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यहां से मामला को बाद में फिर,
1: अच्छा, ऑनलाइन ट्रांसफर हो
0: हाँ, फिर
1: जाएगा।
0: ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर वहां की पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी।
1: भारत में हुआ करता है इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इसका क्या मकसद था, क्या इसमें भी बदलाव है?
0: जी, इसमें भी कई सारे बदलाव आए हैं, जैसे कि पहले होता था कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स, जो पेपर वाले डॉक्यूमेंट्स होते थे उन्हीं को ही आप प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स मान के साक्ष्य के रूप में मानते थे, नया इसमें क्या आया है, जैसे कि ई डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपके व्हाट्सएप चैट्स हो गए, ईमेल हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं, उनको भी अब एज ए एविडेंस
1: माना
0: कोर्ट जो
1: जाएगा।
0: है ग्रांट करेगी।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: ये बहुत अच्छा बदलाव है।
0: जी, जैसे कि होता, लोगों को परेशानियां होती थी, कोई भी जैसे फोटो क्लिक किया हुआ है या फिर रिकॉर्डिंग किया हुआ है तो जल्दी उसको वैलिडिटी नहीं दी जाती थी, लेकिन अब उसको प्राइमरी एविडेंस

0: एज ए प्राइमरी एविडेंस के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में उसको मान्यता दे दी गई है।
1: अच्छा नहीं, जहाँ तक मेरा संबंध रहा है, मैं आकाशवाणी में बहुत दिनों से, तो मुझे ये था कि रेडियो में जो रिकॉर्डिंग है
0: जी सर,
1: या आपने किसी चीज़ को रिकॉर्ड करके रख लिया तो वो उसको कोर्ट एविडेंस नहीं मानते, या वीडियो भी है कोई, क्योंकि उसमें बदलाव किया जा सकता है, आवाज़ किसी की गायब की जा सकती है या ऐड की जा सकती है,
0: हाँ
1: तो इसका भी कोई बदलाव है इसमें?
0: ना, इसमें तो कोई बेसिक बदलाव नहीं, लेकिन हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग की, जो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी तो वहां पर जो है आपका जो एज ए एविडेंस, जैसे बीएनएसएस में जो आया है कि अगर पुलिस मान लीजिए कोई सर्च या सीजर कर रहा है, कहीं भी कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसकी भी एक वीडियोग्राफी बनाई जाएगी, तो वो वीडियो को एज ए एविडेंस मान लिया जाएगा। लेकिन हाँ फेर बदलाव तो हो सकते हैं, तो वो तो फिर कोर्ट का काम नहीं है, फिर वो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से फिर उसको भी चेक किया किया जाएगा।
1: तो देवेश जी, एक चीज और मेरे ख्याल में आ रही है कि जब किसी अपराधी को पकड़ा जाता है तो पुलिस उसका रिमांड लेती है, या जज से या किसी कोर्ट से रिमांड मांगती है, तो रिमांड का क्या मतलब?
0: सर बेसिकली रिमांड जो है सीआरपीसी जो होता था सेक्शन नंबर 167 में दिया गया था, लेकिन अब बीएनएसएस 187 में प्रोविजन दिया गया है रिमांड। उसमें अगर बताया जाए कि जैसे कि जो पुलिस है किसी भी व्यक्ति को अगर वह अपराध किया है, अरेस्ट करता है, तो विद इन 24 आवर्स वो मजिस्ट्रेट को दे देगी, यानी अब 24 आवर्स जो उसको इन्वेस्टिगेशन करना था करेगी, उसके बाद अब उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। रिमांड ये है कि अब पुलिस क्या करे, जुडिशियल कस्टडी में होते हुए भी वह पहले स्टार्टिंग के 15 दिन वह पुलिस रिमांड ले सकती थी, यानी कि रिमांड पे लेकर के पूछताछ जो भी इंट्रोगेशन करना है उस अपराधी से,
1: सिर्फ 15 दिन?
0: हाँ स्टार्टिंग के, जैसे कि अगर वो 1 अगस्त को अरेस्ट किया किसी भी अपराधी को, तो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के अंदर पुलिस कस्टडी कभी भी ले जा सकती थी, वो पहले था। लेकिन अब नया बदलाव क्या हुआ है, नया बदलाव ये हुआ है कि है तो अभी भी 15 दिन की पुलिस कस्टडी, लेकिन गंभीर अपराधों को देखते हुए 60 और 90 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी होती है उसमें कह रहा है स्टार्टिंग के 60 डेज और या फिर स्टार्टिंग के 40 डेज मेक अप कभी भी, यानी टुकड़ों टुकड़ों में 15 दिन का
1: अच्छा, 15 दिन
0: बदलाव।
1: में आप 3 दिन एक दिन ले सकते हैं, 4 दिन
0: हाँ
1: एक दिन ले सकते हैं, चार
0: जी,
1: पांच दिन अलग अलग कर सकते हैं।
0: अलग अलग करके अब ले सकते हैं। तो इसमें विवाद ये है कि मानवाधिकारकर्ताओं का कहना यह है कि इसमें विवाद ये है कि जो उसमें अपराधी है, अपराधी जैसे अब उसके दिमाग पे 2 महीने तक प्रेशर रहेगा कि एक बार मैं पुलिस कस्टडी में जा सकता हूं, एक बार जुडिशियल कस्टडी में, तो कहीं ना कहीं उसका बेल का राइट खत्म हो जाएगा। और जो उसकी फ्री विल है, जो संविधान में आर्टिकल 20 के 3 में दिया गया है कि किसी को आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दिलवा सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं उसकी फ्री विल खत्म हो जाएगी, प्रेशर रहेगा कि कभी मैं पुलिस कस्टडी में, तो ना चाहते हुए भी वह बयान सही सही बोल देगा।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो देवेश, हमने अपराधों के संबंध में बदलाव की बात की है, तो क्या जो आम आदमी है उसको ये सब जानकारी करने के लिए भी कोई तैयारी की गई है, कोई तरीका सुझाया गया है?
0: जी सर, गृह मंत्रालय ने ई साक्ष और ई सेतु ऐप बनाया है जिससे सारे आपराधिक कानून को उस पर डाला गया है, तो एक सामान्य नागरिक ई साक्ष और ई सेतु ऐप पर विजिट कर सकता है, वह अपने अधिकार को जान सकता है। उस यानी कि सभी नागरिक का यह राइट है कि वह अपने अधिकार को जाने, तो अगर इस ऐप को वह विजिट करते हैं तो वह अपने अधिकार को भली भांति अच्छे तरीके से जान सकते हैं।
1: तो क्या जो अपराध जो केसेस चल रहे होते हैं इनकी जानकारी कैसे की जा सकती है?
0: जी सर, सभी कोर्ट्स की अपनी एक वेबसाइट होती है, जैसे कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी को अपने केस का विवरण देखना है तो वह डिस्ट्रिक्ट का अपना कोर्ट की वेबसाइट पे जा करके केस का स्टेटस टाइटल होता है वहां से आप देख सकते हो। हाई कोर्ट का अगर मामला है तो हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जाता है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे आप जा करके केस का स्टेटस देख सकते हो कि अभी तक क्या है, कब बेल है, कब डेट लगी है, सारी चीज को आप पता कर सकते हैं।
1: तो देवेश, आपने आज हमारे श्रोताओं को आपराधिक कानून में क्या बदलाव हुए इसके संबंध में बताया, और ये विषय इतना बड़ा है कि अगर हम बात करेंगे तो बहुत देर तक बात करनी पड़ सकती है, और हमारे कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है, तो इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी जानकारी दी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे आपराधिक कानून में बदलाव, इस विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे थे एडवोकेट देवेश गोस्वामी और भेंटकर्ता थे अतिश कुमार श्रीवास्तव। इसी के साथ आज का कार्यक्रम कानून की बात अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 64.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आपके रेडियो सेट पे, न्यूज ऑन AIR ऐप से आपके स्मार्टफोन और DTH पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: ये बोल रहे हैं। शाम के
1: 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

0: अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को। संगीत रोचक कोहली का था, फिल्म का नाम था वजीर। आकाशवाणी ओबरा से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस।
1: क्या आप भी चाहते हैं आपका बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े?
2: तो चुनिए अपने क्षेत्र रामगढ़ सोनभद्र के प्रतिष्ठित संगम इंटरमीडिएट कॉलेज की शाखा संगम एकेडमी।
1: यहाँ LKG से 11वीं तक की शिक्षा इंग्लिश मीडियम में अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से दी जाती है।
2: नए सत्र हेतु प्रवेश प्रारंभ, आज ही संपर्क करें संगम एकेडमी रामगढ़ सोनभद्र।
1: ज्ञान संस्कार और सफलता का संगम, संगम एकेडमी।

0: कर्ष काले और रघु दीक्षित की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म गर्ली बॉय के इस गीत को।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: आकाशवाणी उबरा से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस, और अब लीजिए सुनिए दिलजीत दोसांझ की आवाज में फिल्म उड़ता पंजाब के इस गीत को। संगीत अमित त्रिवेदी का।

अभी आप सुन रहे थे दिलजीत दोसांझ की आवाज में फिल्म उड़ता पंजाब के इस गीत को। संगीत अमित त्रिवेदी का था। इसी के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस अब यही समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

रात्रि के 8 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए सोना मोहपात्रा की आवाज में इस गाने को।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह की आवाज में इस गाने को। आकाशवाणी उपरा से इस समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत, और अब लीजिए सुनिए शुभा मुद्गल की आवाज में कार्यक्रम का अगला गाना। सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

अभी आप सुन रहे थे शुभा मुद्गल की आवाज में इस गाने को। इसी के साथ गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं 102.7 FM पर। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए ए आर रहमान की आवाज़ में फिल्म तेरे इश्क में का गाना।

इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे ए आर रहमान की आवाज में। संगीत ए आर रहमान का था और फिल्म का नाम था तेरे इश्क में। आकाशवाणी ओबरा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

के और सुनिधि चौहान की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। प्रीतम के संगीत निर्देशन में इस गाने को और फिल्म का नाम था खट्टा मीठा। आकाशवाणी उबरा से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

अरिजीत सिंह की आवाज में ये था फिल्म रईस का गाना। इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में इस गजल को। आकाशवाणी उबरा से समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। अब लीजिए सुनिए आशा भोसले की आवाज में अगली गजल।

अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में इस गाने को। इसी के साथ गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान

0: किसान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य अंगना संचिता उबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान

0: अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsmaximum.com newsonair.gov.in।

0: और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
1: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से, और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की, और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: I'm Versa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO

0: मुकेश और आशा भोसले की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म तुम्हारी कसम का ये गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था राजेश रोशन का। आकाशवाणी उबरा से समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
4: बदलो बदलो आदत बदलो,
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में नीरज के लिखे इस गीत को। संगीत SD बर्मन का, फिल्म का नाम गैम्बलर।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये था मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम काला पानी। आकाशवाणी उबरा से समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में ये था फिल्म बहारों के सपने का गाना। इसी के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उबरा का प्रसारण। रात्रि के 9:30 होने को हैं और अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम चर्चा का विषय है।

0: Güzel Çaka bir şey.
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का।

0: विषय है और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार,
2: धन्यवाद।
0: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एलनीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
1: एलनीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का वो सामान्यतः ठंडा रहता है, बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ट्रेड विंड्स होती हैं जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर लानीना कंडीशंस, बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स है ये स्लैकन कर जाती है, वीक पड़ जाती है। जब ये वीक हो जाती है तो क्या होता है, जो पानी था वहां जो उसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज्यादा था वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहां समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहां की प्रेशर को टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को मतलब ये मॉनसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एलनीनो था मॉनसून खराब हुआ और ऐसे साल भी हैं कि एलनीनो था और मॉनसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एलनीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है इतने ज्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही है तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए, तो ऐसा होता तो ये सुपर एलनीनो होगा और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मॉनसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कोई कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके वहां इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
0: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है, और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है।
2: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ देन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़े निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहां होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र हैं वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर्ड इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा, ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में NDMA की मीटिंग हो रही है, मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा

0: ले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जा रही है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है, तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो है जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती है वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होते हैं।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, और एक से हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको, सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां भी वार्मिंग होगी तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है कंटीजेंसी प्लान की, आप महावीर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे,
2: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयारी है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार है। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हो जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती है। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग ये डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध है कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वैरायटी है।

0: और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंगली, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है, पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहाँ पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है, मगर ऐसी जगहों पे लगाने हैं मिलेट्स एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पे बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस, यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको
1: जी।
0: तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब बताया कि भाई अलिनो है इस बार मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय मौसम विभाग एनडीएमए सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूँगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरिगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है वहां कभी फसल नहीं खराब होती, आप देख लीजिए वहां पे यदि बारिश कम हो जाए ना बल्कि फसल और अच्छी होती है क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहां पर, फंगस नहीं आती है और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को जैसे मान ली 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी।
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया वर्षा तो सामान्य है सामान्य से ज्यादा है और वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई एंड में मिल गई और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली
0: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगर केन को छोड़ दीजिए बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है उसके पास एक लाइफ सेविंग इरिगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है, एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरिगेशन तो रखे, जैसे 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरिगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी, कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं, एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सरवाइव कर जाए कम पानी में कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उसने उन्होंने डेवलप की है, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहां से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव का संस्थान है वो हो या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की अल्टीमेटली व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए, हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं।

0: जो किसान को एश्योर करें कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है। और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे, हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है, इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो। और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है, वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है। हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं। जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी। तो वहां पर जो वाटर बॉडीज है या पॉन्ड्स है या लेक्स है, उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स है, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पे कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरीके जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है। तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ, ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है, वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी। लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए, वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़ी हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है। क्योंकि देखिए, दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रवि क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूंगा नहीं, अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी बेच जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ आपको कैंसर होगा एनवायरनमेंट को खराब करेगा तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है और आपने कहा फोन फोन उससे भी मिलता है और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उसको वॉइस में ला सकते हैं और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा उसके पास कंप्यूटर है वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है बता दीजिए फटाफट देख देख के वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है ये मुझे लगता है जिसे कहते हैं ना जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले एक और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे जीते हुए को और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे क्योंकि जीता हुआ अपने बंदों को देगा शायद दूसरे को ना दे तो उसको भी दे दीजिए तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच लिया आपके गांव के सब लोगों को तो जानकारी पहुंच गई तो यदि ये हम करते हैं वेबसाइट भी है रेडियो टीवी अखबार भी है और साथ साथ ऐप भी है वेबसाइट भी है फोन भी है और ये कियोस्क भी है और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता वो है रेडियो का एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था टीवी अभी आया नहीं था या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई मगर मैं अब ये कह रहा हूँ ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है कम्युनिटी रेडियो तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए और रेडियो भी कैसे आ गए आज की डेट में जिसमें बिजली नहीं चाहिए बैटरी नहीं चाहिए हैंड वाइंडिंग है आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए एक घंटा चलेगा और उसमें टोन अलर्ट भी है यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है तो इस तरह की जो आज का आ गई तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको जिसमें बिजली नहीं चाहिए पानी नहीं चाहिए ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना वो तो एक है ही है उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहाँ हुआ महाराष्ट्र वाले इलाके में आसपास के इलाकों में तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा एकदम स्विंग पे मत जाइए या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं जो हम मौसम आधारित एडवाइजरी देते हैं व्हेन टू सो व्हेन टू हार्वेस्ट व्हेन टू इरिगेट हाउ मच टू इरिगेट व्हेन टू स्प्रे केमिकल्स ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर वो बहुत पॉपुलर हो रही है तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है कैसे भी पहुंचाना है और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे किसान प्रिपेयर है और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए कहाँ से फर्टिलाइजर मिलेगा कहाँ से केमिकल मिलेगी कहाँ से सीड मिलेगा कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा कहीं वो सुनिश्चित करना होगा और उसके प्राइस भी ऐसा करना ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरिगेशन और वो चार नहीं पांच नहीं एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरिगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी
1: हरवीर जी कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं एलनीनो की बात हम कर रहे हैं अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मानसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो
0: देखिए जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें पंजाब है हरियाणा है यूपी का बड़ा हिस्सा है सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पर बोरवेल्स जो है तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हो जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें ये एक इम्पोर्टेंट बात है दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है? पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है, और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून का क्या होता है, कि मानसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है, कि उसका जो हमारा मानसून का पीरियड है जून टू सितंबर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहाँ उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289-09-4044।
4: चर्चा का विषय है।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसधारा।

0: आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जवानी के इस गीत को। आकाशवाणी उपरा से समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसधारा।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

किशोर कुमार, आर डी बर्मन और सपन चक्रवर्ती की आवाज में ये था फिल्म सत्य पे सत्ता का गाना। गीतकार थे गुलशन बावरा और संगीत था आर डी बर्मन का।

अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सितमगर के इस गीत को। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत है आरडी बर्मन का।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। संगीत आर डी बर्मन का था और फिल्म का नाम था जवानी दीवानी। आकाशवाणी ओबरा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसधारा।

बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कॉलेज गर्ल के इस गाने को। इसी के साथ कार्यक्रम रसधारा अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी बात। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए आशा भोसले की आवाज में फिल्म मनोरंजन के इस गीत को। सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में अनजान के लिखे इस गीत को, संगीत बप्पी लहरी का और फिल्म का नाम टैक्सी चोर।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनामिका के इस गीत को। आकाशवाणी उपनास इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी बात। एक बार फिर से लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चलते चलते का ये गीत।

0: किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे इस गीत को। फिल्म का नाम था घर घर की कहानी। इसी के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी बात अब यहीं समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनेल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रूपये की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।